0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: इनमें
0: दो चश्मे बह रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? गोया वो याकूत और मरजान हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्स।

0: टीम में 3 मर्द और 2 खवातीन बॉक्सर शामिल हैं। महकमे मौसमियात ने इंतबाह जारी किया है कि बर्फ और ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने और हालिया बारिशों के बायस गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह में नुमाया इजाफा हो सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के बायस बास इलाकों में मकामी सतह पर सैलाब और दरियाओं के किनारों के कटाव का भी खतरा है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, शुमार मशरक की बलोचिस्तान, जनूब मशरक की सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाएं चलने और वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बास मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मतवक्के है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बास बड़े शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद और कोयटा 24 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और पेशावर 26, कराची 29, गिलगित 20, मरी 15 और मुजफ्फराबाद 22 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के लिए महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में मतला अबरालूद रहने, तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 25, लेह 8 जबकि पुलवामा और शोपियां में 17 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों तजियों के लिए आइए हमारे वेबसाइट radio.gov.pk पर।
1: कमिंग अप नेक्स्ट 101 न्यूज हेडलाइंस।
2: दिस इज
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, विच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

पांच दरियाओं के धारों की अमी है ये जमीन, इसके पासी है कुशादा दामनो दिल और जबी। लर्जा है दश्तो बयाबां देख कर हैबत बलोच, रस्मगाहे जिंदगानी में है ये।

सिंध है रोशन सितारों की तजल्ली का जहां, करिया करिया कूचा कूचा हर गली है कहकशां, हौसले हैं पर्वतों से अज़्म है परवाज़ में, खित्ता-ए-पख्तून है मखमूर हुस्ने नाज़ में।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: बैक टू बैक, बैक टू बैक हिट म्यूजिक On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

बात करनी ना तुझको सुनानी, सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून, दुनिया झूठी दुनिया वाले उनके बारे में मेरा है ठीक। I don't care what you think, what your emotions are, I'm gonna call it a spade is a spade. Yes,

Tchau.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: क्या आप घर बैठे फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं? तो इंतजार कैसा? हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन तरबियत फराहम करने वाला इदारा डिजी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वजारत आईटी और टेलीकॉम की जानिब से इग्नाइट और वीयू के ज़ेरे एहतमाम पेश कर रहा है। मुफ्त ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज, लीगल, फुल स्टैक डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, शॉपिफाई डेवलपमेंट और दीगर 24 कोर्सेज में दाखिलों का आगाज। तफसीलात और रजिस्ट्रेशन के लिए www.digiskills.pk विजिट करें या 0304-111-1570 पर राब्ता करें।
3: 101 FM.
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
5: This is FM 101.

0: आई हो कितने देर से?
1: मंद हुए यार, बस आधा घंटा दे।

start a tour. Depois só de

101 FM。

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वजीर आजम और मिस्र के वजीर खारजा ने मनीला में आसियान रीजनल फोरम के मौके पर मुलाकात के दौरान मशरक वुस्ता में कशीदगी में कमी और मुजाकरात की अहमियत पर जोर दिया है। पंजाब हुकूमत ने जेल से रिहा होने वाले कैदियों की समाजी और माशी बहाली के लिए नया आगाज प्रोग्राम शुरू किया है। पाकिस्तान ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सिंध दास माहिदे को मौतल करने की भारत की यकतरफा और गैर कानूनी कोशिश को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया है। महकमे मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफे का इंतबाह जारी किया है। और अब खबर।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: A-level with zero tuition fee. 100% future. Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: क्या आप घर बैठे फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं? तो इंतजार कैसा? हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन तरबियत फराहम करने वाला इदारा डिजी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वजारत आईटी और टेलीकॉम की जानिब से इग्नाइट और वीयू के ज़ेर एहतमाम पेश कर रहा है मुफ्त ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज लीगल फुल स्टैक डेवलपमेंट क्लाउड कंप्यूटिंग शॉपिफाई डेवलपमेंट और दीगर 24 कोर्सेज में दाखिलों का आगाज तफसीलात और रजिस्ट्रेशन के लिए www.digiskills.pk विजिट करें या 0304-111-1570 पर राब्ता करें
3: 101 FM.
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
5: This is FM 101.

101 FM。

101 FM.

0: le sono io e te, beh.
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: This is FM 101.
1: अजी सुने जरा फसाना प्यार का

0: देखिए ड्रामा सीरीज फसाना मार्ट का जुम्मा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: I love FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: तू लब दा वफा फिर दानी लबनी रुक जाए सजा दा।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: You're listening to FM 101, अबले बले ओशा ओशा।

0: This is FM 101.
1: सरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade kyun ji koi shak hai kya

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से ख़बरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का अदा किया है। शहबाज शरीफ ने आबादी में इजाफे पर काबू पाने के लिए एक मौसर अवामी आगही मुहिम की जरूरत पर जोर दिया है। नायब वज़ीर आज़म ने अदा किया है कि पाकिस्तान आसियान इलाकाई फोरम के मकासद और उसूलों पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है। पाकिस्तान ने कहा है कि बहरा अहमर में उसके बहरी मफादात के खिलाफ जारियत पर मबनी किसी भी कार्रवाई को उसकी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तसव्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने अक़वामे मुत्तहिदा में सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करने की भारत की गैर कानूनी कोशिश को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान और श्रीलंका की ख्वातीन टीमों के दरमियान पहला एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच हम्बनटोटा में जारी है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.

0: one above. FM 101.
1: This is FM 101.
2: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
1: This is FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: आपने ऐसे मनोमन क्यों किया?
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

सुनते रहिए FM 101 सुनते रहिए FM 101 101

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी, सोचो

धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

से वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्म कश्म चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू राज ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी, सोचो कि

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

रात के 10 बजे अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए, अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अनाज ज़खीरा करने की सहूलतों को जदीद मराकज़ में तब्दील करने के लिए एक चीनी कंपनी के मंसूबे का खैर मकदम किया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अदा किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू

0: machine.
1: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: All right. السلام علیکم. آواز کی اس دنیا میں جن سماعتوں سے میرے الفاظ ٹکراتے ہیں شکین کے ساتھ کہ آج کے دن آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے مکمل کیا ہوگا. ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں نائٹ تھراپی ود آرج ڈاکس, جس میں آپ کا میرے ساتھ ہوتا ہے بدھ اور جمعرات کی شب 10 سے 12 بجے تک. اور ابھی وقت ہو چکا ہے 10:21, 23 جولائی 2026 کا سن ہے. اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, اور ہونا بھی چاہیے, کز آئی بلیو ایوری تھنگ از فار یو. اور صرف اشیاء کا یہاں پہ ظہور جو ہے, کسی شے کا ہونا یہاں پہ, یہ چیزوں کا, مناظر کا, یہ خوبصورت پہاڑ, یہ بادل, یہ اڑتے ہوئے فضا میں خوبصورت سے آسمان پہ پھیلے ہوئے پانی سے, کبھی بھرے ہوئے بادل, کبھی خالی, کبھی برستے ہوئے, کبھی یوں ہی گزر جانے والے, کبھی سورج کے آگے آ جاتے ہیں, کبھی سورج کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں, اور کبھی آنکھ مچولی کھیلتے رہتے ہیں. اور پہاڑوں کے دامن میں پھیلی ہوئی یہ خوبصورت سی وادیاں, یہ جھیل, ندی, نالے, اور نہ جانے کیا کیا ہے وہ, جہاں پہ رات ڈھل جائے تو ستارے یوں چمکتے ہیں جیسے آپ ہاتھ بڑھا کے انہیں پکڑ سکتے ہیں, اور اگر ستارے نہ ہوں تو چاند وہاں پہ اس طرح سے جگمگاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ بس آپ کی دسترس میں ہے. آپ جب چاہیں چاند کو توڑ کے اپنے پاس سجا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ خوبصورت سے چہرے ارد گرد پھیلے ہوئے, کسی بھی شکل میں, کوئی کسی دوست کی شکل میں, کسی چاہنے والے کی شکل میں, کسی چاند چہرے کی شکل میں, کسی اور فطری رشتے کی شکل میں آپ کے ارد گرد, یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں, محض اپنی خواہشوں کو مار کے. جہاں ہم جیتے ہیں وہاں دوسرے بھی ہمارے لیے جیتے ہیں, یہی زندگی کی خوبصورتی ہے. محض اگر آپ یہی سوچتے رہیں کہ میں دوسروں کے لیے جیتا ہوں, تو یہ سوچ ایک نگیٹیوٹی کو جنم دیتی ہے. آپ کے اندر ایک منفی قسم کا کردار ابھرنے لگتا ہے. میں قطن یہ نہیں کہتا کہ اپنی ذات کو ٹائم نہ دیں, اپنے بارے میں مت سوچیں, بالکل سوچیں, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ دنیا گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے, اور آپ کو جو اشیاء, جو سہولتیں, جو خوبصورت سی فیلنگس ملتی ہیں, وہ بھی کسی کی جانب سے آتی ہیں, اسی طرح آپ کی جانب سے بھی چلی جاتی ہیں. تو جہاں آپ اپنی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں, وہاں دوسروں کی خوشی کا خیال اس طرح سے رکھیں جس طرح سے آپ چاہتے ہیں آپ کا خیال رکھا جائے. اور تمام تر میرے جتنے فوجی بھائی پاکستان میں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, جن جن بارڈرز پہ اور جہاں بھی جو ڈیوٹی کر رہے ہیں, ان سب کے لیے میرا بڑا سلام عقیدت ہے. اور صرف میں نہیں, میرے ساتھ جتنے لوگ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان کی طرف سے, مینجمنٹ ریڈیو پاکستان کی طرف سے, پوری عوام کی طرف سے, ہمیں آپ پہ فخر ہے. یقین کریں, آپ کی وجہ سے ہمارا سر فخر سے بلند ہے. آج کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر بات ہوتی ہے, ہم بڑا سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہمارے جوانوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا, اور انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا. اور دعا ہے کہ آپ لوگوں کی موجودگی سے آپ لوگوں کے گھر والوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. تو جی, بات یہ ہے, آج ہے جمعرات, اور جمعرات والے دن ہم بات کرتے ہیں کسی کلر کے اوپر. اور آج وٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ, میں محسن بیٹھے ہیں. محسن, نہیں نہیں, وہ تمہارا مائک نہیں چلا, صبر کر, میں نے دیکھ لیں دے کیوں چلے گا. اچھا پی بول.
1: السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟
0: نہیں, انہوں نے کہا میں نہیں قبول کرتا, صبر کرو.
1: کیا ہو رہا ہے آج؟
0: اب بولو.
1: السلام علیکم.
0: ہاں اب آ گئی, ہو گیا ہو گیا, شادی کر لیا.
1: کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟
0: یہ اس طرح کے فنی فنی چیزیں صرف ریڈیو پہ,
1: ریڈیو بھی نہیں ہو سکتے, ٹی وی بھی نہیں کر سکتے, ہے نا؟ نہیں, بالکل نہیں کر سکتے.
0: ہاں, یہ ادھر تھوڑا سا ٹالریٹ کر لیا جاتا ہے. اچھا جی
1: سر, آج ہم بات کریں گے سائیکالوجی آف کلرز پہ, اور آج ہم بات کریں گے یلو کلر پہ.
0: اوکے, بڑا خطرناک سا رنگ ہے.
1: یس,
0: ہے نا,
1: بہت خطرناک,
0: بہت خطرناک ہے, ریڈ کی طرح. اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو ہمارے انٹرنی موجود ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی گپ شپ کرتے ہیں. السلام علیکم.
2: वालेकुम सलाम सर, क्या
0: माइक के पास आके बोल।
2: वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है,
0: अच्छा है।
1: अच्छा हाल है,
2: अच्छा हाल है,
0: अच्छा है। आगे अपना तारुफ करवाना।
2: सर मैं, मेरा नाम उमर फारूक है और मैं रेडियो पाकिस्तान में इंटर्नशिप कर रहा हूँ और आज तकरीबन इंटर्नशिप को एक मंथ कंप्लीट हो गया, तो मैंने सोचा कि एक मंथ लेक्चर्स लिए हैं तो आज एक स्टूडियो टूर भी होना चाहिए, यहाँ पे आके देखना चाहिए कि रेडियो पे किस तरह से प्रैक्टिकल वर्क होता है, तो उसका एक्सपोजर हासिल करने के लिए। और आगे एक हमारा ड्रामा आ रहा है जो कि आपने मैं असाइन किया हुआ है, तो उसके लिए ताकि उसमें बेटर परफॉर्म कर सकें, तो इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं आपके पास ताकि कुछ सीख सकें, कुछ जो पहले सीखा है उससे ज़्यादा कुछ।
0: मेरे पास आकर ड्रामेबाजियां सीख सकोगे? ड्रामा नहीं सीखना
2: है, ड्रामा करना है तो उसके लिए ड्रामेबाजियां भी आनी चाहिए, क्योंकि ड्रामा है तो ड्रामेबाजियां आनी चाहिए,
0: ड्रामेबाजियां आनी चाहिए। हाँ जी, हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप?
0: जादू डालने लगा
1: वो देखा, वो बैठा भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है।
0: हाँ, बल्कि इस वक्त हम लाइव भी हैं जी, आर जे स्पेस डी ओ एक्स डॉक्स, अगर आप लिख के सर्च करेंगे तो यू विल सी द गाइस। ये हाँ जी, अपना तारुफ करवाएं।
3: मेरा नाम शहीद तफसर है एंड आई एम डूइंग रेडियो फॉर क्वाइट अ वाइल। अभी मेरे लिए ये एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि 101 वाज द चैनल जहाँ से मैंने उन तमाम आवाज़ों को सुना जिन्हें सुन के मुझे रेडियो का शौक हुआ, जिया अंजुम, जिशान, नासिर एंड डेफिनेटली आर जे डॉक। सो आई एम गेटिंग,
0: मेरे शो में बैठे हो ना इसलिए
1: ये जरूरी।
0: और अगर तुमने मेरे शो में बैठ के मेरी तारीफ करनी फर्ज की थी तो पहले नाम मेरा होना चाहिए था।
3: ओके,
0: दोबारा से नाम लो, चलो।
3: ओके, सो 101 पे मैंने जिन आवाजों को सुन के बोलना सीखा।
0: नहीं, सही नहीं बोला, बचपन से लफ्ज एक बार दोबारा।
3: मैं बचपन से आरजे डॉक्स को सुन रहा था एंड
0: मैं तो शो ही नहीं था करता था,
3: मुझे पता नहीं, इसलिए तो मैंने आपका नाम नहीं था लिया पहले।
2: सर बेसिकली आपको बुरा कहना चाह रही है, ये आपको बेसिकली बुरा कहना चाह रहा है कि आपकी बहुत उम्र हो गई है, अब बूढ़े हो गए।
0: कोई बात नहीं, क्या
3: चलें, पिछले 6 साल से जब से आप शो कर रहे
1: हैं। वो 6 साल से भी नहीं कह रहे।
0: हेलो सुन,
3: मैं दूसरे चैनल पर सुनता हूं।
0: अच्छा,
3: तो जितने भी तमाम आवाज़ों को मैंने सुना है, आई एम गेटिंग चिल्स के आज उसी फ्रीक्वेंसी से मेरी आवाज़ ऑन एयर है। सो थैंक यू टू मिस्टर आरजे डॉक्स,
0: ये अपना तारुफ नहीं करवाया। फिर
3: मैंने सबसे पहले बोला है मेरा नाम शहीद सफदर है, मेरा एक इंट्रो है रेडियो पे।
0: करते क्या हो?
3: मैं रेडियो ही करता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ एंड डिफरेंट।
0: इसी तो बुलाया नहीं,
3: यूनिवर्सिटी ने नहीं बुलाने दी।
0: तो फिर तो ना करते हुए
1: आप नहीं, जब तक आप आरजे डॉक्स को नहीं बुलाएंगे आपको माना नहीं जाएगा कि आप पॉडकास्ट करते हैं।
3: मेरा अप्रूवल ही नहीं मिल रहा ना आरजे डॉक्स ने मुझे।
2: इसके बाद पॉडकास्ट करूंगा मैं, आपको बुलाऊंगा। मेरा नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ होगा।
0: देखो मैं अपनी तशहीर कर रहा हूं, मुंडे देख लो सारे, इन्हें शक्ल से आन लेना। अगर ये दोबारा मेरे पॉडकास्ट आपको नहीं मिलता तो आपने पहचान लेना है
1: शक्लों से।
2: आपने सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल है, आपने सब्सक्राइब कर देना अगर आरजे डॉक्स का पॉडकास्ट ना मिला आपको।
3: टाड़ी आरजे डॉक्स के साथ करना।
0: एनीवेज जी, पाकिस्तान में जहां तक मेरी आवाज जा रही है, लाहौर से ट्रेवल करते हुए मुल्तान, मुल्तान से फिर कराची, हैदराबाद एंड उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत सी वादियां, के पी के एंड और कश्मीर के खूबसूरत सी वादियां, आई लव कश्मीर बाय द वे, और इस्लामाबाद, फिर हमारे पंजाब के जितने अजला हैं सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए हैं एंड हम यकीनन आपको पता होगा आज के दिन जो मैं गपशप लगा रहा होता हूँ उसके हवाले से, और जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है आप बिल्कुल लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं जी, आर जे स्पेस डी ओ एक्स डॉक्स लिखेंगे तो आपको लाइव स्ट्रीम मिल जाएगी। कॉज हमारा और आपके दरमियान रबते का नंबर
1: 042111011
0: को नहीं चल रहा।
1: अच्छा, हाँ वो आज नहीं चल रहा।
0: हाँ वो आज नहीं चल रहा, ठीक है जी, इसलिए उस पे आपने कोई रबता करने की कोशिश नहीं करनी।
1: बाद में ये ना सुनने को मिले कि 240 दफा ट्राई किया तो आप कॉल नहीं उठा रहे।
0: हाँ फिर कहते तुझे कॉल नहीं चुकी, आगे से जवाब आएगा आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं और जाती नंबर आपके पास मौजूद नहीं, इसलिए आप
1: कोशिश ही ना करें।
0: तो हम बात करेंगे कलर येलो पे और उसके अलावा सवाल जो है वो कि मैं करना हूँ नसीब
1: 4471 के मैसेजेस पे एक्सेप्ट कर लें।
0: नहीं, मेरा ख्याल है ओखर
2: सर कमेंट्स जहाँ हम लाइव जा रहे हैं।
0: नहीं वो तो लाइव जा ही रहे हैं,
1: वो तो लाइव तो जा ही रहे हैं,
0: लेकिन उधर फिर ये मसला है कितने बंदे जो हैं। इधर तो सफिशिएंट टाइम मिल जाता है ना, हमने जो सवाल पूछना है उसने उसी वक्त गूगल करके पूरा वो बता देना है। तो मतलब हम डिस्करेज नहीं करते, आप गूगल यूज करें, ऑन कॉल आके करें,
1: ऑन कॉल।
0: अभी इस पर देखते हैं हमने क्या मैकेनिज्म बनाना है, विल थिंक अबाउट इट। आप हमें कमेंट कर सकते हैं FM 101 लाहौर, अगर आप सर्च करेंगे वहाँ पर आपको स्टैटिक पोस्ट मिलेगी, वो डू हिट मी विद योर कमेंट। और इसके अलावा FM 101 चैनल पाकिस्तान, वहाँ पर भी कर सकते हैं आप कमेंट। फिर इसके अलावा जो है, अगर आपके पास इंटरनेट की रसाई मौजूद नहीं और फिर भी आप अगर रब्ता करना चाहें तो SMS कर सकते हैं। अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम और अपना पैगाम लिखें, इसको भेज दें 4471। एंड मेरी लाइव स्ट्रीम तो है यहाँ पे मौजूद। और बाकी इसके अलावा एक और तरीका भी होता है, मुराकबा करें, आंखें बंद करें और उससे बड़े स्ट्रांग किस्म की फील के साथ कोई मैसेज मुझे भेजें। कहते हैं दिल को दिल से राह होती है, पहुँच जाएगा, बस ना सही दस ना फिर पता लगे मैं उठा उठा सीधा ना बोल जाऊँ। ओके, थैंक यू वेरी मच जी, जिन लोगों ने लाइव पे ज्वाइन किया आप सबका बहुत शुक्रिया जी, गेटिंग मैसेजेस और गपशप लगती रहेगी, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे कोई ट्रैक्स ट्रैक शामिल करते हैं फिर आगे चलते हैं। कवलनाज ने सबसे पहले ज्वाइन किया और वालेकुम अस्सलाम कहती हैं, फिराक मौसम की चिलमनों से विशाल लम्हे चमक उठेंगे, फिराक के मौसम की चिलमनों से विशाल लम्हे चमक उठेंगे, उदास शामों में कागज़ दिल पे गुजरे वक्तों के बाब लिखना बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छा है और आप ही समझाएं मुझे अब इसके मानी भी। आज डॉक्स वाइफ ने ज्वाइन किया, इस्लाम किया, वालेकुम सलाम, FM 101 की टीम को आपने सलाम दिया जी, बहुत शुक्रिया। आज डॉक्स वाइफ कहती हैं, व्हाट अबाउट पर्पल, पर्पल पे मेरा ख्याल हम बात कर चुके हैं कि नहीं?
1: नहीं अभी नहीं की,
0: क्यों नहीं की, अभी नहीं की हमने,
1: नेक्स्ट कर लेते हैं उस पे कर लेते।
0: ओके वेलकम किया जी तमाम आरजेस को, एंड मोहसिन को भी वेलकम किया, सुहेल अब्बास हैं इन्होंने भी सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। फिजा राजपूत ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। चश्मे बदूर महाजबीन आई हैं, खैर महाजबीन बड़े स्काफ शिकाफ पा लेने। मैं भी दुपट्टा ले लूँ आज, ए डॉग्स एंड टीम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कल आपका कमेंट जो एक आया था वो मुझे समझ नहीं थी आई, आपने लिखा मैं आपकी तारीफ करूं तो कोई बुरा मान जाता है, कौन बुरा मानता है ये भी आपने मुझे बताया नहीं। मार डाला किसने, तारिक मिनास ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे बड़े अच्छे से आ रहे हैं हैदराबाद से, अली रजा राणा वो हमें सुन रहे हैं, सलाम किया उन्होंने, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच सर, आप सुन रहे हैं बाबर अयूब, मेरा बड़ा अच्छा बड़ी है। और FM जब मैंने करना शुरू किया सबसे पहले जिस बंदे से मेरा रابطہ हुआ, जिससे मेरी मुलाकात हुई, दैट वाज बाबर,
1: बाबर
0: सच ए लवली पर्सन यार, आई वोंट फॉरगेट यू। मैंने फिर रोटी भी खवाई सर।
1: अच्छा जी।
0: हाँ वो कहते नमक खादा है, मैं नमक के नाल मिर्चा भी खा दिया, फिर मिठा भी खाता ना ज्यादा, हाँ फिर ज्यादा हो गया, इसलिए आई वोंट फॉरगेट यू ब्रो।
1: इतना कुछ खाया फिर बता भूल नहीं सकता,
0: नहीं भूलना चाहिए भी नहीं यार। अच्छा जी इस्लाम गुजर साहब ने इस्लाम किया, वालेकुम अस्सलाम, अब्बा जी का करेक्टर करने के लिए तैयार हैं, इस्लाम अचल भाई जा काम कर, अब्बा जी का करेक्टर मैं नहीं कर रहा, अब्बा जी का करेक्टर
2: मेन लीड के अलावा बात ही नहीं होगी,
0: नहीं विलन बना दो यार। और कोई ऐसा ऐसा करेक्टर दो, मैं विलन का रोल प्ले करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं मुझे चाहिए प्लीज। अच्छा जी, और माला मुगल ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों के पैगाम शामिल किए हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। बट आई वांट टू प्ले अ सॉन्ग, आई वांट टू प्ले अ ट्रैक एंड व्हाट आई एम गोइंग टू प्ले, बताओ क्या सुनना चाहोगे?
1: क्या सुनना चाहेंगे बताएं,
2: पीछे हट चला दें भाई हसन नहीं,
0: आप बताओ। सोचते हैं ना किसकी क्या चॉइस है। हाँ जी
2: सर, कोई स्वीट सा सॉन्ग होना चाहिए, मतलब डिसेंट सा, मतलब स्वीट सा रोमांटिक टाइप,
0: आप बताओ।
1: जॉन एलिया की गजल लगा दें,
0: सारी पागल है। आप पहले मेरे वाला गाना सुने, बाद में इनके लगाएंगे, ठीक है? आए गाल सुन, आवाज आ रही मेरी? गाल सुन, गाना तेरे वास्ते। 10:36 PM on the dial, 23rd of July 2026. This is RJ Docs from the studio of FM 101 Lahore. Aur mere sath hain aaj Mohsen and I have two internees.
2: Umar,
0: pura naam bolta
2: hai. Umar Farooq.
0: Main hu Umar Farooq. And
3: of course, when the mic is high and vibe is hot, it's definitely Shaheer in the house.
0: Okay, Shaheer in the house. ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਹਾਊਸ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਇੰਜੋਏ ਦ ਨੰਬਰ, ਡੋਨਟ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਆਈਲ ਕੈਚ ਯੂ ਬੈਕ ਵਿਦ ਦ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਫ ਯੈਲੋ ਕਲਰ, ਆਫ ਕੋਰਸ।

0: ऑल राइट जी, वेलकम बैक। आप अपने माइक से मत खेलें। वक्त हो चुका है 10:00। वेलकम बैक जी, वक्त हो चुका है 10:43 और 23 जुलाई 2026 का सिन है FM 101 रेडी पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद RJ डॉक्स और आपका मेरे साथ होता है बुध जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। एंड यस्टरडे वी आर टॉकिंग अबाउट येलो कलर और ब्लू कलर के बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं साथ चलाता जाऊंगा, क्योंकि बार बार मुझे कहा गया ब्लू कलर पे भी थोड़ा सा गाइड कर दें। बस ठीक है, एक्स्ट्रा कलर एक पालर ने पुरजोर फरमाइश पे। और रबते के लिए आप कॉल बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे खबरदार कॉल नहीं करनी, मुझे शर्म आती है। कॉल पे बात करूँ मेरी अम्मा देख लेती हैं, कहती है किससे बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: ना महरम से हम बात नहीं करते आज के दिन।
0: आजकल हम बिल्कुल नहीं करते,
1: आजकल हम नहीं करते।
0: हम बहुत इसमें स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि हमारी टेलीफोन लाइन खराब है। एनीवेज आप SMS करें अगर इंटरनेट की रसाई नहीं है आपके पास, कोई भी बात कहना चाहें। हम मौजू जो होता है वो अक्सर मैं कहता हूँ ये महज एक बहाना है बात करने का, सिलसिला गुफ्तगू का चलाए रखने का। असल तो मुद्दा और मतलूब आप है ना जी, आपका इंटरेस्ट जिसमें होना चाहिए, आपका जो दिल करता है आप बात कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। मेरा कैनवस बहुत बड़ा है, जिस तरह का दिल करता है आप इस पर रंग भरे, कोई शेर, कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई बात, एनीथिंग। को रोना पिटना भी पाना मैंने मैसेज करके पाई रखो, मैं पढ़ता रहूँगा। आई एंजॉय दैट, नो वरी। आप रोएंगे मैं आपके साथ रहूँगा, आप हंसेंगे मैं आपके साथ हंसूँगा, कोई मसला नहीं है। मैं अगर आपके अंदर को और औरत जाग जाएगी मैं भी दुपट्टा लेके शुरू हो जाऊँगा साथ आपके, टेंशन नहीं लेनी है आपने, इन्जॉय करना है ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट की रसाई है आपने FM 101 लाहौर सर्च करना फेसबुक पे और FM 101 चैनल पाकिस्तान, वहाँ पे स्टैटिक पोस्ट है, यू कैन हिट पे विद योर कमेंट्स। और इसके अलावा RJ Space DOX डॉक्स है जी, इस पर लाइव स्ट्रीम है। थैंक यू वेरी मच जहाँ से बता आपने ज्वाइन किया और सलाम किया आपने, वालेकुम अस्सलाम। हर बंसपुरा से आप हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। फिदा कह रही है मोहसिन का नंबर दे दें, मोहसिन अपना नंबर देना
1: 04 2 111 0101। लेकिन आज बिल्कुल नहीं कॉल करना।
0: ओके ठीक है, नंबर आपको मिल गया, इस पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप SMS करें और SMS का तरीका आपको पता है, तो हम बात करेंगे येलो कलर पे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा मेरे साथ जो साहिबान बैठे हैं उनसे पूछे। हाँ भाई मुंडिया
2: जी सर,
0: विच कलर इज योर फेवरेट कलर?
2: ब्लैक।
0: यू लाइक ब्लैक कलर?
2: यस।
0: इट डजंट सूट यू?
2: So I think,
0: why do you like नहीं वैसे नहीं पहना हुआ तो अच्छा लग रहा है।
2: तो यही बात करने लगा था कि मुझे ब्लैक पसंद है, मैं ब्लैक पहन के आया हूं।
1: नहीं नहीं, आपको ब्लैक क्यों पसंद?
2: वो अपने कपड़े देखने लग गया कि मैं क्या देखता
0: हूं। इट सूट्स यू, इट सूट्स यू व्हेन यू वेयर इट। बात है पर्सनालिटी के साथ
1: बात कर रहे हैं।
0: नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लैक कलर, ब्लैक मिस्ट्री, मिस्टीरियस किस्म की पर्सनैलिटी, जिन्हें बड़ी इस तरह की चीज़ें पसंद हैं कि उनकी ज़ात के बारे में कुछ ज़्यादा डीप डाउन जाके पहचान ना सके उन्हें, और बड़े खामोश तबाह और इस तरह से रहने वाले, आपके साथ कन्फ्लिक्ट में ब्लैक का कोई शेड तो नहीं पसंद लड़कियों की तरह?
2: नहीं सर, ऐसी बात भी कोई नहीं है। कौन सा वाला ब्लैक?
0: हाँ, किसी कुड़ी ने पूछ लो चार कोल वो काला है? नहीं नहीं नहीं नहीं यार, चार कोल होता है यार। अच्छा ठीक है
2: सर, ऐसी कोई नहीं है,
1: पांच छह निकाल लेती है।
2: मुझे पता चला था कोई 120 लाख रंग हैं इस दुनिया में।
0: 120 लाख 120 लाख। ओह माय गॉड, कुड़ियां ना, आगे लिखा होगा ब्रैकेट में फॉर वुमेन।
2: फॉर वुमेन, जैसे पिंक कलर का बकरा चाहिए।
0: हाँ पिंक कलर का बकरा भी
2: चाहिए होता है, पिंक कलर का बकरा।
0: अगली दफा निकालना, मैंने सोचा चिट्टे लाया के ना रंग दे,
1: सेल अच्छी होगी, सेल अच्छी होगी,
0: बहुत अच्छी सेल,
1: बहुत अच्छी सेल होगी।
2: सर इसके पीछे कैसी साइकी तो नहीं है, बट मुझे स्टार्ट से ही बचपन से कह लें मुझे ब्लैक अट्रैक्ट करता थोड़ा सा।
0: इट्स वेरी मच रिलेटेड टू योर साइकोलॉजी, आपकी चॉइसेस, आप क्या सुनते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह के बाल बनाते हैं, किस तरह बैठते हैं, किस तरह से आप अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन करते हैं सिचुएशंस में। इवन आपकी आंखें वो जो कहते हैं ना अब पूरा जबान झूठ बोलती रहे आंखें सच बोल देती है, पता नहीं चल रहा सारे एडे सियाने होते सारी फड़ देने झूठ बोल रहे हैं। उत्तों उत्तों ही कह रहे हैं मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ,
2: दिल से नहीं कह रहा है, ऊपर से कह रही
0: है। हाँ मैं भी तुम्हारे लिए जो है ना सात समुंदर पार आऊंगी, बाद चो गाना ही आ रहा होता आप नहीं आते
1: गल नहीं बनी है
2: सर, तो वही बात हो गई, दिल में कोई और है और जुबान पे कोई और है।
0: सो देयर इज अ लैंग्वेज, इट इज अ प्योर लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं फिर इसका मतलब है फिर कुछ चीज, चलो देखते हैं आगे चल के। आपको कौन सा कलर पसंद है?
1: इट इज वाइट,
2: वाइट,
0: वेयर इज वाइट,
1: जो भी वाइट है मेरे पास शेड थोड़ी है कि वाइट का ये वाला शेड चाहिए।
0: तो वाइट कपड़े पहन के क्यों नहीं आए
1: यार? अब जो फेवरेट कलर है वही थोड़ी पहनी रखें।
0: फेवरेट कैसे हुआ?
1: पहन के तो आता
0: मैं तो जो कलर पहनता हूँ फेवरेट कर लेता हूँ, आज मेरा है फेवरेट ये बदल कर है ये बोला ठीक है आज चिट्टा है
1: इसमें भी वाइट स्ट्रिप्स हैं बाय द वे।
0: हाँ मैं ठीक है चलो गुड।
1: अच्छा एक शॉट आउट देना मैं टू ऑल माय दिशानियंस क्योंकि दे आर ऑल बिहाइंड माय बैक, अभी मुझे मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने कहा सबका एक दफा मैं निपटा दूं।
0: अच्छा
1: दिशानियंस में सारे कवर हो जाते हैं।
0: अच्छा चलो ठीक हो गया। ओके जी बात करें हम पीले रंग के बारे में। नॉर्मली येलो रंग जो है इट रिप्रेजेंट हैप्पीनेस और इसके अलावा ऑप्टिमिज्म, उम्मीद, उम्मीद होप, फिर इसके अलावा पॉजिटिविटी होती है इनमें, इंटेलिजेंस का आंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। आप कहीं पे भी येलो जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे सुस्ती बेशुमार पाई जाए उनमें लेकिन इंटेलिजेंस के लेवल में अच्छा होता है और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत क्रिएटिव होते हैं। मैंने देखा है जिनके माँ बाप को येलो कलर पसंद है वो अपने बच्चों को मारने के नए नए तरीके ईजाद करते हैं। मेरी अम्मा भी बड़े नए नए तरीकों से मुझे मारा करती थी, मैं भी सोचता सी है कि मैं मार देती मेरी अम्मा।
2: मारने का स्टाइल है ना वो ऑलमोस्ट सबका सेम
0: होता
2: सर, मुझे बहुत पड़ी है वो जो भी इनका चप्पल से बेलन से चम्मच से
0: कन्वेंशनल है, सारे कन्वेंशनल है, उन्होंने और तरह का बनाया हुआ था वो दोरी डंडा होता है दूसरे शहर चला गया, मोबाइल शोबाइल था नहीं मेरे पास, ठीक है जी, उसके बगैर ही मैं निकल गया दोस्त के साथ, रात को वापस आया एंड आई वाज हैप्पी ओके आई विल टेल माय अम्मा अप्रैल फूल, ठीक है जी ओके फाइन फेयर इनफ। मैं गया हूँ घर में दाखिल हुआ हूँ, मेरे अब्बा भी परेशान मेरी अम्मा भी परेशान, उन्होंने कहा हाँ जी किधर थे, मैं कुछ भी नहीं बोला मैंने अप्रैल फूल ही बस बोला उन्होंने बस फिर मेरी अम्मा ने यो सीन ऑन किया फुल क्रिएटिव किस्म की उन्होंने धुलाई की है, उसके बाद मैं उठा तो डिग पवा उठा तो डिग पवा मेरे को खलोता ही ना जाए मैं कहा आप नहीं चाहती आपका बेटा चल सके वो कहती हैं मैं चाहती नहीं ऐसे रास्तों पर जिन रास्तों में तुम चलना चाहते हो,
1: गलत रास्तों पे चलने वाले पोंगे तोड़ देते हैं
0: तो ये क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है जी उनमें, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, एनर्जी लेवल तो खैर मेरी अम्मा का बहुत अच्छा रहा है ना। आई एम टेलिंग सो मेनी थिंग्स अबाउट इट, व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर एंड इट वाज माय फोर्थ सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर था, आई डिड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो मैं उधर से दरमियान में गैप होता था, आ जाना कभी जल्दी आ जाना दोपहर का टाइम, आई केम बैक और मेरी अम्मा क्योंकि टीचर भी थी उत्तों
1: जी,
0: तो
1: जी
0: येलो कलर,
1: येलो कलर
0: उस्तानिया वैसे ही बड़ी डाडी होती है ना, तो मैंने आके एज यूजुअल पूछा क्या पकाया, उन्होंने खाना बताया मुझे सब्जी नॉर्मली पसंद नहीं थी, माँ मेरी ने ए नहीं देखा मुंडा मेरा वड्डा जवान हो गया
1: जवान
0: 6 फुट का मुंडा, माँ मेरी ने अगों वाल पड़े ने ते माँ मेरी शुरू हो गई जा तेनू रोटी भी नहीं ओहो मैं भी फिर होंदा पिटदा कमरे से चला गया, मैं ठीक है ना दे मैं भी नहीं खाऊंगा और एंथुजियास्टिक होते हैं, जोश बड़ा होता है एंड कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होता है। सो दिस इज अ बेसिक थिंग अबाउट येलो और इसके साथ हम अब आप भी मुझे बताइए आप वैसे येलो कौन पसंद करता है और येलो के बारे में व्हाट यू थिंक کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, کس طرح کے ہوتے ہیں یلو لور, اور جو میں نے باتیں کی ہیں آگے انہیں چلاتے ہیں آپ کے مطابق, ان میں اگر کوئی ڈفرینس ہے وہ بھی آپ مجھے بتائیے گا. احمد ملک نے ہمیں جوائن کیا, سر کیا حال ہے؟ اچھا حال ہے, آپ بتاؤ. حسن علی, یو آر لوکنگ ویری نائس, تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. ناٹی آر زے, شو از گوئنگ نائس, تھینک یو ویری مچ. سرخ سر, سرخ یا پھر میرون کے متعلق بتائیں. ایک کلر ہوتا ہے سارے کو سرخ.
1: ہاں جی
0: ہاں, سانوں میرون دا نہیں,
1: شیڈس پہ ہم بات نہیں کرتے.
0: سرخ کے بارے میں بہت دفعہ بات ہو چکی ہے. بیسک ٹریٹس آپ کو میں ابھی یہاں پہ بتا دیتا ہوں. بڑے شارپ قسم کے لاؤڈ پرسنالٹیز ہوتی ہیں. دے ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ, دے لو ٹو ڈومینیٹ, دے لو ٹو لیڈ, اور جہاں پہ بھی جاتے ہیں ایموشنلی بہت ایکسپریسو ہوتے ہیں. اور پھر ان کا ہوتا ہے کہ ہم جس طرح سے ایکسپریس کر رہے ہیں اسی طرح سے ایکسپریسو قسم کی پرسنالٹی ہونی چاہیے آگے سے. اینڈ دے کائنڈ آف لو برڈز, یو نو وین دے آر ان لو. کیا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو سارے کلر پسند ہوں؟ میں بتا تو رہا ہوں, میں روز ہی پانا ہے ہی سوچ کے آج جمن
1: جو پہن لیا وہی پسند,
0: یہی پسند کا کلر ہے. چلیں جی, اب آپ لوگ ایس ایم ایس بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مہر فاطمہ ہے, سر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ بہت اچھا ہوں. اور اس کے علاوہ عبد النور ہاشمی صاحب نے رواز گارڈن سے میسج کیا. آج ڈاگز, آج محسن, آداب تسلیم جی.
1: جی وعلیکم السلام.
0: اور ایک میسج آیا عجیب سا, مجھے نہیں پتا کیا لکھا آپ نے. آبغین کافی نہیں ہے صرف عقیدت حسین کی, کردار بھی ہے, کردار بھی ہے مانگتی محبت حسین کی. بہت اچھا ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کل نہیں آئے, میں آیا تھا 12 بجے. آئی ایم ویری سیڈ, بہت زیادہ اپسٹ. ہوں مجبوری بھی تو ہوتی ہے بندے کی, بندہ نہیں آ پاتا کبھی کبھی, بٹ آپ کو سن کے اچھا لگ رہا ہے. ہاں ہاں ہاں, مجھے بھی یہ میسج پڑھ کے اچھا لگ رہا ہے. ہاں ہاں ہاں ہاں. اچھا جی, بچپن سے آ رہے وہ تو میں سن رہی ہوں شہیر بھائی. کیڑے بچپن؟ ہاں میں اپنے بچپن سے, بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. نہیں بلکہ میں پیدا ہونے سے پہلے اتنا لائف شروع کرتا ہوں, اسی لیے تم سارے کو تو یاد ہے کیونکہ تم سارے بھی اوپر ہی ہوتے ہیں. سن رہی ہوں شہیر بھائی, کیڑے بچپن؟ ہاں میں اپنے بچپن سے بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. نہیں بلکہ میں پیدا ہونے سے پہلے اتنا لائف شروع کرتا ہوں,

0: अरे कहती है हाय बिस्मा और मेरी तरफ भी आ गई है आवाज़ आपकी, खैर से थैंक यू जी। दिल को माइक से रहा है बस यहाँ, है ना, बस दिल को माइक से रहा रहती है। मेरे लिए सॉन्ग डेडिकेशन करिएगा अपना फेवरेट, आज पता चले आपकी चॉइस कैसी है। मैं क्यों बताऊँ, मैं बड़ा शार हूँ, नहीं बताऊँगा। हाँ मुझे भी क्या है, वेलियाँ बहना पसंद है, वेलियाँ बहना पसंद है। मोहब्बत वाली कोई खूबी नहीं है मुझ में। अरे वाह ये सॉन्ग भी अच्छा है, प्ले कर दिया मतलबी दुनिया, सच्ची बात की है। बड़ा लंबा मैसेज पहुंच गया, क्या बात है आपकी, क्या कहूँ आपको, कुछ भी कह लें बस ऐसा कि जो मुनासिब हो मेरे पढ़ने के लिए उसके अलावा कुछ नहीं कहना। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। एनीवेज जी आज हम येलो कलर के बारे में बात कर रहे हैं। आप में से जिसका कलर येलो है, यू कैन टेल मी अबाउट योर कलर एंड आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। और मुझे ज़रूर बताइएगा इसमें किस कदर खूबियाँ जो हैं आप में पाई जाती हैं। और इसके साथ जो है ब्लू कलर के बारे में भी थोड़े से बात करेंगे। ब्लू कलर जो है इसकी अगर बात करें, इट इज़ ए सिंबल ऑफ पीस एंड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, अनडाउटेडली इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। लॉयल्टी, पीस, ट्रस्ट एंड विजडम, ज़हीन लोग होते हैं, स्टेबिलिटी भी इन्हें पसंद होती है एंड डेप्थ में चीज़ों को देखते हैं। दे लाइक ट्रू थैंक्स एंड दे वॉन्ट सिक्योरिटी, कहते हैं सिक्योर होना चाहिए जो भी आप। इसलिए मैं अक्सर आपको कहता हूँ अगर आप बैंक देखें, हॉस्पिटल देखें, बड़ी बड़ी कंपनीज देखें, उसमें आपको ब्लू कलर नज़र आएगा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता। और आयशा सुल्तान कह रही है बिल्कुल दुरुस्त, स्वर्ग के मुतालिक कहा, देरे रियली लव टू डोमिनेट, है ना, मैंने पता से पहले। वक्त हो चुका है 10:58, आई विल कैच यू बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक एंड दिस ट्रैक इज फॉर एवरीवन। यार ये गाना है आपके लिए, ओके आप मुझे SMS करें जी, डू सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेज, कोई भी बात लिख के भेजें और अपनी पसंद की जो भी कुछ पूछना चाहें, एनीथिंग यू कैन आस्क मी, एनीथिंग मींस एनीथिंग, ओके। और मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाके 1 से 1 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है, इसको भेज देना 4471 पे। और इसके अलावा RJ.DOX लिख के मेरी लाइव स्ट्रीम है वहाँ पे भी, हिट मी विद कमेंट, आतिफ असलम का मैशअप लगा दें। फिजा अभी आप ये सर्च करो यूट्यूब पे, आप वो सुनो हम ये सुनते हैं। स्टैटिक है पोस्ट FM 101 लाहौर एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। यार आई लव दिस ट्रैक, यार व्हाट अ स्मूथ ट्रैक, स्मूथ लवली मेलोडी एंड समथिंग वेरी रिलेटेबल। I want you to enjoy this and feel it. Okay? This is for you. I mean, pata hai khabra aa rahi hai. Koi nahi khabra aani hai, isi gaana disconnect karte hain.
1: Ye zulf teri hai raat ghani, ye chehra tera subah ki tarah.
0: Mera khayal hai khabrein sun le phir gaana chalate hain.

नहीं है जाना, ये गाना आपके लिए है। दिस इज आरजे डॉक्स, आप सुन रहे नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से। आज बात चल रही है येलो कलर के बारे में, साथ ब्लू कलर भी मैं डिस्कस किए जा रहा हूँ, बार बार पूछा जाता है। डोंट गो एनीवेयर एंड द सॉन्ग इज फॉर यू।

0: इकरार किसी लज्जत, इकरार में कहाँ गालिब, बढ़ता है शौक उनकी नहीं नहीं से।
1: जी कुछ कहा आपने?
0: जी नहीं, ये बुक में लिखा हुआ है।
1: कौन सी बुक?
0: जी ये।

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:09, 23 जुलाई 2026 का सन FM 101 रेडी पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, और यस मेरे साथ हैं आरजे मोहसिन, और इसके अलावा दो इंटर्न्स हैं हमारे साथ।
1: मैं हूँ उमर फारूक और मेरा नाम है शहीद तफ्तर।
0: ओके, बार बार आप कोई दिस इज व्हाट हम आपको सिखा रहे हैं ना, कि आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना। व्हेन द बॉल इज हियर यू हैव टू प्ले, हाँ जी फौरन टक करते, चाका नहीं रखना। ठीक है
1: सर, ये चाका ही तो ताड़ने हम यहाँ पे आए हैं कि चाका हमारा उतर जाए।
0: तुसी आए भी गलत सोच हो
1: सर, वो आपने समटाइम सुना होगा ना कि पंजाबी च कहंदे ने एदा दे चाका ही पाटा आया वो वाला, यानी कि ना मतलब
0: गलत शो में आ गए फिर। अच्छा जी, आप अपनी पसंद का कोई शेर सुनाओ। हाँ, कोई बब्बर शेर सुना दे सर। ये जो मुझे इशारे करके कह रहे हैं ना, ये माइक पर बोल के कि मुझे नहीं आता।
1: हाँ सर, मुझे शेर नहीं आते, मतलब हाँ। मैं थोड़ा सा दूर हूँ शेर शायरी से।
0: इसका और भी जवाब हो सकता था, कुछ भी, एनीथिंग, लाइक कुछ भी, कुछ सर शेर नहीं आता।
1: हाँ।
0: बब्बर शेर सुना दे माता तो मैं कहना हाँ जी सुनाओ, तुम कहना मैं फड़ के ले आना। शेर आप सुनाओ।
2: हमारे एक आरजे थे बहुत ही फेमस, अल्लाह परवरदगार उन्हें कड़ी के रहमत करे, इमरान अली मानी साहब।
0: आमीन आमीन।
2: एंड उनका एक शेर था जो कि मुझे बहुत पसंद था, हालांकि इसे मैं प्रमोट कहीं से भी नहीं करता, बट ही से पिछली पहर को रात को मेरी तलब तुम नशा तुम, आके तुझे सिगरेट में भर के धुएं में उड़ाऊंगा।
0: तू रहन दे तू रहन दे, तू मेरा प्रोग्राम बैन कराएगा।
1: एडिक्टिव की सारी प्रोग्राम गंदा कर रहा है।
0: हाँ, खराब कर रहा है, मुझे स्मेल आ रही है, खबर। आई डोंट लाइक स्मोक, आई डोंट लाइक स्मोकिंग, यू नो, आई डोंट लाइक स्मोकिंग। खबरदार ऐसी बात नहीं, मेरे शो में ऐसी बातें Not allowed.
2: नहीं, मोहसिन नकवी।
0: अच्छा सुना दे। हाँ सुना।
2: मोहसिन नकवी।
0: हाँ, तुम भी ढूंढ के रखो, मोबाइल है ना?
1: जी जी।
0: चलो गुड।
2: हाँ जी सुना। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं, हाँ जिस पर गुजरी हो वही बताए मोहसिन।
0: अच्छा जी।
2: होते हैं शबे हिजर में जमाने कितने?
0: होते हैं
2: शबे हिजर में जमाने कितने?
0: हाँ, एंड का लफ्ज भी पूरा बताना।
2: डन।
0: होते हैं शबे हिजर में जमाने कितने? हैं जी, एमए करके बोलना। ठीक है, ओके। वी आर टॉकिंग अबाउट येलो कलर एंड गेटिंग योर मैसेजेस। आप भी कह रहे हैं, माला मुगल ने कहा कि प्लीज प्ले चल बाय राहत फतेह अली खान। अच्छा, मैंने कभी सुना नहीं, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई हुई है, चल उसमें भी आता है, लेकिन वो आगे कहता है पीछे हट। चल पीछे हट, चलें ये भी करते हैं, दोनों कर लेंगे। ठीक है जी, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट येलो कलर। ऑफकोर्स तो येलो कलर के बेसिक मैंने आपको बताया, और जो तहकीकात है ना जी, जो रिसर्च है, इट सेज के जो येलो कलर होता है ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है और अटेंशन सीक कर लेता है। हाँ यार, आई नो, येलो तो फिर अटेंशन ले ही लेता है ना, और फैसला साजी में ज़बरदस्त किस्म की मदद करता है। बंदा कहता है बस यहीं पर ठहर जाए, जिंदगी के मंदिर दोबारा मुयस्सर ना आए इन आंखों को, तू के सज के आया है आज उस जोड़े में जिस पे सजे की जब तेरे हाथों में मेहंदी, तो ये पीला रंग और निखर जाएगा। आए है ना। एनीवेज, येलो कलर अगर मेरी बात करें, मुझे आप इस कमरे में अगर सिर्फ येलो येलो हर तरफ करके बिठा देना, मैं थोड़ी देर बाद तानू थे वॉमिटिंग करता मिलांगा। आई कैन नॉट बेयर इट। पहनावे में तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड जो है येलो नहीं ठीक। और साइंस भी ये कहती है कि बहुत ज़्यादा येलो जो होता है ना, एंजाइटी ट्रिगर कर देता, अगर आपके चारों अतराफ येलो कलर हो, और चिड़चिड़ापन भी पैदा कर देता आपके मिजाज में फिर, और इसके अलावा जहनी थकावट। अच्छा, चाल, माला कह रही है चल नहीं है, चाल है, ओके ठीक है जी, चाल जी, जहनी थकावट पैदा कर देता है। अब येलो कलर पसंद करने वालों के बारे में कहा जाता है, बड़े हंस मिजाज, खुश मिजाज होते हैं, हंसमुख होते हैं, पुरजोश, तखलीकी जहन के होते हैं, सोशल किस्म के होते हैं, बातें बड़ी करते हैं, मिलनसार किस्म के होते हैं, और इनकी अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए दूसरों का हौसला भी बढ़ाते हैं, दूसरों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जल्दी जो है ना दोस्त बना लेते हैं, आइडियाज़ इनके पास बहुत सारे आते हैं जी, एंड मुश्किल हालात में भी दे आर ऑलवेज होपफुल, और दूसरों को हंसाना पसंद करते हैं, दे आर ऑलवेज अ रीज़न टू मेक यू स्माइल। और अगर बात करें इनकी वीकनेस की, जल्दी बोर हो जाते हैं, अटेंशन स्पैन जो है ना काफ़ी कम होता है इनका, एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, कभी कभी जल्दबाजी करते हैं, हर वक्त अटेंशन भी चाहते हैं। हूँ ये चीज़ें पढ़ने के बाद आए हुए सिंकिंग के यार अगर येलो किसी को पसंद है तो ज़्यादा देर तो फिर किसी बंदे नाल भी नहीं रुक सकता वो है, ऐसे ही है। आपको क्या लगता है, आपको आपको क्या लगता है बताओ मोहसिन। ओवरथिंकिंग का पाया जाता है पायन, वो तो ठीक है, मैंने बंदे पे रुकने वाली बात की है,
3: बंदे पे रुकने वाली क्या मैं
0: मतलब एक जगह पे ज्यादा देर ठहर नहीं पाते ये, व्हाट डू यू थिंक?
3: सर आई हैव नो आईडिया।
0: क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो बोले,
3: आवाज आ रही है?
0: नहीं। ओके आप बोले। हाँ मोसे क्या कह रहे हैं? येलो कलर। हेलो हेलो बोले, येलो कलर, येलो कलर किधर से बात? ओके आप बोले। हाँ मोसे अच्छा कहाँ से?
4: येलो।
0: ओके नाउ से समथिंग।
3: अच्छा आप येलो कलर की बात कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो एक जगह पे ज्यादा देर रुक सकते हैं येलो कलर में।
0: ओके क्यों नहीं रुक सकते?
3: बाकी सर क्योंकि वो जल्दी बोर हो जाते हैं इसलिए।
0: मैंने पूछा किसी बंदे पे नहीं रुक सकते, चलो छोड़ो, बोर होना शुरू हो गया, मौजू खराब होना शुरू हो गया आपकी आवाज ना आने की वजह से। हाँ जी बॉय चलो सुनाओ शेर सुनाओ।
1: चल मैं अच्छा सा शेर ढूंढ रहा हूँ।
0: सारे शेर अच्छे होते हैं, पढ़ने का अंदाज उन्हें अच्छा बनाता है।
1: सर एक मिर्जा गालिब का शेर है,
0: बड़ा मुश्किल होगा।
1: हाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है।
0: अनु मुंडे नु जुब्बा ले आ दियो पहले।
1: तो सर, हाँ जी, मिर्जा साहब लिखते हैं कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का।
0: माइक के पास।
1: मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस जिसके फिक्र पे दम निकले।
0: शेर तो दाम में निकल गया, तुम सुनाओ।
2: मैंने सुना तो दिए हैं,
0: दोबारा सुनाओ।
2: और भी सुनाना है?
0: हाँ और भी
2: सुनाओ। बस फिर मुझे दो मिनट दे, मैं भी कोई ढूंढ के ही रखता हूँ।
0: चलो गुड, आप ढूंढो, उतनी देर में हम मैसेज पढ़ते हैं, शामिल करते हैं। रोशनी का मैसेज आया, इस्लाम कह रही है, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? शकील अहमद लाहौर से, डियर डॉग सलाम, वालेकुम सलाम, वेलकम किया शहीर को और उमर को आल्सो मोहसिन, और कहते हैं सर गिव अ चांस ओनली मैसेजेस ऑफ 4471 फॉर क्वेश्चन आंसर प्ले। अच्छा बड़े शियार हो तुम, कह रहे हो सिर्फ हमें 4471 वालों को चांस दें सवाल पूछें। यार बाद में नंबर कहाँ से लूंगा मैं? फिर मैं कहता रहूँगा पैन नंबर भी गाल दे। और फिर सारे अगर नंबर भेजेंगे जिनके सवाल जवाब नहीं ठीक वो भी भेज देंगे।
2: हाँ, है ना? कंपनी तो गरीब हो जाएगी।
0: हाँ नहीं नहीं कंपनी नहीं गरीब होगी, नंबर लीक हो जाएंगे, नंबर लीक हो जाएंगे पता है।
2: ये भी है।
0: फिर बाद जो तुसी कहना लो आर जो डॉक्स ने नंबर लीक करते रहन दे यार, मेरे गले पै जाएगा। वो वैसे भी हमारे पास एक इंटरनी आती है, वो वैसे बहुत डराती रहती है, हरासमेंट पे FIR हो जाएगी फलां दफा, तो वैसे ही डर के रहता हूँ।
2: उन्होंने ना मुझे एक बात बताई थी कि अगर मुझे फील हो रहा है ना कि कोई मुझे हरास कर रहा है तो मैं उसे भी जेल पहुँचवा सकती हूँ फील होने पे। लाइक देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन बट अपनी जो फील है उस पे आप।
0: तुमने कहना था मुझे आपकी बात सुन के हरासमेंट फील हुई, आप बता दूं अब। बहरहाल एक सीरियस कंसर्न है ये और संजीदा बात भी है बहुत सारी चीज़ों में, और ये अच्छा इकदाम है, ऐसे ज़रूरी होता है लोगों के साथ जो इस तरह की हरकतें करें उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जुनैरा लाहौर से कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे डॉक्स, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? और ब्लू कलर पर आप बात करेंगे क्योंकि मेरी पसंद का कलर है, अगर आप इस कलर के बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बिल्कुल बताया आपको ब्लू कलर के बारे में, आगे और बताता हूँ। आप गीन आपका मैसेज मिला, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम पाजी, मेरी कॉल चको शहीर है पाकिस्तान आर्मी से। भाई कॉल नहीं मिल रही ना, कहाँ से चुकूँ, फ़ोन चुकने की कैपेसिटी है, आप बताएं कौन सा रखा है वो उठा लूँगा मैं। रोशनी मुझे भी येलो कलर बहुत पसंद है, उड़ी उड़ी फिरती हूँ। आप चिड़िया तो नहीं है, उड़ी उड़ी फिरती हैं, उड़ उड़ के करती क्या है वैसे ये बताएं, कहाँ पर जाती हैं, सबसे पहले उड़ने के बाद किधर जाती हैं। रफीक हैं फ्रॉम पिशावर, व्हाट अबाउट ग्रीन कलर सर, आई टॉक अबाउट ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के बारे में हम बात कर चुके हैं, मैं अभी वापस आऊँगा ना जब गाने से, फिर आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँगा, बल्कि मोहसिन से कहूँगा वो ग्रीन कलर के बारे में आपको थोड़ा सा बताएं, बाड़े निकल गया मेरे से भी, लोड़ी ना, चलो इतना तो बनता है फिर इतना तो बनता है यार। तो आगे येलो कलर के बारे में, वीकनेस और स्ट्रेंथ पे भी बात की, थोड़ा सा ब्लू कलर के बारे में भी बात करते जाते हैं ना जी, ब्लू कलर के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में भी साथ साथ मैं चला देता हूँ, क्या याद करेंगे। पुरसकून किस्म के होते हैं, काबिल एतमाद किस्म के लोग होते हैं, वफादार और ज़िम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और फितरी तौर पर मैच्योर होते हैं। ऑफ़ कोर्स आई हैव सीन दैट एंड आई हैव एक्सपीरियंसड, अच्छे लिसनर भी होते हैं, लो इतने लिसनर होते रहे बोलते ही नहीं, बंदा कहता रहे यार कुछ अब तुम भी बोलो, कुछ तुम भी कह दो, नहीं आप बोले, मैं सुन रहा हूँ या मैं सुन रही हूँ, बंदा भी बोल के थक जाता है, फिर बंदा कहता है चलो
1: सर ये सुनने वाली कम ही होती है जो कहती है कि आप बोले मैं सुन रही हूँ,
0: शुरू शुरू में होती है पहले समझ ही अच्छा है, कितों कितों रगड़ा लाना है, सबर का सुनाई जा,
1: आज तक यह नहीं मिली
0: सुनाई जा बात से
1: मुझे तो आज तक ऐसी नहीं मिली,
0: शुरू से सुनाने वाली मिल जाती है।
1: हाँ वो शुरू से वो कहती बस मेरी सुनो,
0: कितने यार वो तुम कह रहे हो मुझे मिल जाती है, मतलब तुम्हारा अकाउंट बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे
2: बड़ी गेम
0: है ना, बड़े मामला है, सोच समझ कर फैसला करने वाले ये लोग होते हैं। ब्लू के बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी खूबियों की बात की जाए, दे आर वेरी गुड लिसनर और वादा निभाने वाले होते हैं, कमिटमेंट पूरी करते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और मुश्किल वक्त में आपका साथ देते हैं, सब्र करते हैं। और अगर वीकनेस की बात करें तो अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं, दे डू नॉट एक्सप्रेस देम ईजीली, ठीक है, ओवर थिंकिंग भी करते हैं और जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते और रिजर्व भी रहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया जी। और अभी वक्त हो चुका है 11:22, अभी ये कॉल लेता अगर फोन चल रहा होता।
1: सर मुझे डर लग रहा है, आप
0: किसे,
1: आपने ये बात जो है कर दी है ना,
0: और मैं फंस गया,
1: अब मैं फंस गया हूँ अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो सारी यहाँ पे सुन रही हूँ ये जो दो तीन है तो मैं तो फंस गया ना,
0: आप ही बोली जा रही आप ही बोली जा रही है ना,
1: मैं ये सोच रहा हूँ
2: एग्जांपल थी कि
0: जो दो तीन है, मैं जो तीसरी चौथी है ना वो भी सुन ली,
1: मैं तेज खुद ही खराब कर दी
0: नहीं, मरीना बिलाल कहती है आज डॉक्स हम लाहौर वाले ऐसे तो नहीं बोलते, तोतले तो नहीं है, रे और डे का बड़ा फर्क होता है, डे आप प्योर लाहौर की नहीं है, अगर आप प्योर लाहौर जो हो विद इन वॉल सिटी है ना, डे का होता है और ये कोई बुरी चीज नहीं है, देखें हर चीज का एक कल्चर होता है, वो जबान में लुकनत होती नहीं है लेकिन क्योंकि बचपन से ब्रॉट अप ऐसा होता है। इसी तरह अगर आप सरायकी बेल्ट वाली साइड पर जाएंगे उनके लबो लहजे में और तरह की आपको झुकाव मिलेगा उनकी जुबान का। अब आप सेंट्रल पंजाब में भी अपने बहुत सारे एरियाज में अगर आप चले जाएं, अगर आप हमारे गुजरात ही चले जाएं वेयर आई बिलोंग, वहाँ की उर्दू अगर वो बोलेंगे आपको लग पता जाएगा कि गुजराती उर्दू बोलता भाई है, ओ भाई गाल सुन, वो आप सही कह रहे हो लेकिन ऐसे होता नहीं है भाई, ओ जाओ जाओ उन्हें बुला के लिया, हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ आपका ही काम कर रहा हूँ भाई जान, जरा दो मिनट तो दे यार, भाजी जरा दो मिनट रुके हो, थोड़ा जा इधर आ जाओ, हाँ जरा सियालकोट वाले पास आ जाओ तो थोड़ा आपको और ज्यादा डिफरेंट फ्लेवर मिलना हो जाएगा, दिस इज द फ्लेवर, हम तो हंसी मजाक कर लेते हैं लेकिन ये बड़े खूबसूरत फ्लेवर है, मुझे बड़ा मजा आता है, हर जगह का अपना फ्लेवर है एंड दीज आर गुड फ्लेवर्स। अभी यहाँ पे हम
1: जैसे कि लाहौर को लोड,
0: हाँ लोड, इट्स गुड यार, इट्स गुड, और ये कोई वो बात नहीं है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो इस बारे में परेशान होते हैं कि नहीं नहीं मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, इट्स नॉट गुड, आप मत सोचें ऐसे, ये तो फ्लेवर है और ये फ्लेवर अगर जुबान में ना हो जुबान तरक्की नहीं करती, जुबान तरक्की ही तब करती है, फ्लेवर्स होने चाहिए जुबान में। चले जी यहाँ पे एक गाना लगाते हैं उसके बाद वापस आते हैं, फिर आप लोगों के फेसबुक के मैसेजेस को शामिल करते हैं और शहीर की पसंद का गाना लगा रहे हैं, चल पीछे हट, ठीक है जी,
2: फाइनली हसन रहीम
0: हसन रहीम के और भी बड़े गाने थे अच्छे, تم نے بھی گا میں نے پیچھے ہٹ سننا
2: یہ والے ہماری وائب دیتا ہے نا کہ
0: آپ کو پتا آپ کے گانے کی چوائسز بھی آپ کی پرسنالٹی بتاتی ہے
2: دیکھ لیں اسی لیے انرجیٹک لگا ہے
0: سنگل تھنگ اٹ ٹاکس اباؤٹ یور سیلف آپ کے کھانے کی چوائسز آپ کی پرسنالٹی بتاتی ہیں آپ کس چیز میں مطلب یو کین ناٹ اوائڈ اینی تھنگ آئی واز ریڈنگ وین بڑی پرانی بات ہے جب یہ میں نے پڑھا تھا میں بڑا انسپائرڈ ہوں نا اسے ابن خلدون نے سوشل چینج کی بات کی نا سارے بیہیویئرل چینج اسی میں آ رہے ہوتے ہیں اس نے بات کی کھانے کا آپ کی ذات پہ آپ کے مزاج پہ ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے اور پھر آپ کی چوائسز بھی ریورس انجینئرنگ میں پھر ڈیفائن بھی کرتی ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے کھانا جتنا افیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے آپ کی ذات پہ اسی طرح آپ آگے بتا بھی رہے ہوتے ہیں کیونکہ بندہ کوئی سیاح ہوئے نا سمجھ جاتا ہے اچھا یہ کون ہے Anyways, don't go anywhere. سنجیدہ باتیں ہمیں نہیں کرنی اور آ کے رنجیدہ سی باتیں کرتے ہیں منڈا بڑا پریشان ہو گیا میسیجز اینڈ یس یو کین سینڈ می یور میسج آپ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں گے ایک صفر ایک لکھیں گے اسپیس دیں گے اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اس کو بھیج دیں گے 4471 پہ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی اگر آپ کے پاس رسائی ہے تو آپ نے سرچ کرنا ہے FM 101 لاہور اینڈ FM 101 چینل پاکستان دونوں جگہ آپ کو میری پوسٹ مل جائے گی یو کین ہٹ می ود یور کمنٹس اور مجھے میسج آیا آپ کی انرجی لیول لو لگ رہا ہے نہیں یار میں تو بڑا ہائی ہوں اب مجھے نہیں پتا آپ کو کس طرح کا ہائی ریکوائرڈ ہے
4: ان کا اپنا ہوگا نا
0: مجھے بتا دیں پھر میں اسی طرح کا ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے آر جے خواجہ امتیاز ہیں سیالکوٹ سے سن رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے روشنی کہتی ہیں سر آپ کو ملی کوئی ہے نہیں آپ کا تجربہ اتنا وسیع ہے بس میرے ارد گرد بہت کچھ ہوتا رہتا ہے اور پھر آپ کو کیا پتا ملی ہے کہ نہیں Who knows? current date میں کچھ بھی ہو سکتا ہے Nobody knows. Don't go anywhere. This is Hasan Rahim, Coke Studios, Season 14, Piece of Heart.

0: जाती वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:32, 23 जुलाई 2026 के सैन एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजी डॉक्स, और मेरे साथ है आरजी मोहसिन, और हमें आज ज्वाइन किया हुआ स्टूडियो में उमर ने, और उसके साथ है शहीद जो कि इंटर्न हैं यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान में, थैंक यू वेरी मच। और ये BGM सीधा दिल को लगता है, बस इसीलिए रखा है, मैं मेरी गाल लगे ना लगे कुछ तो तानू लगना चाहिए।
1: अच्छा सर भाई, आपके एक लिसनर है, मैंने नाम पढ़ा था ज़ाद अली लाडला।
0: हाँ जी,
1: मैंने ज़िया भाई को भी ये बात बताई थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं तब बहुत छोटा था जब मैं, मुझे भी इनका नाम पढ़ के याद आ गया, मैं होमवर्क कर रहा था एंड मैंने सडनली रेडियो ट्यून इन किया और पहली बात जो मैंने सुनी थी डैड वास्ते ज़ाद अली लाडला, ज़िया भाई के शो में किसी आधी रात के चांद के पीछे पड़े हुए थे ये।
0: बिस्ती हो रही तेरी, सुन रहा है, बहुत बिस्ती कर रहा है ये तेरे ग्रुप में है ना, कान बढ़ा दे, कान बढ़ा दे, तुम्हें मैं वो रोल दूंगा तुम याद करोगे। एनीवेज, हर गले मिलने वाला मुखलिस नहीं होता, मुनाफिक पीठ पीछे वार करने के लिए गले मिलते हैं। अच्छी, ठीक है, कहावतें अच्छी हैं। ओके जी, फिजा राजपूत आपके भी पैगाम आता है, फेवरेट सॉन्ग लगाया। सुलेमान चांडिया साहब आए हैं, सलाम किया, वालेकुम सलाम, फेवरेट सॉन्ग, थैंक यू वेरी मच, आप पसंद करते हैं। अब चाल बाय राहत फतेह अली खान लगा देंगे मैडम, और भी बताएं, हुक्म करें, डोंट वरी। और इसके अलावा आज डॉक्स क्या कहने किसके, अच्छा रोशनी है, फिजा राजपूत कहाँ हो आप, अच्छा आपस में लगे आप, और ठीक हो गया। ओके, आरजे ख्वाजा इम्तियाज साहब ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। नाई के भी पता नहीं, अग्गे नहीं मैं पढ़िया, पता नहीं की शेर बनाता है,
2: शेर का बब्बर शेर बना दिया होगा।
0: कहता नाई के भी आंसू निकला है, अग्गे मैं पढ़िया पता नहीं की है,
2: ये कौन सा वाला शेर था
0: पता नहीं हूँ की है। किस्सा फातिमा मैसेज करती है, अस्सलाम कहती है, असद अगर किसी को कोई कलर पसंद हो तो जरूरी नहीं वो ऐसा ही हो, थोड़ा बहुत रिलेटेबल हो सकता है बट 100% नहीं। आज जो बंदा कभी कभी सुने ना उसको ऐसे ही लगता है कि ये बात मैंने नहीं की, अगर आप रेगुलर सुने ना तो फिर आपको शायद पता हो कि मैं बात अक्सर कहता हूँ, जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना जो रिसर्च बेस्ड होती हैं वो एक्यूरेट नहीं होती, उसमें डेटा इकट्ठा किया जाता है, कंपाइल किया जाता है बहुत सारे लोगों से, और जो कॉमन चीज़ें निकलती हैं उनको फिर रिसर्च में एज ए रिजल्ट प्रेजेंट किया जाता है। किसी में वो 50% होती हैं, किसी में 70%, किसी किसी में 100% और किसी में 5-10%, ये रेशो भी होती है, उन्हें वैसे रिसर्च में हम निगेट कर देते हैं, हम एक सर्टन पैरामीटर स्केल सेट करते हैं ना, तो उस पैरामीटर के बाद फिर ये रिसर्चेज आती हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सुना करें ध्यान से शो। ओके, पर्पल के ऊपर बिल्कुल लाज डॉक्स भाई, हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, तसल्ली से बात करेंगे, ताड़ी तसल्ली करा के तानू कार कर लांगे, टेंशन नहीं लेनी। और बहुत शुक्रिया आपका, आहो डायरेक्टिव फादर दा रोल, कोई गल नहीं, हूँ फिर हो सकता है, मुझे देख के पता नहीं क्या क्या याद आ जाता है लोगों को। शादी तो कर लेने दो लड़के को जालिमो, अच्छा ठीक है, ये BGM सीधा दिल को लगता है। आबिश सरताश आई हैं, मैंने इनकार की तख्ती भी लगा रखी थी, ले उड़ा फिर भी मुझे सारे का सारा कोई, आए ये बात बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हजारों अच्छाइयों की कोई रसीद नहीं होती, एक गलती का पूरा हिसाब रखा जाता है, आप ठीक कह रहे हैं। अस्मा कौसर साहब आई हैं, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अभी हम बात कर रहे थे येलो पे, लेट्स टॉक अबाउट येलो कलर, ताकि हम येलो की कंपैटिबिलिटी पे भी पहुंचते हैं, इसको भी मुकम्मल करते हैं, फिर ब्लू के बारे में भी थोड़ा सा करते हैं जी। और अगर हम बात करें इन्हें क्या चीज़ पसंद होती है, इन्हें ट्रैवल करना बड़ा पसंद होता है, येलो कलर, और नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है, एडवेंचरस होते हैं, दोस्ती करना पसंद है, हंसी मजाक पसंद होता है, सोशल गैदरिंग पसंद करते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट तो होते ही हैं। और इन्हें क्या चीज़ ना पसंद है वो है खामोशी, अकेलापन, सख्त किस्म की रूटीन, मनफी सोच और जज्बाती दबाव, वो इनको बिल्कुल नहीं पसंद। और अगर इनकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए, मोहब्बत में फन चाहते हैं, रोमांटिक सरप्राइजेस पसंद करते हैं, बहुत ही महंगा पैदा है नाना रिश्ता बनाना। यकीन करो छेती की तरह राजी नहीं जे होंगे, ब्रांड तो थले गाल ही नहीं करते।
2: मोबाइल भी तो आईफोन,
0: हाँ मोबाइल भी आईफोन चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है लेकिन महंगे होते हैं,
2: महंगे
0: अगर बंदा ही बेचारा आईफोन ना दे सके गरीब आदमी होए
2: आईफोन जितना बंदा खुद तो महंगा।
0: मेरे जो बंदा गरीब होया था फिर बंदा कहता अच्छा मैं देखना मैं कि शह बेचनी, गुड़दा बेचना की बेचना, कुछ तो बेचता हूँ। मुझे इससे याद आया एक दफ़ा मैंने वो एलेक्स पे देखा था, एक बच्चे ने ऐड लगाया हुआ था, वो दो तीन दिन पहले मैं उसकी बात कर रहा था, इट्स बीन अ वाइल, उसने लिखा हुआ अब्बा बराए फरोख्त डैड फॉर सेल। मैं कहूँ ये किस किस्म का ऐड है यार, और उसने लिखा हुआ मैंने आईफोन खरीदना मेरे अब्बा नहीं लेके देते, सो आई वॉन्ट टू सेल माई फादर। मैं कहूँ के दैट्स गुड यार, ऐसे ऐसे काम भी हो रहे हैं, अच्छा है यार। और ये आज़ादी पसंद करते हैं, इन्हें ऐसा पार्टनर पसंद होता है जो इनकी एनर्जी को समझ सके। और अब हम बात करें ना, अगर येलो का किसके साथ मैच बड़ा होता है, अच्छा होता है, ऑरेंज कलर लवर्स जो होते हैं उनका बड़ा अच्छा होता है येलो कलर्स पसंद करने वालों के साथ, इनकी कंपैटिबिलिटी के चार्ट के अकॉर्डिंगली 94% है। और क्वालिटी क्या, दोनों ही एडवेंचर को पसंद करते हैं, दोनों में बड़ा अच्छा फन रिलेशनशिप बनता है। और मसला यहाँ पे ये, दोनों ही गैर संजीदा होते हैं दोनों कलर्स। और अगर येलो प्लस रेड की बात करें, कंपैटिबिलिटी 87% है, दोनों पैशनेट, एक्साइटमेंट और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ डेवलप होती है, लेकिन दोनों जो है ना अगर इकट्ठे हों तो इशू इनमें जल्दी गुस्से का आना, अग्रेसिव लेवल और ड्रामा बहुत ज़्यादा इनमें ऐड होता है। और अगर येलो प्लस पिंक लवर की बात करें, जिनकी कंपैटिबिलिटी का लेवल है जी 82%, और क्यूट किस्म का रोमांटिक रिलेशनशिप है ये, पिंक पे तो वैसे ही बड़ी बंदा क्यूटनेस क्यूटनेस फील होती है, फील होती है, लेकिन हो ना हो
2: वो अलग बात,
1: पुकी होते हैं वो,
0: हैं
1: पुकी होते हैं, पुकी,
0: हाँ पुकी होते
1: हैं। सर मुझे मेरा बता दें, येलो और ब्लैक
0: पुकी पे टूटी होता है ना जी।
2: वेट करो वेट, येलो और ब्लैक।
0: अब अगर हम पिंक और येलो की बात करें, मूड स्विंग के बड़े इश्यूज होते हैं इनके। और इसके अलावा ग्रीन के साथ अगर बात की जाए, इनकी एनर्जी एक दूसरे को एनर्जी देते हैं, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इनमें, और लाइफस्टाइल डिफरेंट होने का इनमें इशू आ सकता है। और येलो प्लस ब्लू की अगर बात करें, 74% इनमें जो है ना अकॉर्डिंग टू द चार्ट कंपैटिबिलिटी है। और ब्लू क्योंकि पीसफुल है, प्रोफेशनल है, सुकून, चल, येलो ज़रा लाइट है, खुशी वाला, तो दोनों का अच्छा है। और लेकिन मसला वहाँ पे आता है कि दोनों में डिसीजन मेकिंग पावर का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वहाँ पे इशू आ सकता है। वाइट प्लस येलो पॉजिटिव किस्म की वाइब्स हैं, 77% है, और एनर्जी लेवल एक दूसरे को थका देने वाला, येलो का क्योंकि थोड़ा सा और होता है, वाइट ज़रा स्लो एंड ग्रेजुअली पीसफुल होता है। येलो प्लस ब्लैक अगर बात करें हम, 58% कंपैटिबिलिटी ब्रो, ऑपोजिट अट्रैक्शन है।
1: सर आपने नोट किए कि उम्र कितना बेसब्री से इंतजार,
3: मैं ब्लैक का वेट कर रहा था बेसब्री से,
0: है ना,
3: ब्लैक येलो ब्लैक,
0: हाँ
2: नहीं आप और मैचिंग ठीक नहीं है
0: क्योंकि ब्लैक जो होता है वो ज्यादा मतलब सिचुएशन में बोलता नहीं है। आपने एक बात की थी जो शुरू में मैंने सुन ली थी, आपने कहा कि मुझे तो सारी सुनाने वाली मिली है, वो सुनाने वाली नहीं है, आप कम बोलने वाले, आप कम बोलने वाले। मसला ये है, जिशान अली है, हेलो सर आई एम फायदा, ना जिशान अली
3: मस...
0: निकल आइए। अच्छा ये था नॉर्मली फेसबुक पे एक्सपीरियंस चल रहा होता, ऊपर नाम लड़की का होता, अंदर मुंडा निकल आता है, मेरे शो में बंदे का मैसेज आता है, अंदर कुड़ी निकल रही होती है। This is something surprising for me. Anyways, how are you, Faiza? I hope you are well. Thank you very much. अभी अगर हम बात करें जी, हमने बात कर ली फैशन साइकोलॉजी है, फ्रेंडली क्रिएटिव, ओके ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक नज़र आते हैं। और ये मैंने आपको येलो के बारे में बताया है, ब्लू के बारे में भी बताऊंगा, वक्त हो चुका है 11:41। बाकी जो मेरे साथ साहिबान बैठे हैं इनका ओपिनियन लेते हैं। हाँ जी पायन, दसो।
3: सर पहले तो मेरा जो एक शेर रहता है, मैं शेर बहुत मुश्किल से ढूंढा है, पहले तो मैं ये शेर सुनाऊंगा जो कि मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है।
0: रिदम में सुनाना।
3: आई एम ट्राई माय बेस्ट।
0: ओके
3: कि रिदम में जाए,
0: बाकी वो शेर सुनाएगा तुमने सुनाने नहीं देना। चलो
3: ओके लेट्स स्टार्ट। सर ये भी शेर मिर्ज़ा गालिब का ही है
1: क्या करना
0: भाई? ऐसे नहीं बोलना नहीं है, बस तुमने उसे आसाना है डिस्ट्रैक्ट।
1: अच्छा ओके
3: मैं इग्नोर करूंगा मैं देख नहीं इसकी तरफ।
0: हां
3: सर ये शेर भी मिर्ज़ा गालिब का ही है कि तेरी सादगी तेरी आजजी तेरी हर एक अदा कमाल है, मुझे फख्र है मुझे नाज है मेरा यार बेमिसाल है।
0: आए हाय ये जिस कुड़ी को सुनाएगा कभी नहीं तेरी तरफ आएगी यार इस तरह तो शेर सुनाओगे तुम मतलब यही तो चीज फील लेके आनी है,
1: शायरी की तोहीन कर रही है।
0: शायरी फील लाओ, फील के साथ बात करो।
3: सर मैं इमेजिन करूँ ये माइक नहीं ये हाथ, ये हाथ है
0: सामने
3: मैंने हाथ पकड़ा हुआ है और मैं वो ये
0: तुम्हारे अंदर भी जो है ना बेहुदा इंसान जागना शुरू हो जाता है
3: वो फीलिंग की
0: फीलिंग की बात हो रही है। येलो कलर क्रिकेट में टोपी पे स्टार का है, वजीराबाद ट्रेन की लाइट येलो है, लाहौर से आपको याद किया तीनों को, थैंक यू वेरी मच जी लकी बॉय। सर 10 जुलाई के स्टार के बारे में बताएं। अच्छा यार दासी देव बताते हैं यार, अभी मैं बताता हूँ। तुम फिर ना आ सकोगे कहना तो था मुझे तुम दूर जहां के, उर्दू में लिख दिया करें नहीं अब समझ आ रही है क्या, बुश बुश मैनू लगना शुरू हो जाता शेर दे विच एकदम बुश आ गए अब ये बुश दो तरह के होते हैं, वो मुझे झाड़े कांटियों कांटों वाले एक दूसरे मैनू गड्डी दे बुश लगना शुरू हो जाते हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही है कौन सा बुश है या खुश ना लिखा हो। एनी वेज आई एम सॉरी मैं आपका शेर नहीं पढ़ पाया क्योंकि समझ नहीं आ रही। आगे मैसेज है सर जी शेर पढ़ के मज़े हमें लेने दिया करें, आप शेर पर खुद ही मज़े लेने अच्छा आई लाइक इट स्वीट प्रेस गुड शो थैंक यू वेरी मच फरहीन शहजादी वाह वाह क्या बात है थैंक यू वेरी मच जी। और तुसी सानू भूल गए नहीं ऐसी तानू क्यों भूलांगे, मतलब इतनी प्यारी डीपी लगाई होती है बंदा वैसी देख रहा होता है यार मैं तो नहीं भूला। लकी बॉय रावलपिंडी से कहते हैं भूल की भी भूल हाँ नहीं पढ़ सकते
1: हमें उर्दू में ही समझ नहीं आ रहा
0: फूल की हाँ फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा है कलाम नर्म नाजुक बेअसर होएगा नहीं कुछ होगी बात ऊपर नीचे हो गया लगता मुझे। इम्तियाज अहमद है इस्लाम की वालेकुम सलाम शो इज वेरी नाइस पाक फौज एंड लीपा हीरोज बटालियन को सलाम वालेकुम अस्सलाम हमारी तरफ से भी तमाम फौजी भाइयों को सलाम है जी। डॉक्स भाई सलाम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आई लाइक द ब्लू कलर वाइट कलर प्लीज इन पे भी बताइएगा। जुनी फ्रॉम लाहौर रहमान होता उसने कहना सी नहीं दसना, मैंने पूछना था क्यों कहना उसने भाई कह दिया अच्छा आप बस एक ही शो करते हैं कि एक से ज्यादा करते हैं? मैं बुध जुमेरात को करता हूँ 10 से 12। फाती लाहौर से ब्लैक कलर पे बात करें, अच्छा बता देता हूँ आपको सबर कर दें। अली सवाद से सर प्लीज प्लीज प्ले अफगान रुबाब, अफगान जलेबी ना प्ले कर दूंगा, अफगान रुबाब मैं सुनाऊंगा आपको एक गाने के अंदर ब्लेंड करके ना, अभी वो जाने बहारा के अंदर अफगान रुबाब है वो गाना प्ले करेंगे पूरा नया आया है यू गोना लव इट। जिशान आई एम फाइन आप बताओ आप ठीक हो खैरियत से हो? और रुखसार मुझे भी ग्लूको बिस्किट बहुत पसंद हैं, कौन खा रहा था
1: ये तो प्रमोशन होने लग गई
0: कौन खा रहा था हम में से तो किसी ने ग्लूको की बात नहीं की, गलती से मैसेज कर तो नहीं दिया किसी और को ना कर दिया हो, मैंने कहा मुझे ग्लूको बिस्किट पसंद है तुम अपनी पसंद बताओ, अरे एक दूसरे से पसंद एक्सचेंज हो रही हो
1: ये लेते
0: अगर है। उसको ग्लूको पसंद है ना रुखसार अंडर एज मामला है थोड़ा वेट कर ये नहीं थोड़ा बड़ा होने दे यार दिस नॉट गुड अच्छा जी मैं सैड इसलिए थी कल मामा से डांट पड़ी थी मुझे, हाय हाय हाय एक एफएम सुनती रहती हो और कॉल भी करके बला बला बला किसको सुनती रहती है, मैं तो दो दिन आता हूँ, बाकी दिन किसको सुनती है। वैसे उमर भाई आपकी ब्लैक कलर के साथ तो कोई मैचिंग नहीं हो रही, पता नहीं ये पसंद क्यों है आपको। अच्छा बताएं इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा आपने, बट वहां जाके ज्यादा दिलचस्प लगी, कैसी वाइब्स आती हैं वहां आपको बताएं। शहीर भाई आप दोनों में आपकी ना होने वाली इंटरनी लाहौर से बिस्मा, अरे एक मैसेज को 30 रुपए से ज्यादा कट रहे हैं, वाओ नहीं यार। अच्छा चलो कर लेते हैं, अगले हफ्ते व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। हाँ जी आई वॉन्ट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस।
3: सर बहुत सर क्वेश्चन इनका था,
0: ये बिस्मा है, इन्होंने अप्लाई भी किया था, नहीं आ पाई है इंटर्नशिप में।
3: बिस्मा मैं यही कहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छा चांस मिस कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे आके तकरीबन हमें यहाँ पे एक मंथ कंप्लीट हो गया,
1: वो पहले डीमोटिवेट है तो ओल्ड
3: डीमोटिवेट। नहीं नहीं मैं उनको बता रहा हूँ कि हमने यहाँ वो आई नहीं ना, वो तो आई नहीं,
2: साड़ना बंद
3: था वो उनके। हमने यहाँ पे एक मंथ में बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे यानी कि हमें डिफरेंट चीज़ सीखने को मिली, जो कि हम बाहर बैठ के सोचते थे कि यार रेडियो के मुतालिक जो एक कहने की नेगेटिव चीज़ माइंड में सेट थी, वो एक इमेज चेंज हुआ कि नहीं रेडियो भी है, एग्जिस्ट करता है। हम तो ये सोच के बैठे हुए थे रेडियो ख़त्म हो गया, मैं कहीं पर दब गया हुआ है, कब्र है उसके अंदर दब गया, पर आर जे डॉक्स ने हमें रियलाइज करवाया कि नहीं वो कब्र के अंदर नहीं है, वो आज भी
0: पूरी टीम है यार।
3: हाँ पूरी टीम है, वो आज भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, और इसका एक अपना एक लेवल है, मुकाम अभी भी जिंदा है। तो उसके अलावा ये कि हम साथ साथ बहुत हमारा कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ, और उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिली, डिफरेंट तरह के यहाँ पे जो थे हमारी फील्ड के रिलेटेड गेस्ट आए, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, जिसमें एक्टर्स थे, कमेंटेटर्स थे, उसके अलावा कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने आके यहाँ पे लेक्चर्स दिए हमें, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। कॉन्फिडेंस आया,
0: वो भी कुछ बोल ले।
3: लिसन हमने यहाँ पे इतना कुछ सीखा है कि मैं बताता जाऊँ दो घंटे खत्म हो जाएंगे, पर वो खत्म नहीं होगा चीजें जो हमने यहाँ पे सीखी हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आपने चांस मिस किया।
0: कोई नहीं, सही। हाँ जी
1: ऑलराइट। मैं यहाँ पे आने से पहले भी रेडियो कर रहा था, यू नो मेरे जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया इन्होंने क्वेश्चन भी ये किया था, रेडियो पाकिस्तान का एक प्रिसेप्शन था मेरे दिन में, लाइक रेडियो पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकली जितने भी चैनल्स रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर रेडियो चैनल्स, एंड यही चीज़ थी कि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी हेयर, एंड डेफिनेटली थैंक्स टू ऑल द टीम जो यहाँ यहाँ पर मौजूद थे, स्पेशली आर जे डॉक्स, एंड आई कैन नेवर फॉरगेट, मेरे लिए एक फ़ैन मूवमेंट था व्हेन आई मेट ज़िया अंजुम देयर, सो डेफिनेटली आप दोनों का बहुत शुक्रिया,
0: यू गाइस
1: प्रोवाइडेड अस विद दिस अपॉर्चुनिटी।
0: मारी जंदा है, मेरे लिए फैन मूवमेंट था ज़िया अंजुम, भाई मैं भी था वहाँ पे, मुझे नहीं मिले तुम,
1: मैंने सबसे पहले आपका नाम लिया
0: इधर फैन मूवमेंट में, मेरा नाम लिया इसने
2: ज़िया अंजुम,
0: इसको माइक ले ले वापस, इसको बाहर निकाले यहाँ से,
3: हड़पे जुनून में हम,
1: फिर मैं भी सैड हो जाऊंगा।

0: हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए। हम जिसे पास बिठा लें वो बिछड़ जाता है, तुम जिसे हाथ लगाओ वो तुम्हारा हो जाए। तुमको लगता है तुम जीत गए हो मुझसे, हाँ यही बात तो फिर है, यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए।
1: वाह वाह।
0: है मोहब्बत भी अजब तर्ज तिजारत के, यहाँ हर दुकानदार ये चाहे कि खसारा हो जाए। क्या बात है, क्या बात है लड़की फरीन, बहुत अच्छी शायरी, आई लाइक इट। चलो जबरदस्त। मोहम्मद अवैश ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम आरजे डॉक्स। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सजाद अली लाडला एडी ओके, मैं नहीं पढ़नी। चेहरे सुखन से रूह को वो आशनाई दे, आंखें भी बंद रखो तो रास्ता सुझाई दे, मैं नहीं पढ़ूंगा, मुश्किल है।
1: बहुत मुश्किल है।
0: मोहम्मद अवैस, बताना चाहूंगा कि आज रावी रिवर में फ्लड अगेन आ गया है, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, अल्लाह खैर करे जी, मांगा मंडी के एरिया में। और जितने भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें यार, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मत जाएं ऐसे एरियाज में, थोड़े ऐसे बाहर चले जाना प्लीज़। फरीन शहजादी, गेस्ट भी कमाल के बुलाए हैं आपने, थैंक यू वेरी मच जी। कमाल के नहीं है, सारों के अलग अलग घर हैं। जिशान अली आपका शो अच्छा है, आपका शो कमाल का नहीं है भाई, कमाल का मेरा शो मेरा है भाई, तुझे सारे एको पास ही टोर पे। जी हाँ, आसम है जी, वी आर ए टीम, फेसबुक के मैसेजेस शामिल कर रहा हूँ। आर जे वजी हाँ आसम will bring radio on top inshallah ji, we are the team, thank you very much for your message. Kalbe momin hai, salam kiya, walaikum assalam. And uske alawa hamare sath subhan ali hain ji, sabko assalam alaikum, walaikum assalam. Aur main mohsin, acha main mohsin, mujhe laga angrezi wala main likha hoga na. और दुनियापुर से, फेवरेट कलर इज ब्लैक, ओके विल टॉक अबाउट इट बिफोर आई लीव। एंड उस्मान बिन इमदाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम सीन योर मैसेज, सुपर प्रोग्राम आज डॉक्स, बहुत खुशी हुई न्यू आज को सुन के, अल्लाह पाक इन सबको कामयाब करे। सर आज डॉक्स, आपकी बहुत स्ट्रगल है माशाल्लाह, जिस तरह आपने इंटर्नशिप कंडक्ट करवाई है, अब प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं सबको, थैंक यू वेरी मच। या आई एम पुटिंग माई बेस्ट एफर्ट के, हाँ यार, दे शुड कम हियर, दे शुड लर्न फ्रॉम एवरी सिंगल पर्सन एंड एंगल। आप जद्दा से सुन रहे हैं, यार मैं इंतजार में हूँ, आते हुए वो आपने लेके आनी है खजूरें मेरी, ठीक है, ओके। मरीना बिलाल, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हुमा शेख हैं, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। एंड आर जे उदयर शाह जी, मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी से कवल नाज है, सुन रही हैं, वालेकुम अस्सलाम। एंड रेड कलर इज माई फेवरेट, बताया मैंने उसके बारे में, कल पे मोमिन गुड शो सर, सलाम माई स्वीट सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम जी। ये मेरे साथ आप लड़कियां बैठी हैं, मुझे नहीं था पता, इन्हें आपने स्वीट सिस्टर कहा है ना, आज एक पोइट्री तेरी यादों में एक याद थी, आय हाय हाय क्या याद थी, कुछ याद नहीं, तेरी यादों में सब कुछ भूल गए, क्या भूल गए, कुछ याद नहीं, हाय हाय क्या बात है। सारे मैं इस्लाम सर, हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। और फ्रिया बिल्कुल, मैं आप लोगों के मैसेजेस अब यहाँ पे देख रहा हूँ, और इसके लिए माजत खाऊँ, यहाँ पे ताखीर हुई आप लोगों के मैसेजेस पढ़ने में। मोहम्मद हफीज़ुर रहमान बखर से, थैंक यू वेरी मच। गुल यासीन है। एंड रेहाना खान बखर से, आप भी सुन रही हैं, थैंक यू वेरी मच। दुनिया क्या है, एक जंगल है, क्या करते हो उससे मोहब्बत, अच्छा है, क्या सोचा है उससे मोहब्बत, दिल की ख्वाहिश उसको पाना, मतलब पेशा उससे मोहब्बत, लब की ख्वाहिश उसका माथा, मीठा क्या है उसका लहजा, कड़वा क्या है मेरी बातें, खुशियां क्या है उसका होना, तो गम क्या है उससे जुदाई,
1: वाह,
0: सर्दी क्या है उसकी उदासी, सावन क्या है उसका रोना, और बहारें उसका हंसना, अर्ज किया है झीलें क्या है उसकी आंखें, उमदा क्या है उसका चेहरा, लब की ख्वाहिश उसका माथा, क्या पढ़ना है उसका लिखा, क्या सुनना है उसकी गजलें, और तुम क्या हो मजनू उसका, और वो क्या है लैला मेरी, है ही नहीं ऐथे की करिए, एनजी गुजारा कर दिए, चलो अच्छा काफ़ी तेज़ी से पढ़ा, बहुत अच्छी थी क्योंकि वक्त थोड़ा था, मैंने क्लास में पढ़ लूँ, अच्छा था उसका तखयल बहुत अच्छा था। अभी ओके थैंक यू वेरी मच नौशीन राशिद साहब, आपके मैसेज देखे जी बहुत शुक्रिया, और थैंक यू वेरी मच सजाद अली लाडला, अबू बकर खान साहब आपका भी मैसेज मिला, मुदसर हसन फेवरेट कलर येलो है, बिल्कुल यही बातें सूट करती हैं, शुक्र है जी। कमाल अवान प्रिंस मोहित थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, अकबर खान साहब कराची से मेरे बड़े अच्छे लिसनर हैं, थैंक यू वेरी मच, और आप पे ब्लू सूट करता है, ब्लू सूट सूट करता है, भेज दें फिर जल्दी से एक, जल्दी करें जल्दी। और माद अली आपका भी मैसेज मिला, सजाद भाई आपका भी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू रीड योर मैसेजेस। और इसके अलावा फायदा हैदराबाद से, मड़ा आज का शो कमाल है, मड़ा तुमको मेरा शो पसंद आई है, जल्दी। और माद अली आपका भी मैसेज मिला, सजाद भाई आपका भी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू रीड योर मैसेजेस।

0: बिल्कुल, इनके ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं। पर्सनैलिटी पे अगर हम जाएं, इन्हें मिस्ट्री पसंद होती है, मिस्टीरियस किस्म के होते हैं और इमोशनली डीप होते हैं। बड़ी डीप किस्म की कन्वर्सेशन पसंद होती है, आज़ादी पसंद होती है, कॉन्फिडेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है और चीज़ों में बड़े सिलेक्टिव होते हैं, लॉयल्टी अच्छी है, प्राइवेट किस्म के मामलात रखने पसंद करते हैं, ओपनली शेयर करना नहीं पसंद, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ग्रीन कलर काम, चिल, केयरिंग, लॉयल, पेशेंट, बैलेंस लाइफ पसंद करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड किस्म के लोग होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। एंड वाइट अंडरस्टूड है जी, ऑनेस्ट है, पीसफुल है, ऑर्गेनाइज्ड है, सिंपल एंड काइंड, रिस्पेक्टफुल, प्रोफेशनल और इमोशनली बहुत सेंसिटिव किस्म के लोग होते हैं। एंड सोनिया फ्रॉम इस्लामाबाद, लव यू ब्रो, योर शो इज वेरी नाइस, वॉइस इज नाइस, कलर ब्लैक के बारे में बता दिया मैंने आपको, बाकी डिटेल शो कर चुका हूँ लेकिन फिर कर लेंगे। लकी बॉय, ऑलवेज लिव लाइक अ कैंडल हु बर्न्स इटसेल्फ बट गिव लाइट टू अदर, बट ठीक है, अच्छा। व्हाट अबाउट ब्लू कलर? सारा अली आप लेट आई हो, मैं नहीं बता रहा, मैं बता चुका हूँ पहले ही। ओके नाउ आई लीव, और वक्त हो चुका है 11:58, आज हमने येलो कलर पे बात की, अगले शो में पर्पल पे करेंगे और उसके साथ फिर ऐड कर लेंगे बाकी कोई अच्छा अगर आप कहेंगे कलर। एनीथिंग यू वांट टू से?
1: सर लास्ट में मैं एक और शेड ट्राई करना चाहूंगा।
0: हूं इंटर्नशिप तक करना टाइम है,
2: आई सब करके जाना।
1: आज ये फ्लो जो है ना आ गया शेड वाला, मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, आज आपने ट्राई करवाया है तो
2: दो मिनट में ऑफर हो जाना शो।
0: बताओ सुनाओ सुना भाई छेती सुना
1: सर। ये शेर कुछ इस तरह से है कि तेरी मुस्कुराहट मेरे लिए दुनिया से ज्यादा कीमती है, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट में मुझे अपना सुकून मिलता है।
3: बस खत्म हो गया,
1: खत्म हो गया सर। दो लाइंस का था ना, दो लाइंस का था ना, दो मिनट रह गया ना, खत्म
0: हो गया,
1: खत्म हो गया, खत्म हो गया,
0: ठीक है। आई वांट टू से जाने से पहले
2: अगेन इट्स अ फैन मूवमेंट के आप मेरे सामने बैठे हैं, मैंने कहा जाने से पहले ये खत्म कर दूं,
0: कल कहना चाहिए था इट्स अ फैन मूवमेंट है, आगे बोलते आपके लिए कि मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं हंसता, मैं कहता हां बिल्कुल सही, कल तो इतने नजर ना आए।
2: नील आर्मस्ट्रांग ने ना जाने से पहले अपने ऑटोग्राफ साइन करके रख गया था कि मैं वापस ना आया मैं फेमस हो जाऊंगा ये बेच के, तो मैं भी यही सोच रहा हूँ मैं रख जाऊंगा।
0: तुम छा गए
2: सारे, यही लग रहे हैं कि वापस नहीं आना।
0: ओहो मैं बोल ही गया सी। हाँ जी मोहसिन, एनीथिंग, टाटा बाय बाय।
4: ओके जी, बहुत अच्छा लगा, आज हमने येलो कलर पे बात की लेकिन कॉल्स नहीं ले सके,
0: नहीं है
4: उसके लिए माजरत।
0: ओके
4: बाय बाय टाटा,
1: बहुत अच्छा लगा शो पे आके हमें, मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं ऐसे किसी शो पे लाइव आया हूँ और आके एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ उनके साथ बैठ के माइक शेयर करना मेरे लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी थी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी।
0: थैंक यू वेरी मच जी शहीद।
2: वंस अगेन एज मेरे बहुत से डिफरेंट लोगों के साथ इस रेडियो इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहे हैं, बट आपको मैं बताना चाहता हूँ ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अब क्योंकि शो ख़त्म हो रहा है, आपके साथ जो मेरा कम्फर्ट लेवल था इस शो में, डेट बात किसी के साथ भी ऐसा नहीं था। बहुत सी डिफरेंट रेडियो पर्सनैलिटीज़ के साथ मैंने शोज़ किए हैं एंड यू आर वन जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल हो गया, बस बोल रहा हूँ विदाउट थिंकिंग के क्या जा रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।
0: ओह थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अगली दफ़ा ज़्यादा टाइम लेके आइएगा, आप टाइम पर आइएगा, मैं ज़्यादा टाइम पर आता। एनी वेज OMG आप फेमस ही हो ब्रो, थैंक यू वेरी मच। और ये गाना है जी रबाब के साथ, तुर्किश रबाब, एंड I love this track and this track is for you. ये गाना पूरा चलेगा फिर उसके बाद ट्रांसमिशन चेंज होगी, सो स्टे ट्यून, सुनना है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली बुध को।

0: समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो तमाम बातें जो कि आप करना चाहते हैं वो प्रोग्राम में होंगी। और सबसे पहला सवाल मेरा ये है, मेरी घड़ी को किसने नजर लगाई है यार? किसने नजर लगाई है मेरी घड़ी को? अब तुम सोच रहे होगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बताता हूँ क्या हुआ, आगे चल के बताएंगे। उसके अलावा आप अगर हमें कॉल करना चाहें तो 0511111010051902540, दैट इज द नंबर टू डायल ऑन, इसके ऊपर आप हमें कॉल करेंगे और कॉल करके हम बातें करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी सुना है, मौसम बहुत अच्छा है ऑल ओवर द पाकिस्तान। अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं जहां से इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, द कैपिटल सिटी ऑफ दिल दिल पाकिस्तान, दैट इज इस्लामाबाद। और आज एक्चुअली जब मैं स्टूडियोज आ भी रहा था तो मौसम बहुत अच्छा इस हवाले से है कि बारिश होनी चाहिए यार, मुझे बारिश होती हुई पसंद है। हाँ मतलब बारिश नहीं हो रही थी तो बारिश होनी चाहिए, मुझे बारिश में भीगना नहीं पसंद है लेकिन बारिश तो पसंद है, बारिश होती हुई देखना तो पसंद है। मन अटके आ हाय हाय, मन अटके आ बेपरवाह दिनाल दीन दुही दे शाह दिनाल। सो बार क्या है, वो हम बारिश की बात कर रहे थे तो बारिश नहीं हो रही थी, बादल बहुत ज्यादा थे, मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था। अगर आपको स्काई लाइन देखना बहुत पसंद है तो आज इस्लामाबाद में आपको होना चाहिए था, बिकॉज बहुत ही खूबसूरत स्काई लाइन थी आज इस्लामाबाद की। लाहौर के हवाले से हम बात करें तो कुछ फुटेजेस भी हमारे सामने आ रही थी जिसमें लाहौर जो है वो सचमुच का जो पैरिस है वो बन चुका है। खूबसूरत तो वैसे भी था लेकिन अब बारिश की वजह से मैंने सुना बहुत खूबसूरत हो गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाकी शहरों की तो आप जहां जहां से हो जरा हमें बताइएगा क्या सूरत हाल है, लेकिन इस्लामाबाद में सीन ऑन है। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बारिश होते हुए देखना बहुत पसंद है। बारिश पसंद किसको नहीं होती? कॉलर लेते हैं, कॉलर देखें, मेरे से पहले कॉलर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो जनाब, कौन बात कर रही हैं, कहां से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लाहौर से बिस्मा
1: जी।
0: ओके बिस्मा, क्या कर रही हैं?
1: अभी डॉक्टर का शो सुन रहे थे, बहुत मजा आ रहा था।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे कॉल नहीं थी क्योंकि हम लाहौर से हैं ना।
0: हाँ हाँ,
1: तो लाहौर से कर रहे हैं तो वो कॉल वाला सिस्टम पता नहीं क्या हुआ है।
0: अच्छा,
1: बहुत सी बातें करनी थी डॉक्टर के साथ।
0: हाँ तो मैं नंबर दे देता हूँ उनका, आपको नंबर दे दो, नंबर दे देता हूँ उनका, डायरेक्ट कॉल मिला ले उनको मोबाइल फोन पे, अभी घर ही जा रहे होंगे, रास्ते में जाते जाते बात कर लेंगे आपसे।
1: नहीं नहीं
0: नहीं, कहती हैं तो आप हुक्म करें भाई, इतना तो कर सकता है आपके लिए। अच्छा, सो काश काश हमारे भी ऐसे फैंस होते। डॉग्स अगर आप सुन रहे हैं तो देखें यार कितने जबरदस्त फैंस हैं आपके, बात करना चाह रहे हैं खास। काश हमारे भी इतने फैंस होते कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो हमारा इंतजार कर रहे होते, हमारा नंबर मांग रहे होते। हमें तो जब भी कॉल आई है कंपनी वालों की आई है कि बैलेंस डलवा लें, बैलेंस मुक गया आपका। मतलब हाँ, मतलब इजहार तो किया ना आपने,
1: झूठ बोल रहे हैं दोस्त, ये जो भाई लोग होते हैं ऐसे ही होते हैं,
0: वो
1: फंसाते
0: हैं। नहीं
1: कोई नहीं, नंबर शंबर मांगा, ये खुद ही मुझे,
0: मैं आपको ना, मैं आपको सही जुमला बताता हूँ। आप कहें कि जो मीडिया वाले होते हैं ना ये ऐसे ही होते हैं, ये बात को उल्ट पुल्ट करके पेश करते हैं, ऐसे ही है ना?
1: हाँ जी, ये सही बात।
0: खैर आप करती क्या है?
1: मैं डॉक्टर हूँ।
0: डॉक्टर हैं? अच्छा, तो माशाल्लाह किस चीज की डॉक्टर? नहीं जाहिर है डॉक्टर होके आप कुकिंग तो नहीं करेंगी ना, जाहिर है इलाज ही करेंगी। कौन सी डॉक्टर
1: है? कुकिंग भी आती है, कुकिंग भी बहुत अच्छी।
0: क्या बात है, डॉक्टर भी हैं, कुकिंग भी आती है, लोग तो बड़े यार लाहौर के लोग बड़े टैलेंटेड हैं। तो मतलब आप डॉक्टर, मुझे लग रहा है कि आप डॉक्टर नहीं है क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रही, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ सवाल पूछ लूंगा तो आप फंस जाएंगी, तो मेरा बात तो पूरी होने दें। आप डॉक्टर कौन सी हैं, कोई हमें बताइए, कोई स्पेशलाइजेशन की है या जनरल डॉक्टर हैं, क्या है, थोड़ा बताएं ना हमें अपने बारे में, हम ताकि मुस्तफीद हो सके आपसे। मैदा जिगर का जो, अच्छा मैदे जिगर के डॉक्टर को क्या कहते हैं?
1: नहीं नहीं क्यों
0: बताओ? अरे देखें, मैंने आपको पहली दफा ही पहचान लिया था कि आप डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। आप अगर डॉक्टर होती तो आपका डे और रे कम से कम ठीक होता। नहीं आप चाहे लाहौर के हो या आप चाहे पिशौर के हो, जो बंदा डॉक्टर होता है ना वो इतना एक्सपोजर उसको जिंदगी का हो जाता है कि उसका रे और डे ठीक हो जाता है। सो ये हाँ देख लें, अब इतना तो हमें भी पता है, हम मासूम हैं लेकिन अब इतने तो नहीं है ना,
1: बोलने में और सुनने वालों को भी मजा आता है।
0: हाँ
1: सुनने में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आप, यानी कि आप लोगों के मजे का एहतमाम करती हैं। ये तो अब कंफर्म डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर ये डॉक्टर होती तो कम से कम बैलेंस इनके पास होता है। यार डॉक्टर तो इतने पैसे कमाते हैं। डॉक्टर से याद आया, मैं ना आज अपनी वालदा को डॉक्टर के पास लेकर गया वैसी रूटीन चेकअप के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज फाइन, लेकिन वैसी रूटीन चेकअप के लिए महीने में एक आध दफा मैं लेके जाता हूँ। तो वो एक जो लाइफ सर्कल होता है ना यार, ये वाकई चेंज होता है। आपको याद होगा कि हम बचपन में सोचा करते थे या पढ़ा करते थे या हमें वालदैन या बड़े बताया करते थे कि ये जिंदगी एक सर्कल में चलती है और ये सर्कल रिपीट होता है, ये वाकई होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब मैं छोटा था, जब मुझे मेरे पेरेंट्स डॉक्टर के पास लेके जाते थे कभी, तो बताते थे कि खाता सही नहीं है, ये बाहर खेलता रहता है, ये टीवी बहुत ज्यादा देखता है, तो फिर डॉक्टर हमारी सर्जनिश करते थे ना। तो डॉक्टर साहब कहते थे कि बेटा बाहर से खाना नहीं खाना है, बर्गर नहीं खाने हैं, टीवी कम देखना है, और इस तरह की बातें करते थे। आप यकीन जाने कि मुझे आज पता ही नहीं चला और मैं वो सारी चीजें रिपीट कर रहा था अपनी वालदा को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर साहब से कहता था, डॉक्टर साहब देखें विटामिंस भी आप जरूर लिख दीजिए, हम वो भी ले लेते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आप यकीन करें कि मैंने इनको इतना कहा है कि मेरे साथ वॉक पे जाया करें, ये वॉक पे नहीं जाती हैं। कहती हैं मैं जो बस सुबह उठ के काम वगैरह कर लेती हूँ, या वैसे ऑल दो चूंकि हमारी डोमेस्टिक हेल्प आती हैं, या मैं उनके साथ उनको बता देती हूँ कि ये काम कर लो ये काम कर लो, मैं बस जो घर में घूमती फिरती रहती हूँ बस ये मेरी वॉक है। तो डॉक्टर साहब इनको बताएं कि वो वॉक नहीं होती, तो डॉक्टर साहब ने बाकायदा कहा कि अरे नहीं मैम वो वॉक नहीं होती है, वो तो आपका काम है जो आपने करना है। इवन अगर आप ऑफिशियल यूज में भी वॉक कर रहे हो, लाइक अगर आप ऑफिशियल टाइम के अंदर भी आपका कोई ऐसा काम है जो वॉक वाला है, वो वॉक भी वॉकिंग में काउंट नहीं होती है जो आप एक्सरसाइज के लिए या अपनी हेल्थ के लिए काउंट करते हो। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो है ना जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल नहीं खाना है मैम आपने। तो मुझे कोई तीसरे चौथे मिनट में एहसास हुआ कि ये तो साइकिल रिपीट हो रहा है, ये तो काम मेरे साथ होता था जो मैं आज इनके साथ कर रहा हूँ। दिस इज हाउ इट इज यार।

0: ਜਾਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕੌਣ ਹੈ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਔਰ ਯਾਰ ਅੰਕਲ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੇ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਓਕੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕਾਲਰ ਹੈਲੋ وعلیکم السلام اقتدار صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں
1: الحمدللہ آپ کے کیا حال ہیں
0: کرم اللہ کا اقتدار صاحب کیا چل رہا ہے لائف میں آپ
1: نشیب و فراز
0: بس نشیب و فراز چل رہے ہیں کیوں وجہ
1: نشیب و فراز ہی تو لائف ہے
0: ارے واہ واہ واہ واہ آج سارے مجھے سمجھدار لوگ ہی مل رہے ہیں
1: ایک ڈاکٹر کے بیٹے سے بات کر رہے ہیں
0: ڈاکٹر کے کس سے بات کر رہا ہوں
1: بیٹے سے
0: اچھا آپ کے والد صاحب ڈاکٹر تھے
1: جی
0: کس چیز کے ڈاکٹر تھے
1: بچے ٹیوبرکلوسس کے سفید
0: اچھا اچھا اچھا اللہ تعالیٰ ان کو حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ زندگی دے اگر گزر چکے ہیں تو غریق رحمت کرے
1: ہاں وہ بس دعا کریں وہ اصل میں کہتے تھے ہمیشہ اور میں نے اپنے گھر میں ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ ابا امی رات کو ہمیشہ دو چیز پہ فوکس ہوتا تھا ان کا قرآن مجید
0: ماشاء اللہ
1: اور ابا انڈر لائن کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ سائنس نے ابھی کہا ہے قرآن نے یہ کب کہا تھا
0: ماشاء اللہ
1: سائنس نے ابھی کہا ہے قرآن نے یہ کب کہا تھا اور ہمارے پاس وہ نہج البلاغہ ابھی تک موجود ہے جس سے ابا نے انڈر لائن کیا تھا
0: والد آپ کے جنت کے لیے رخصت ہو چکے
1: ہاں 86 میں
0: اچھا اچھا یاد آتا ہے آپ کو
1: بہت زیادہ
0: بھی یاد نہ
1: جب لوگ میرا تعارف کراتے ہیں
0: ہاں جی
1: ان کے پھپا فلاں عالم دین ان کے پھپا سے
0: نہیں وہ میں
1: تو میں کہتا تھا میرا تعارف میرے والدین
0: ہے اچھا نہیں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ بھی یاد نہ کیجیے گا یہ نہ ہو کسی دن وہ یاد کر لیں آپ کو
1: موت کی طرف لپکو امیر المومنین کا قول ہے موت کی طرف لپکو اگر تم نہیں لپکو گے تو وہ تو تمہیں اوچک ہی لے گی
0: نہیں وہ تو بالکل آپ کی بات درست ہے لیکن وہ بندہ تب لپکے نا کہ جب تیاری بھی کر رکھی ہو
1: تیاری تو دیکھیے اگر دیکھا جائے میجورٹی کی
0: آپ کی تو خیر ابھی جس عمر میں آپ ہیں آپ کی تو ویسے بھی ہو ہی چکی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے لے
1: ایسی بات ہے آپ جیسے بیگ تیار رکھتے ہوئے آپ نے اس سے جو پوچھا تھا نا جو آئی تھی
0: ہاں ڈاکٹر صاحبہ فیک ڈاکٹر یہ ٹک ٹاک والی ڈاکٹر تھی یہ پتا کون سی ڈاکٹر تھی جن کو ہم اکثر نہیں کہتے ڈاکٹر سائڈ پہ ہوں
1: نہیں وہ تھی ڈاکٹر پی ایچ ڈی والی
0: ہاں اچھا پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی کس میں
1: پھرا ہوا دماغ
0: آپ کو بہت پتا ہے آپ کے رابطے میں تو نہیں ہے ان سے آپ کو تو میں اقتدار صاحب ایک بڑا بارش بڑا اچھا بزرگ سمجھتا تھا آپ کے پاس تو ساری انفارمیشن ہے لڑکوں کی بھی انفارمیشن
1: میں جواب دے رہا ہوں میرے خاندان میں میاں بیوی پی ایچ ڈی ان کا بیٹا پی ایچ ڈی ان کی بہو پی ایچ ڈی پورا خانوادہ پی ایچ ڈی
0: تو آپ کس پہ گئے ہیں پھر
1: میں سائیکو ہوں اپنے ذات میں خود منفرد ہوں
0: ہاں اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں سر
1: ایک نہیں دو پوچھ کے
0: وائف ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے نا
1: ہاں الحمدللہ
0: تو کبھی کبھی ان کے لیے گانا گاتے ہیں اس عمر میں بھی
1: اس عمر میں تو سیڈ سانگ ہی یاد آتے ہیں
0: آخری گانا آپ نے ہماری ماں جی کے لیے کون سا گایا تھا
1: کون سا والا
0: آخری گانا آپ نے ان کے لیے کون سا گایا تھا
1: آخری گانا تو میں گاتا ہی رہتا ہوں جب آج کل تو کچھ ایسا ہے کہ گانا نہیں ہم تھوڑا سا
0: اب جیسے ہی
1: گانا گانے کا اور سننے کا کافی شوقین ہوں
0: اب جیسے ہی یہ کال اینڈ ہونا تو آپ نے ان کے پاس جانا ہے اور جو بھی ان کا نام ہے آپ نے ان سے کہنا ہے کہ بات سنو تو جب وہ آپ کی طرف مڑیں گی نا تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ چودھویں کا چاند کہاں اور تمہارا چہرہ کہاں یہ پھول تمہارے رنگ کو ترستا ہے یہ گھٹائیں تمہاری زلفوں کو ترستی ہیں تم جانتی
1: پیپر لیک کر رہے ہیں
0: تم तुम नहीं होती हो तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे खुदा ने सूरज से रोशनी छीन ली है, फूलों से खुशबू छीन ली है।
1: हमारी बहू के सामने वो आपने अभी से
0: असल में मेरे पास ना, असल में मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो तो किसी काम आ नहीं रहा, तो मैं कम से कम दूसरों का ही भला कर दूं। तो बात सुने ना, मैं अब फिल्मपति जुमले आ रहे हैं।
1: आप एक बात बताइए।
0: हाँ जी हाँ जी, पूछिए।
1: आप क्या बुढ़ापे में शादी करेंगे?
0: सर मैं शादी, सर आपको क्यों लगता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जवान आदमी।
1: नहीं, उसकी बात नहीं है।
0: अब तो डॉक्टर भी बहुत वाकिफ
1: है, आदमी एक्टिव रहता है।
0: मैं इसीलिए अब डॉक्टरों के साथ दोस्ती कर रहा हूँ ना, ताकि मैं जवान रहूं।
1: तभी तो एक डॉक्टर का इम्तिहान दे लिया।
0: अच्छा हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप उनको कहिएगा कि जब तुम नहीं होती ना तो मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ने सूरज से रोशनी, फूलों से खुशबू, माँ से ममता, सुरों से लह छीन लिए। और उसके बाद पता कौन सा गाना आपने गाना है?
1: कौन सा?
0: उसके बाद आपने कहना है, तू जो नहीं है
1: कुछ भी नहीं है,
0: कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिल जवान
1: जवान है, हंसी है।
0: हाँ जी, इतने जल्दी में गाएंगे तो फिर उनको क्या समझ में आएगी? एक तो हर बंदे को जल्दी क्यों, आपको जल्दी क्यों है हर चीज की इतनी?
1: बात मैं आपको बता दूँ।
0: हाँ जी हाँ जी, बता
1: दें।
0: जी जी,
1: मुझे किसी ने शादी से बहुत पहले कहा था, हमारी शादी को माशाल्लाह 32-33 ईयर।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह।
1: तो किसी ने मुझे कहा था कि आखिरी वक्त में मियां बीवी बहन भाई लगने सकते हैं।
0: इसका एक बड़ा जबरदस्त जवाब था मेरे पास, लेकिन मैं अब दे नहीं सकता। बड़ा मजे का जवाब था, इतना मजे का जवाब था ना, आप यकीन करें।
1: आपने जब पूछा था उनसे,
0: हाँ आप तो यकीन,
1: गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहना चाहिए
0: असल में। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल से जिसने आपको ये बात कही ना, वो इंटरनेट का बहुत शौकीन है। ये बात बड़ी गहरी है, ये मैंने बहुत
1: पॉपुलर होता,
0: ये मैंने बहुत गहरी बात की है। ये यकीन जाने किसी मकाम पर जाकर अगर किसी बंदे को समझ आई हो तो आई हो, लेकिन बहरहाल चले।
1: अरे आप तो करते ही गहरी बातें हैं।
0: बस मैं बंदा ही बड़ा गहरा हूँ सर, मैं यकीन कर
1: रहा हूँ,
0: मैं बंदा ही बड़ा गहरा हूँ सर।
1: नहीं इसमें कोई शक नहीं है
0: ना,
1: आपको समझने के लिए मुझे 1600 वाला कार्ड डलवाना पड़ता है।
0: चले इंतजार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नहीं रखा।
0: हाँ हाँ, उन्वान, उन्वान सर आप आए हैं तो आप आज का उन्वान है सर। आज क्या उन्वान रखे हैं हम, आज बस आप हैं और हम हैं और गुफ्तगू है और फिर जिक्र।
1: मैं आपको एक बात बता दूं सीरियसली।
0: हाँ हाँ बता दें सीरियसली।
1: मजाक से हटके, क्योंकि गुफ्तगू खत्म होने वाली है,
0: दास्तान खत्म होने वाली
1: है, पूछा था कौन सा इल्म हासिल करें, आपने जवाब दिया इल्मुल अब्दान इल्मुल अदियान। बदन की जमा अब्दान जिस्म, और इल्म की जमा दीन की जमा अध्ययन, दीन की जमा अध्ययन और बदन की जमा अब्दान, इल्मुल अब्दान इल्मुल अध्ययन, दीनों का इल्म हासिल करो और बदनों का इल्म हासिल करो।
0: चलें सर फिर, आपको अब आपने बात छेड़ ही दी है तो अभी जहन में एक बात आई है, अमानतन आपके और सुनने वालों के हवाले कर रहा हूँ कि अगर आपने ये जानना हो कि कोई शख्स कितना काबिल है या कितना पानी में है, तो आप ये देखते हैं कि इसका शागिर्द कौन है या इसका उस्ताद कौन है, ऐसे ही है?
1: ऐसे ही है।
0: फर्ज करें, मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर कोई आपके सामने कसाई आया है, तो आप उसे पूछेंगे भाई काम कहां से सीखा या काम किसको सिखाया, ये बड़ी ग्रास रूट लेवल पे मिसाल दे रहा हूं। या अगर कोई टीचर है, कोई क्रिकेटर है, कोई आर्टिस्ट है, तो आप उससे पूछेंगे कि भाई तुम्हारा उस्ताद कौन है। कोई गायक है, कोई सिंगर है, आप उसे पूछेंगे भाई उस्ताद कौन है तुम्हारा और शागिर्द कौन है तुम्हारा, ठीक है? तो इससे आप, यही दो चीजें, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है जिससे आप उस बंदे के मेयार का पता लगा सके कि यार इसका उस्ताद कैसा है या इसका शागिर्द कैसा।
1: एग्जैक्टली
0: तो बस फिर, तो बस फिर आप खुश हो जाइए और हर सजदाए शुक्र में खुदा का शुक्र अदा किया करें, उस खुदा ताला का जिसने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी अता किया, जिसका उस्ताद खुदा है और शागिर्द अली है। सर सारी रात इस जुमले पे रक्स कीजिए, इस जुमले का हक अदा नहीं होता। तो फिर खुदा का शुक्र कीजिए जिसने ऐसा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नसीब में लिखा कि जिसका उस्ताद खुदा है और जिसका शागिर्द अली है।
1: अली है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: खुश रहिए सर, खुश रहिए।
1: यही वजह थी कि छठे इमाम इमाम जाफर सादिक दौर में हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कल्बे इल्म लिया, जाबिर बिन हय्यान ने कल्बे इल्म हासिल किया और इमाम एक एक वक्त में 4,000-5,000 शागिर्दों को तालीम देते थे।
0: सर अब बात यह है कि अब बात फिर बात वही है कि बात निकलती जाएगी तो फिर हम गुफ्तगू करते जाएंगे। बात यह है कि अब वो थे कौन, वो थे भी तो वो जिनके जद्दे अमजद ने झूले में कहा कि रसूल अल्लाह बताइए क्या सुनाऊं, हाँ तो रात सुनाऊं, कुरान सुनाऊं, अंजील सुनाऊं। अब देखे बात फिर कहां से कहां जाएगी। बार कैब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी। और जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अगर आप हासिल कर भी लें, शायर कहता है कि सभी खुशियां मिला कर देखी हैं तेरे जाने का गम ज्यादा है। लेकिन जिंदगी में हमेशा आपको सीखते रहना चाहिए, आपको नया जाविया तलाश करते रहना चाहिए। तो समटाइम कुछ चीजें होने के लिए भी होती हैं, लोग ऐसा कहते हैं, सही कहते होंगे।

भाई वाह, निगाहों में तू है ये दिल झूमता है। एक स्टैंजा है, देयर वाज समथिंग लाइक मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे और तू इत्तफाकन कहीं मिल भी जाए, सदमे तेरी फुरकत के कम ना होंगे। आहा, सुनिएगा भाई स्टैंजा सुनिएगा, जो तू हम सफर है फिर कोई गम नहीं है।

0: वे सोने फुला वाली। हाँ जी, हेलो, आ गई है? हेलो। नहीं मेरी बहन, तुम्हें मेरा ख्याल से उम्रे खिजर चाहिए कहीं पर पहुंचने के लिए। नेक्स्ट कॉलर, इतना टाइम हमारे पास होता तो हम यहाँ पर होते। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है भाई इतनी क्लियर आवाज के साथ?
1: मैं आयशा सदीका।
0: आयशा सदीका, क्या हाल है?
1: ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे?
0: मैं जी बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसा तकरीबन पिछले 13 साल से। कोई तब्दीली नहीं आई, स्टैग्नेंट हो गया हूँ एक जगह पर। हाँ जी, हाँ जी, हेलो।
1: हाँ जी
0: हाँ
1: सही
0: जी, क्या हुआ, आप इतनी खामोश क्यों हो गई? सर्दी क्यों लग रही है आपको?
1: नहीं, वो एक्साइटेड
0: एक्साइटेड हो रही है
1: हो
0: बात करके? अरे अरे अरे अरे,
1: वो ना,
0: मैं कोई आरजे
1: और
0: डॉग्स
1: मिली है
0: थोड़ी
1: तो
0: हूँ।
1: खुशी में समझ नहीं आ रही क्या बात करूँ आप।
0: अरे नहीं यार, हम कोई आरजे डॉग्स थोड़ी हैं। आरजे डॉग्स के फैंस हैं, मतलब वो देखे ना, अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी
1: नहीं,
0: शी
1: हम
0: वॉन्ट।
1: आपके फैन हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं यार, अरे नहीं नहीं अच्छा डॉग्स, अगर आप सुन रहे हैं, डू लेट मी नो। हाँ, हम आपका फेवरेट वाला गाना लगाते हैं क्योंकि लाहौर का मौसम बड़ा अच्छा है और बारिश मुझे देखते हुए बहुत पसंद है। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे जी? सॉरी, आयशा सदीका। हाँ
1: हाँ
0: जी,
1: जी, बारिश तो हमें बहुत पसंद है।
0: अच्छा, क्यों आपके घर पानी नहीं आता? पानी इकट्ठा करते हैं, रेन हार्वेस्टिंग करते हैं हम। हाँ जी, गाना आता है आपको?
1: बारिश का मौसम अच्छा लगता है।
0: गाना आता है आपको? जिगर, तू
1: गाना
0: लाइटर
1: आता
0: बंद
1: है
0: करके
1: लेकिन
0: क्या
1: उतना
0: कर
1: नहीं गा
0: रहा
1: सकती।
0: है? हाँ
1: अच्छा एक
0: जी
1: बात सुने ना, एक
0: जी
1: बात
0: जी
1: सुने,
0: सुनाए सुनाए बहन, सुनाए।
1: वो आप वो सॉन्ग प्ले करेंगी, वो शक्कर भंडारी मेरे पिया घर आई, वो
0: नहीं
1: पता नहीं मुझे भूल गया, वो वाला हूँ।
0: नहीं बस नहीं, आपने कहा करेंगे, मैंने कहा नहीं। अब आप कहती, या तो आप कहते कि आप करें, तो मैं कहता चले मैं कर लेता। आपने पूछा ना मुझसे, आपने देखे मुझे ऑप्शन दिया कि नहीं दिया? आपने मुझे कहा क्या आप करेंगे, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि हाँ जी कर लूंगा, हाँ जी नहीं करूंगा। तो मैंने कहा नहीं,
1: नहीं
0: या तो आप कहते कि जीशान प्लीज प्ले करें, मेरा बड़ा दिल कर रहा है, मेरा गुजारा नहीं
1: प्लीज,
0: हो
1: आप
0: रहा,
1: प्ले करें, मेरा दिल कर रहा
0: मैं
1: है।
0: मेरे जो है मेरे से रुका नहीं जा रहा, बस आप किसी तरीके से शक्कर बंडा दें, मेरे से जो है वो रुका नहीं जा रहा, तो फिर मैं कुछ देख लेता। लेकिन अब आपने कहा कि जी क्या करेंगे, मैंने कहा जी देख लेते हैं अब, ऐसे ही है ना
1: हाँ ऐसे
0: यार। ये किस फिल्म का है वो शक्कर भंडारे? इधर मेरे पास आ नहीं रहा, मैंने शक्कर क्यों चेक शक्कर किया लेकिन नहीं आ रहा।
1: टी वाला करते हैं।
0: अच्छा चले, वो वाला। हाँ हो गया, मिल गया, मिल गया यार। तुम अपना सांस बहाल रखो, मिल गया, ठीक है जी।
1: मेरा
0: जिगर,
1: सांस फूल गया है मुझे
0: मैं
1: रो।
0: कहता हूँ लव यू, आए ना सर, आ जाए आ जाए। अच्छा नहीं, गाना है, मिल गया हमें सर। देखिए कितने अच्छे हैं यार जिशान भाई, हमारे बतौर ड्यूटी ऑफिसर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिशान दुरानी, और देखें वो इतने भागते भागते आए कि नहीं मिल रहा तो मैं ढूंढ दूं, लेकिन मिल गया। खैर एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम था, रुबीना परवीना?
1: नहीं, आशीष
0: अच्छा
1: का
0: आयशा सदीका। आयशा सदीका, जैसे ही फोन रखोगी तुम्हारा गाना चल जाएगा, ठीक है?
1: बहुत शुक्रिया।
0: चलो बेटा, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। मुझे याद आया मेरी घड़ी को नजर किसने लगाई थी, सच सच बताओ मेरी घड़ी को किसने नजर लगाई थी? कल मैंने स्टोरी डाली थी यार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान नहीं हुआ, होते होते बचा है। बचा कैसे है मैं आपको बताता हूँ। हुआ कुछ यूं कि आज दोपहर को मैं अपनी गाड़ी वॉश करवाने लेकर गया, तो थोड़ी सी ना मुझे टायर की अलाइनमेंट जरा 19-20 लग रही थी, तो मैंने उसको कहा कि यार इसको ओपन करो और इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट करो, तो वो उससे ओपन अप नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा रुको मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। तो मैंने क्या किया कि घड़ी उतारी, उसको हेल्प आउट करने के लिए घड़ी उतार के ना वो जो वहाँ पे हेल्पर था या जो भी सर्विस बॉय था उसको मैंने पकड़ा दी कि भाईजान ये पकड़े जरा। अच्छा मेरा आप लोगों से सवाल है, बल्कि इससे पहले कि मैं बताऊं कि आगे क्या हो, मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को क्या लगता है? लड़कों को तो पता ही होगा, लड़कियों से सवाल है। जाहिर है घर में अब्बू भाई वगैरह तो होंगे, शौहर, हलाल हलाल रिश्तों की हम बात करते हैं। अगर नहीं है, जो आप सोच रहे, चले वो भी आपकी अगर लाइफ में है, तो लड़के चैन वाली घड़ी क्यों पसंद करते हैं या क्यों पहनते हैं? जरा आप मुझे, 1 मिनट का टाइम है, मुझे इसका जवाब दे, मैं देखता हूँ आप लोग कितने समझदार हैं, उसके बाद फिर आगे मैं बात करता हूँ कि सीन हुआ क्या। लड़के जो चेन वाली घड़ी है वो क्यों पहनते हैं, ज्यादा पसंद क्यों करते हैं?

होए होए होए इंतहाई फिल्मी आंसर आया। अनमोल मेहर कह रही है ताकि दुपट्टा फंस सके। लड़के पहनते हैं वाकई, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं जिंदगी में। खतीजा आरिफ कह रही है ओपन इजीली हो जाती है, नहीं ये सारी बातें हैं लेकिन नहीं। खुशबख्त इजाज अहमद खान साहब कह रही है उसका डायल सेफ होता है शायद इसलिए, नहीं। चलो मैं बता देता हूँ, जब हम लोग ड्राइव करते हैं ना, तो ड्राइव करते हुए जब हम स्टीयरिंग रोटेट करते हैं या गियर शिफ्ट करते हैं, तो हम ना एक लचक देते हैं अपनी कलाई को, वो हमें बहुत पसंद होती है। और मैंने ये सुना है कि वो आप लोगों को भी बहुत पसंद होती है, मतलब यू गाइज रियली लाइक इट, ये जो चेन वाली वॉच है। और खास तौर पे ड्यूरिंग ड्राइव जब आप गियर शिफ्ट करते हैं, कभी आपने देखा हो कि आपके भाई कर रहे हैं, जाहिर है भाई की पसंद आती है कि नहीं आती वो अलग बात है, लेकिन मतलब फर्ज करें कि आप अपने शौहर के साथ कहीं जा रहे हैं, आपके शौहर ने ब्लैक शलवार कमीज पहन रखी है और ट्रिम बियर्ड है उनकी, जेल बैक्ड हेयर्स हैं और कफ उन्होंने ऊपर कर रखे हैं, खब्बे हाथ में उन्होंने कलाई घड़ी बांध रखी है और गियर शिफ्ट कर रहे हैं, स्टीयरिंग रोटेट कर रहे हैं, और उनकी जैसे ही जो यू नो वॉच है वो थोड़ी सी मिसप्लेस्ड हो रही है, तो वो एक लचक उसको, एक झटका उसको, एक जर्क उसको दे रहे हैं और वापस स्पेस पे ला रहे हैं, तो मैंने सुना है बहुत अच्छा लगता है। तो वो बिल्कुल ऐसा ही है, ये जो बेल्ट वाली घड़ी है उसमें नहीं होता है, क्योंकि बेल्ट वाली घड़ी एक्यूरेट आपकी क्लाई पर एडजस्ट हो जाती है। सो बिल्कुल ऐसा हुआ, वो हुआ ये कि मैं, जाहिर है मैंने वो पहनी हुई थी, तो जब मैं जा रहा था सर्विस स्टेशन की तरफ, तो मैं जैसे ही गियर शिफ्ट करता था या स्टीयरिंग रोटेट करता था, तो वो एक आदतन भी हो जाता ना कि आप क्लाई जो है वो रोटेट करते हैं ताकि घड़ी एडजस्ट हो जाए दोबारा अपने पोजीशन पर। तो खैर हुआ ये कि मैंने उसको कहा यार ये अलाइनमेंट कर दो इसकी, उसने अलाइनमेंट कर दी। उसको हेल्प आउट करवाने के लिए मैंने अपनी घड़ी उतार के वो सर्विस स्टेशन पे जो लड़का था उसको पकड़ाई, और मैं वहां से गाड़ी की अलाइनमेंट करवा के, सब सेटिंग करवा के, पेट्रोल भरवा के निकल आया। तकरीबन मैं अगले चौक पे पहुंचा हूंगा, तो मैंने जैसे ही अपनी कलाई को झटका दिया, तो मुड़ आवाज ही कोई ना आई। अब मुझे तो आदतन मैंने झटका दिया ना, तो मैंने कहा एक ही हो गया, एक ही हो गया है। तो मैं फिर फटाफट मैंने वहां से यू टर्न लिया। द लड़का वॉज वेरी ऑनेस्ट, अगर वो कहता कि भाई मेरे पास नहीं है तो हम क्या कर लेते भाई, हम तो वैसे ही मासूम लोग हैं, हम आखिर क्या ही कर लेते सिवाय अफसोस के। लेकिन उसका जी जी सर मेरे पास है, उसने वो कमीज जो पहनी हुई थी, लाइक होते ना कपड़े जो चेंज करते हैं आप, क्योंकि बिल्कुल शाम का टाइम था वो घर जा रहे थे, तो उस दूसरी कमीज में थी, वो फटाफट अंदर गया उसने लेकर आया, और मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सो तुम लोगों में से किसी ने नजर लगाई है यार। अच्छा मैंने इतना जिंदगी में पैसा बना लिया है, मेरे लिसनर्स के जेन में से गुर्बत नहीं जा रही। कल मैंने स्टोरी अपडेट की कि मैंने ऑटोमेटिक वॉच ली है रोलेक्स की, उसके नीचे कमेंट आए कि ऑटोमेटिक से क्या मुराद है। मैंने फिर बताया कि मैंने कहा चलो एजुकेट कर देते हैं थोड़ा, मैंने कहा ऑटोमेटिक से मुराद है कि इसमें सेल नहीं डलता, ये आपकी जो रिस्ट की मूवमेंट है उससे एनर्जी को जनरेट करती है। तो उसके बाद कमेंट्स आए कि फिर क्या फायदा इस घड़ी का, ये आप पहनेंगे तो आपको हर टाइम क्लाई जो है वो अपनी रोटेट ही करते रहना पड़ेगा, मूवमेंट में रखना पड़ेगा ताकि घड़ी चलती रहे। हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, मतलब अपने तो अपने अपनों से मुझे याद आया, मेरी अम्मा को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैंने जिंदगी में कुछ कर लिया। मैं आपको अभी एक बड़ी जबरदस्त मिसाल देता हूँ इसकी, जरा हम थोड़ा सा एक गाना आप एंजॉय कर ले, वो बच्ची का सांस रुका हुआ था गाना सुनने के लिए। हाँ क्या नाम था उसका, परवीना ताहिर, नैयरा सुल्ताना, बशीरा बीबी, क्या नाम था, ओ आयशा सदीका, यस आयशा सदीका। आयशा तुम्हें गाना सुनो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी अम्मी ने आज मेरे साथ क्या किया।

0: ओके जी, एक कॉल लेते हैं उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। 0519202540 ये आपके और मेरे रابطے का नंबर है, या फिर 0511100101। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो नो हेलो व्हाई व्हाई व्हाई हेलो वालेकुम सलाम। आप लोगों के भी स्टेशन पे होता है ऐसे या सिर्फ इधर ही हो रहा है? हाँ जी जी जी प्लीज। मैं जनाब ड्रिप लगा के बैठा हूँ, आप सुनाए आप कैसे हैं? अच्छा क्रिकेट का नहीं, हम फुटबॉल का प्रोग्राम कर रहे थे जी।
1: फुटबॉल का सॉरी सॉरी। हाँ मैंने आपको कहा था दुआ करनी है।
0: हाँ दुआ मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल इंशाल्लाह कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
1: मेरा ना 80% ना, मैं ऐसे था कि मैंने भाई वो इस्लामिक शो भी करते हैं ना आप, इसलिए मैंने आपको कहा था क्योंकि मैं उन चीजों में बहुत बिलीव करता हूँ।
0: कोई फर्क पड़ा?
1: अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, फर्क तो अभी तक नहीं पड़ा, लेकिन मैं 80%
0: ब्लाइंड हूं। बस फिर समझ लो मैं पीर झूठा हूँ।
1: नहीं नहीं शाम भाई बच्चा आपका शो बहुत अच्छा है, ठीक है, स्पेशल आपका शो सुनता हूँ मैं, ठीक है, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, मैं 80% ना ब्लाइंड हूँ।
0: उस्मान वैसे तो जाहिर है जो आप लाइफ में एक स्ट्रगल देख रहे हैं वो तो कोई भी इस वक्त मोटिवेशन हो वो आपको महज अल्फाज लगेंगे। आपकी एक बहुत बड़ी आप कह लें कि आपकी एक बहुत बड़ी एक कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, एक शिद्दत शिद्दत खुद एतमादी चले हम इसको कहते हैं, मुझे
1: इस चीज के लिए धोखा भी खाया है।
0: क्या धोखा
1: गया है?
0: क्या
1: मैंने
0: आपने भी मोहब्बत की थी? आए हाय हाय, वो गाना भी है ना कि इसको भी गम ने मारा, उसको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो।
1: उस पर्सन को भी ये पता था, उसने वादे भी किए थे, कोई मसला नहीं मैं आपके पास।
0: ये वादे कर गई छोड़ जाते हैं लोग, हम सोचते हैं मोहब्बत में लोग बहुत कुछ कर लेंगे, कोई कुछ नहीं करता, ऐसे ही है ना, सही कह रहा हूँ?
1: ऐसे ऐसे आप सही कह रहे हैं,
0: ये देख लेंगे, ये हाल है। अच्छा लोग मतलब उसने आपको क्या कहा कि मैं आपसे शादी करूंगी?
1: उसने मुझे कहा था, उसने कहा मुझे आपको हाथ पकड़ना पड़ा, मैं पकड़ लूं।
0: तो फिर नहीं पकड़ा उसने?
1: उसने कहा था मुझे
0: नहीं। तो क्या वजह क्या बनी फिर, मतलब वो एक बंदा ने कहा और फिर पीछे हटा तो उसकी कोई वजह बताई होगी, उसने वजह क्या बताई?
1: पापा नहीं मान रहे
0: पापे दी थे मैं। अच्छा मजे की बात है, पापे को शायद पता भी ना हो इस चीज का, पापा सुन रहा हो तो वो कहेगा भाई उस्मान मैंने कुछ नहीं कहा, खुद तुम्हें टोपियां गिरा रही है।
1: नहीं नहीं नहीं, उसकी फैमिली मेरी घर आई थी, सारा कुछ हुआ है, एंड पे आके खत्म कर दे।
0: चलें यार खैर है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपके लिए मामलात और मजीद
1: बेहतर। आपने मेरा नेम उस्मान लेके शेर डेडिकेट करना और एक ट्रैक मेरे लिए आपने चलाना
0: सर, मैं कहता हूँ हुक्म करें, क्या कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप बताएं?
1: तारा तारा गवाह है जान मैं, सारी रात गुजारी मैं रो रो।
0: सारी रात गुजारी तू रो रो,
1: सारी रात गुजारी मैं रो रो।
0: यार वो गाना भी आपने माशाल्लाह वो बताया है कि जो मुझे अभी मैं ढूंढने निकलूं तो अगले हफ्ते मुझे मिलेगा, कोई ऐसा गाना बताएं जैसे अभी?
1: नहीं नहीं, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा, मैंने कहा पहले।
0: अच्छा दोबारा बताएं क्या गाने का टाइटल है?
1: तारा तारा गवाह है चंद माही।
0: तारा गवाह है?
1: तारा तारा
0: तारा, अच्छा तारा, मैंने इसमें कह रही है सारा गवाह है, मैं सारा कौन आ गया? तारा तारा तारा तारा गवाह नहीं, इधर तो आ रहा है कि तारा तारा, चले मैं ढूंढ लेता हूँ यार, मैं ढूंढ लेता
1: हूँ। और आपने मेरा नेम लेके पोएट्री डेडिकेट करनी
0: है और दुआ जरूर करनी। और भी कुछ बता दें, कोई बे फॉर्म भी बनवाना है आपका, कोई शनाख्ती कार्ड बनाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, कोई बता दें?
1: नहीं सर।
0: अच्छा ठीक है, ओके लव यू। मैं कहता हूँ मैं ऐसा गाना प्ले करूंगा, आप बेफिक्र हो जाए, ठीक है?
1: गाना प्ले करने करे आप मेरा नाम लेके ना पोएट्री जरूर,
0: मैं पोएट्री अभी शामिल करता हूँ, बल्कि अभी रुको यार आपके लिए अभी माया सुनाता हूँ मैं। आपका क्या नाम था आजकल? परवेज, अच्छा नहीं उस्मान,
1: उस्मान
0: अच्छा उस्मान। हाँ उस्मान, उस्मान उस्मान भाई कहता है कि

0: फूल मंगया माया बाग लवा छोड़े। आहा हा
1: वाह वाह वाह।
0: हाँ चल अल्लाह हाफिज मेरा भाई।
2: हर वेले तांग दिल भर दी
0: हाय हाय हाय। मोहब्बत हो नहीं पाई, मोहब्बत हो भी सकती थी। सुनिएगा भाई जरा। मोहब्बत हो नहीं पाई, मोहब्बत हो भी सकती थी, ये दिल दीवाना बन जाता तो कुदरत हो भी सकती थी। जहां तालाब था वहां परियां नहाती थी, जहां तालाब था जहां परियां नहाती थी वो जन्नत तो नहीं थी। जन्नत हो भी सकती थी। मोहब्बत हो नहीं पाई, मोहब्बत हो भी सकती थी, ये दिल दीवाना बन जाता तो कुदरत हो भी सकती थी, और जहां तालाब था जहां परियां नहाती थीं वो जन्नत तो नहीं थी। वैसे जन्नत हो भी सकती थी, और मैं हारा इसलिए कि मैंने तुझ पे फैसला छोड़ा, मैं हारा इसलिए कि मैंने तुझ पे फैसला छोड़ा, मैं हारा इसलिए, You know why? मैं हारा इसलिए कि मैंने तुझ पे फैसला छोड़ा। मैं मुनसिफ था, मेरे दिल की अदालत हो भी सकती थी, और तेरे ख्याल की शम्माएं अगर मैं न रखता साथ, तेरे ख्याल की शम्माएं अगर मैं न रखता साथ, इस बारात दरी में शाम गारत हो भी सकती थी। मैं हारा इसलिए कि मैंने तुझ पे फैसला छोड़ा। मैं मुनसिफ था, मेरे दिल की अदालत हो भी सकती थी।

अच्छा यार, वो मैं साथ साथ आपको बताऊं कि आज मेरी अम्मा ने किया क्या, ताकि मुझे पता है आप लोग भी खुश बताऊं ना बताऊं, फिर आप लोग मुझे छेड़ते हैं कि छेड़ोगे तो नहीं ना, मजाक तो नहीं बनाओगे।

अच्छा हाँ, तो सीन ये है कि हुआ कुछ यूं कि आज मेरी अम्मा को कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ कपड़े वगैरह खरीदने थे। तो आज हमने प्लान बनाया कि अम्मा ऐसा करते हैं कि आज मैं आपको शॉपिंग के लिए भी लेके जाता हूँ, फिर हम डॉक्टर साहब के पास भी शाम में जाएंगे और फिर हम खाना खाएंगे और फिर मैं आपको जो है आपकी जो फ्रेंड है उनकी तरफ छोड़ूंगा आज। उनकी कोई जैसे वो एक गेट टुगेदर होता है फीमेल फीमेल्स का, वो है कोई, तो फिर मैं आपको रेडियो से वापसी पे ले लूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा अलाउ नहीं होता वहाँ पे जाना, क्योंकि अक्सर वो उनके साथ जो बाकी माएँ हैं उनके साथ आते हैं, या उनके ड्राइवर्स आते हैं या बेटे आते हैं, तो वो सेपरेट बैठ जाते हैं। तो वैसे मैं तो अपनी अम्मा का ड्राइवर भी हूँ, बेटा भी हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं जाऊँ ना तो वो आंटियाँ मेरे से एक ही सवाल पूछती हैं, कब करोगे कब करोगे। आंटी मैंने आपसे पूछा आप कब मरेंगी, नहीं पूछा ना, तो आप मुझे क्यों पूछ रही हैं कि मैं शादी कब करूँ। खैर एनीवे, तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी आप इधर बैठे, मैं आपको रेडियो ख़त्म करके यहाँ से पिक करके, बिल्कुल करीब ही है जहाँ से मैं इस वक्त रेडियो कर रहा हूँ, यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव है, तो मैं आपको पिक करके ले जाऊँगा। तो अम्मी कहती हैं ठीक है। बहरहाल हुआ ये कि हमने प्लान बनाया कि खाना छाना खा के मैं अम्मा को वहाँ ड्रॉप करूंगा, अम्मा वहाँ चाय शाय पियेंगी, सहेलियों से गपशप करेंगी और फिर वापसी पे मैं अम्मा को ले जाऊंगा। तो हुआ कुछ यूं कि हम इस्लामाबाद का एक शॉपिंग मॉल है वहां पे गए, अम्मा कपड़े पसंद कर रही थी। तो इसी असना में एक तकरीबन कोई 20-22 साल की बच्ची, जिस तरह भी ये आयशा अब्बासी बहन आई थी, तो वो आई और इसी तरह एक्साइटमेंट से, एक्सक्यूज मी आप जिशान हैं? मैंने कहा जी। जिशान नासिर हैं? मैंने कहा जी। तो पीछे उसकी वालदा खड़ी थी, शायद उनको लगा कि पता नहीं कौन सा लड़का है जिससे बात कर रही है। अब तो वो आई आंटी ने भी ज्वाइन किया कि मैं देखूं तो सही मेरी बेटी किससे बात कर रही है। तो जैसे ही आंटी करीब आई तो उन्होंने पीछे मुड़ के उस बच्चे ने कहा अम्मी जिशान नासिर, अम्मी जिशान नासिर। तो वो बच्ची ने इतना लाउड कहा कि बकायदा वो जो शॉपिंग मॉल के अंदर वो जो स्टोर था जहाँ पे हम कपड़े ले रही थी मेरी वालदा, तो वो सेल्समैन और जो बाकी वहाँ पे लोग मौजूद थे, उन्होंने एक दफा देखा कि इज इट एवरीथिंग फाइन। तो खैर बहरहाल मैंने वो पिक्चर वगैरह लेके वो जब चली गई तो मेरी अम्मा ने एक बात कही मुझे समझ नहीं आई, आपको अगर समझ आए तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं एज इट इज आपके सामने रख रहा हूँ जो अम्मा ने मुझे कहा और फिर मैंने जो अम्मा को कहा। अम्मी कहती है वो तुम्हें देख के इतनी खुश क्यों हो रही थी, वो लड़की तुम्हें देख के इतनी खुश क्यों हो रही थी, मतलब एज इट इज जैसी अम्मा मतलब वो पिक्चर लेके गई ना, तो अम्मा ने लिटरली पहला जुमला मुझे ये कहा, मतलब लाइक व्हाट्स द बिग डील, क्या बड़ी बात है, हु इज ईशान नासिर, व्हाट्स द बिग डील। तो अम्मा मुझे कहते हैं कि इतनी खुश क्यों हो रही थी तुम्हें देख के, मैंने आगे से लिटरली कहा, मैंने कहा अम्मी मेरे समोसे मशहूर हैं असल में। तो मैंने कहा अम्मी मैं अब आपको क्या बताऊं क्यों खुश हो रही थी, तो कहती है मतलब शी नोज दैट आई डू रेडियो और समथिंग और थोड़ा बहुत टीवी भी, बट शी वाज लाइक कि इतनी भी एक्साइटमेंट की क्या बात है। तो मैंने कहा अम्मी मेरे समोसे मशहूर हैं।

0: देखते हैं कॉलर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो जी, हेलो जी, नहीं जी, ओके अस्सलाम वालेकुम, कुछ और कहने लगा। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो बेटा, माँ सदके जाए, इतनी कोशिश करके सिर्फ इतनी सी आवाज निकली है। हाँ, और सुनाए कैसी हैं? ठीक है। और आप लोगों के लाहौर में भी ऐसे होता है कि नहीं? हाँ जी। हेलो जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आगे भी सलाम से आगे भी बढ़े, नया नया सलाम कबूल किया है मेरी बहन। हेलो एक दफा फिर करें ताकि हैट्रिक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो तीन दफा हो गया, अब आगे। बेटा कितना टाइम लेना है? मैं ऐसा, अच्छा चलो, हैं सॉरी सॉरी सॉरी, हैं आप हैं? अच्छा हाँ हाँ, टॉपिक टॉपिक आज का ये है कि टॉपिक टॉपिक चाहिए तुम्हें, टॉपिक पे बात करोगी फिर? चलो फिर बताओ, हाउ डज प्रोस्पेरिटी कम इन पाकिस्तान? चल फिर हुन टॉपिक ते गल करनी है, ठीक है? हाउ डज प्रोस्पेरिटी कैन कम इन पाकिस्तान? हाँ आप क्या छोड़े, टॉपिक को क्या पढ़ा है, वैसे ही बात करते हैं ना। अब ये कहोगी कौन सलाम बोल रही है? आप लोगों ने सलाम स्टॉक में रखा है अपने पास? मैं एक दफा हो गया सलाम, मैं या आपको मेरे पे शक है कि मैं सही सलाम नहीं करता? अच्छा अच्छा, सुना है सारा अली जई तुम्हारी बड़ी जो है दोस्त है, है ना, तुम्हें बातें बताती है वो सारी, सारे कुछ शेयर करती है तुम्हारे साथ? क्या कर देती है? इंसल्ट कर देती हैं। ओए होए होए होए होए होए होए होए होए होए, यार ये तो बड़ी गलत बात है, तुम्हारी लिसनर तुम्हारी क्यों इंसल्ट करते हैं? तुम तो इतनी अच्छी बच्ची, तुम तो जब आती हो तुम तो चू चू चू करके बाहर, हमें ऐसा लगता है कुछ चिड़िया आ गई है कहीं से। हाँ चिड़िया चिड़िया है जी। चले ठीक है फिर, ओके। आप मेरे ख्याल से बहुत स्लो हैं, मुझे आपकी स्पीड मैच करने के लिए ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जीशान साहब, क्या हाल है?
0: ठीक हूँ।
1: ठीक है
0: जी? जी सर ठीक हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: सर नाम बताइएगा।
1: हेलो,
0: नाम बताइएगा।
1: हसन बोल रहा हूँ
0: जी। सर क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं आपसे बात करना
0: था। करें सर, करें मेरे साथ। नंबर लग गया ना सर, मैं बराह रास्त बात कर रहा हूँ। पर्सनल काम था सर, पर्सनल काम आपको मेरे से क्या हो सकता है, मतलब ये तो आप मुझे
1: काम था ना, फ्लाई काम करते हैं तो इस बारे में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, फ्लाई काम फ्लाई काम फ्लाई काम फ्लाई काम। क्या सर
1: आपके किस सर में व्हाट्सएप में या कुछ?
0: आप मुझे इंस्टा पे लिखें जिशान नासिर, में आपको मिल जाऊंगा, वहां पे आप मुझे कांटेक्ट करें, वहां पे आपका जो मसला है मैं हल कर दूंगा इंशाल्लाह।
1: आप जैसे अजीम लोग बहुत कम कम मेरे
0: पे। बस सर मेरा, मैं मुझे तो मैं इतना अजीम हूँ कि मैंने मैंने एक ड्रामा किया
1: वो जिसमें वो बात नहीं है।
0: मैं आप सही कह रहे हैं, मैं इतना अजीम हूँ कि मुझे टीवी ड्रामे में एक्ट कर रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ, मैं अपना
1: कुछ बातें आपने अमाम हसैन के बारे में तो मेरे घर वालों के कहा भाई
0: कह रहे, मैं इतना अजीम हूँ कि मुझे टीवी ड्रामे में एक्ट कर रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ, मैं अपना
1: कुछ बातें आपने अमाम हसैन के

0: जिंदगी में,
1: की बात या कोई
0: जिंदगी में, जिंदगी में
1: तो
0: एक
1: मुझे
0: काम
1: नंबर नहीं था आपके
0: सर,
1: पास।
0: जिंदगी में
1: मेरे
0: एक
1: पास
0: काम करें, सुनना तो सीखें जिंदगी में। अल्लाह ने दो कान दिए हैं कि ज्यादा सुना जाए, जुबान एक दी है ताकि काम बोले। मुझे बात तो करने थे, मैं चार दफा मैंने जुमला दोहराया, आपने मुझे रोक लिया बीच में। आप आम जिंदगी में, आप आम जिंदगी,
1: आप थोड़ी सी बात करते हैं
0: नहीं, अरे आप करें, आप बात करें, मुझे भी तो बात करने थे ना, मेरे दिल में भी तो बात है, हमारी कौन सुनेगा। हमारी जिंदगी में आए हाय हाय हाय हाय हाय हाय। हजरत सरकार जॉन एलिया ने कहा था कि एक ही हादसा तो है जिंदगी में, और वो ये कि बात कही नहीं गई, बात सुनी नहीं गई, हमें कौन सुनेगा। वो अजीम से मुझे याद आया कि अजीम इतना हूं मैं, इतना अजीम हूं कि मैंने अभी एक रिसेंटली एक ड्रामा किया, और उस ड्रामे में मुझे जो किरदार मिला उसका नाम भी अजीम था।

जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, तू मिला है। समटाइम बहुत रिलेटेबल होते हैं जुमले। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है।

आवारस जुमले मेरे सामने ना फरमाए कर। कहंदा मेरे सामने रो नहीं शाला कदे ना रोवे, और मेरे सामने रो नहीं शाला कदे ना रोवे, ना खस्ता हाल बनाए कर। तेरे सह वारस ए ला वारस जुमले मेरे सामने ना फरमाए कर। हंजुआनू दामन तो लेके पलका तई ना इंज सफर कराए कर। हंजुआनू दामन तो लेके पलका तई ना इंज सफर कराए कर। ओ मेरा दिल जो कब्रिस्तान है दुख इत्थे आ दफनाए कर।

0: रूम कॉलर कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो
1: हेलो हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ इतनी दबी हुई आवाज के साथ? थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हैं, नहीं तो हमें आगे बढ़ जाना पड़ेगा। इस दबी सी आवाज को और दबा के हम आगे बढ़ जाएंगे।

0: मेहरुनिसा क्या हाल है? मेहरुनिसा,
1: हेलो।
0: हाँ पानी शानी है पास? तो घूंट भर के फिर जरा बात करो ना। मेहरुनिसा कैसी हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आप सुनाए।
0: मैं ठीक हूँ। क्या करती हो मेहरुनिसा?
1: कुछ भी नहीं।
0: कुछ तो करती होगी, पढ़ती होगी, जॉब करती होगी, घर का काम करती होगी, खाना बनाती होगी, कुछ तो करती होगी जिंदगी में।
1: पढ़ाती भी हूँ और
0: पढ़ाती हो? क्या पढ़ाती हो? इतना स्लो पढ़ाती हो तो मेरा ख्याल से तुम तो मैट्रिक का बच्चा अगर तुम्हारे पास आए तो वो सेकंड ईयर कम से कम 6 साल के बाद करेगा।
1: नहीं, मैं मदरसे वाले पास।
0: अच्छा, मदरसे में पढ़ाती हैं? सपारे वाली बाजी हैं आप? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सपारे वाली बाजी खुद रात को 1 बजे रेडियो पे कॉल कर रही हैं। सपारे वाली बाजी कितनी गलत बात है। सपारे वाली बाजी, दिस इज नॉट गुड। सपारे वाली बाजी,
1: कौन सी बड़ी बात
0: इसमें बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आप बच्चों को कहती तो होंगी ना कि गाने माने ना सुना करो। कहती है कि नहीं कहती?
1: नहीं।
0: नहीं कहती। अच्छा, आप जरा फैशनेबल सपारे वाली बाजी, ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा। और सपारे वाली बाजी पैसे लेती हैं कि मुफ्त में पढ़ाती हैं?
1: मुफ्त
0: यार ये वैसे मैंने जिस भी बंदे को देखा है जो सपारा पढ़ाता है वो फ्री में पढ़ाता है। वैसे बड़ी बात है, बड़ी नेकी। आपकी भी बड़ी नेकी, आप खुद हाफिज हैं।
1: नहीं,
0: चलें, फिर भी अगर आप नाजरा भी पढ़ाते हैं फिर भी बहुत अच्छी बात। कितने एक बच्चे हैं आपके पास?
1: तकरीबन 25।
0: 25 बच्चे हैं? अच्छा, चलें, बड़ी अच्छी बात है। 25 बच्चे हैं, बहुत गुड। तो ये शादी के बाद भी पढ़ाती रहेंगी कि शादी के बाद खत्म कर देंगी? नहीं, अल्लाह अकबर, कोई गलत बात थोड़ी मैंने की। मैं कि शादी के बाद पढ़ाएंगी कि नहीं पढ़ाएंगी? यार ये देखो, अच्छा 1:15 बजे कॉल करके कह रही हूँ। ये कौन सी बुरी बात है, कॉल कर लिया। मैं शादी के पूछ रहा हूँ कि पढ़ाएंगी, कि आप कह दे नहीं पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगी, बात खत्म। मैंने हैं पढ़ाएंगी। अच्छा, सही है सही है सही है। तो आप कहाँ से? इस्लामाबाद से हैं?
1: पहले इस्लामाबाद में रहती थी, अब पिंडी में।
0: अच्छा, चले पिंडी, खैर है कोई बात नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरा बच्चा होगा फिर मैं सपारा पढ़ाने भेजूंगा ना आपके पास उसको,
1: ओए
0: ठीक
1: हाय, आप हमें कहाँ भेजते हो? आप तो कई बड़े जगह पे
0: नहीं,
1: हैं।
0: बड़े जगह नहीं, मैं सपारा तो सपारा है ना भाई। आप अच्छा पढ़ाएंगी तो आपके पास भेजेंगे, बड़ा छोटा क्या होता है। सपारे में बड़ा, जो सपारा तो जो सही तालीम कुरान की देगा हम उसके पास भेजेंगे, या फिर हम उसकी अम्मी को कहेंगे तुम खुद पढ़ाओ, तुम दुनिया भर को पढ़ाई तो तुम इसको क्यों नहीं पढ़ा। नहीं तो हम जो है वैसे माँ को पढ़ाना चाहिए खुद, है ना। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो बहन। और कुछ कहना है? हाँ, शेर सुना है, बताएं।
1: आप मुझे सुनाएं।
0: मैं सुनाऊँ आपको? ये कौन सी बाजी है भाई। अच्छा, कौन सा शेर सुनेगी बताएं? आपको कोई पसंद है तो सुनाएं, मैं वो बताएं, मैं सुना देता हूँ, या फिर अपनी पसंद का कुछ सुना दूँ?
1: आप अपनी पसंद का सुनाएं।
0: अपनी पसंद का सुनाऊँ?
1: ऑनर
0: ऑन एयर सुनो। तो मैं कौन सा आपसे कह रहा हूँ कि मुझे नंबर दे, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। अच्छा ऑन एयर सुने, फिर शेर सुने, आप तैयार हैं? हाँ, वो कहता है कि आप तैयार हैं देख लें, फिर ये ना हो फिर आप बाद में कहेंगे नहीं मैं तैयार नहीं थी और आपने सुना दिया, मुझे समझ नहीं आई शेर की। आप तैयार है ना?
1: जी बिल्कुल तैयार।
0: बस ठीक है, डन। केड़ा शेर सुनाओ, मैं तो याद भी नहीं आ रहा इस टाइम तो। अच्छा हाँ, शेर सुने, शेर सुना रहा हूँ आपको। अहमद फराज साहब, नहीं पर अच्छा मुझे बताएं आपको शायर कौन सा पता है, मैं उसका सुनाता हूँ। अहमद अहमद परवीन कहने लगे, परवीन शाकिर साहिबा, अहमद फराज साहब, मोहसिन, किसका आपको पसंद है? मोहसिन नकवी का तो अभी थोड़ी देर पहले उस्मान उस्मान सुना, उसके अलावा कोई सुना है ना उसके? मोहसिन, अच्छा चलो मोहसिन साहब का सुना देता हूँ। मोहसिन साहब कहते हैं कि हम हैं दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, हम हैं दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव भी शल हैं शौके सफर भी नहीं जाता। वाह, सपारे वाली बाजी क्या बात है आजकल। सही है, बिल्कुल ठीक है, दीन दुनिया दोनों साथ लेके चलना चाहिए हमें इंशाल्लाह। ठीक है,
1: ओके,
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।

अच्छा यार, एक मिलता जुलता वाक्या इससे बहुत पहले मुझे याद है, मेरी जहन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो यू नो उभर रहा है. एक्चुअली मैं अभी अपना इंस्टाग्राम देख रहा था तो एक मुझे मैसेज मौसूल हुआ है. मैं नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली, चूंकि इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हमारा एक रूल है, शुरू से ही रूल है, आप सभी लोग जानते हैं कि हम उसमें आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं. इससे मिलता जुलता एक मामला बहुत अरसा पहले भी आया था, दोबारा आया है. मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ उसी अंदाज में, क्योंकि उसी अंदाज में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस अंदाज में तब किया था तो फायदा हुआ था मैसेज भेजने वाले को. एक भाई साहब हैं, वो कह रहे हैं जिशान, अब वो जिस उम्र के हिस्से में है, अब मुझे एक्चुअली उनकी एग्जैक्ट एज नहीं पता, लेकिन अगर उनके बच्चे मुझे सुनते हैं तो फिर इसका मतलब वो मेरे से तो काफ़ी बड़े होंगे. लेकिन चलें सर, आप जिस भी एज में हैं, मैंने आपका मैसेज गो थ्रू ज़रा जल्दी से कर लिया है, मैं बिल्कुल शामिल करता हूँ, इस पर बात करता हूँ.

0: ਨੱਚਣਾ ਬਾਜ ਹਾਏ ਹਾਏ
1: ਉਹ ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਉਹ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ।
0: ओके जी, मैंने मैसेज गो थ्रू कर लिया है सर, और मैं जाहिर है इसमें थोड़ा थोड़ा सा इसको एडिट करके ही पेश करूंगा, क्योंकि बहुत सारी आपने इसमें पर्सनल बात भी शेयर की है। सो उसको एडिट करते हुए मेन कोर मैं बता देता हूं, और डोंट वरी, मैं इस अंदाज में बताऊंगा कि जो सुन रहे हैं उनको समझ आ जाएगी, और खासतौर पर अगर आपके बच्चे भी सुन रहे हैं तो। एक साहब है, उनका मुझे मैसेज आया इंस्टा पे, एंड ही सेड के मैं कहीं पर शादी करना चाहता था, वहां पर मेरी शादी नहीं हुई किसी वजह से, और उसकी शादी कहीं और हो गई, मेरी शादी कहीं और हो गई, और अल्लाह ने मुझे मेरी शादी से दो बच्चों से नवाजा है, एक बेटा है एक बेटी है, और इनकी वालदा का इंतकाल हो गया है तकरीबन 1-1.5 साल पहले, और रिसेंटली मेरी मुलाकात उस खातून से हुई जिससे मैं शादी करना चाहता था, और मुझे ये पता चला है कि उनकी हाँ भी कुछ ऐसा मामला है। मैंने चूंकि मैसेज जरा जल्दी से पढ़ा तो मुझे कंफर्म नहीं है कि वो डाइवोर्स्ड हुई हैं या बेवा हुई हैं, लेकिन बार कैफ उनकी शादी जो है वो नहीं चल पाई है। तो बेसिकली अभी वो इस वक्त सिंगल हैं, मतलब रिलेशन में नहीं है, निकाह में नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने और उन्होंने, ज़ाहिर है जब मुलाकात हुई तो उसके बाद फिर हम बैठे, गपशप हुई, और वो ज़ाहिर है एक आध मुलाकात में तो ये चीज़ नहीं हुई होगी। सो ही सेड कि हमने ये सोचा है कि उस वक्त नहीं हुई तो चलें आप सही, अब हम शादी कर लेते हैं, हमें ज़िंदगी ने अगर दूसरा मौका दिया है तो। लेकिन मसला ये है कि उस तरफ से उनके तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, जब मैंने उनसे वैसे सरसरी सा जिक्र किया तो मुझे उनके एटीट्यूड में एक शिफ्ट नज़र आया, चेंज में, और मुझे ऐसा लगा कि शायद वो इस चीज़ से खुश नहीं होंगे। मैंने प्रॉपर तो ये नहीं बताया कि मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ या रिलेशन में हूँ या मैंने शादी करनी है, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि बेटा अगर मैं ऐसे करूँ तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी। तो जो उनकी तरफ से एक रिस्पॉन्स आया वो कोई बहुत पॉजिटिव मुझे लगा नहीं। ज़ीशान भाई, आप शायद मेरी सिचुएशन को या मेरी बात को समझेंगे। द थिंग इज कि मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और आपको सुनते हैं, आपके लिसनर हैं, और वो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। सो मैं चाहूँगा कि अगर आप बात करें और आप समझा सकें सो शायद उनको बात समझ में आए। मुश्किल में डाला है सर आपने।

सर मैंने मैसेज को दोबारा गो थ्रू किया है और मैं जिन साहब ने मुझे मैसेज भेजा है मैं एक्चुअली ये सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह से बात शुरू करूँ कि उन बच्चों को पता चले कि उन्हीं के हवाले से बात हो रही है। मैं अगर सेक्टर का नाम लूँ तो भी ऑब्वियस हो सकता है, नाम का पहला हर्फ लूँ तो भी ऑब्वियस हो सकता है। सर आपने अभी किस रंग की शर्ट पहनी है आप ज़रा मुझे ये बताइए, और बल्कि नहीं इसको भी छोड़िए, आप ऐसा करें कि आपके बच्चे इस वक्त जिस रूम में हैं, अगर आपके सामने सुन रहे हैं या किसी और रूम में सुन रहे हैं, आप उनके रूम में जाइए। आपने कुछ नहीं कहना है उनको, कुछ भी नहीं कहना है, बस आप उनके रूम में जाइए और उनके रूम में ऐसा करें दो पानी के गिलास लें और उनके रूम में जाके रख के बस वापस आ जाएं, ताकि अगर वो सुन रहे हैं तो उनको पता चल जाए कि किस हवाले से उन्हीं की बात हो रही है। दो गिलास पानी लें, ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि ना नाम होगा ना। मैं पहले ये सोच रहा था कि मैं ये कहूँ कि आपके बाबा ने इस वक्त इस कलर की शर्ट पहनी है, लेकिन वो हो सकता है किसी और के बाबा ने भी पहनी हो। तो आप ऐसा करें सर कि दो पानी के गिलास लें, उनके रूम में जाएं, अगर वो रूम में या लाउंज में जहाँ पर भी बैठे हैं उनके सामने वो पानी के गिलास रख दें दो, और चुप करके वापस आ जाएं अपने कमरे में। बाकी बात मैं शुरू करता हूँ।

असल में मसला ये है कि मैं आपके जो दुख है उससे भी रिलेट कर सकता हूँ और उनके दुख से भी रिलेट कर सकता हूँ। अब खैर ये बात समझने के लिए कहानी का वसी होना जरूरी है, जिसका वक्त अभी मेरे पास है नहीं कि मैं बताऊँ। मेरी छोड़ें, मेरी खैर है, हमारी छोड़ें। आप रखाए हैं सर, मैं सिर्फ आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ, आप रखें तो ताकि मैं बात स्टार्ट कर सकूँ। अल्लाह ने जब काम लेना होता है तो आपके जहन में कैसे कैसे तरीके भी डाल देता है। अब ये देखिए, मेरे सोचो गमान में भी नहीं है कि ये तरीका भी हो सकता है किसी को ये कन्वे करने का कि बात तुम्हारे वाले से हो रही है।

मैसेज आ चुका है कि मैं ग्लास पानी के रख आया हूँ और उनकी नजरों से मुझे लगा है कि शायद उनकी नजरें सवालिया थी। सवालिया तो होंगी सर, जाहिर है। चलें, अब आपका काम हो गया, मुझे अपना काम करने दें। मैं खुदा ताला के हजूर दुआ करता हूँ कि मेरी बात जिस तरह बच्चे मेरे जहन में, मैं वैसे आपके पास पहुँचा सकूँ। अच्छा देखें, मैं अब आपका नाम इसलिए नहीं लूंगा, जाहिर है आपकी भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना। मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो। दोनों आप उम्र के जिस हिस्से में हो, जो उम्रें मुझे बताई गई हैं, यू गाइज आर अ टीनेजर्स, ठीक है, और अबाउट टू बी द टीनेजर, लाइक इन अ सेंस के आप अपनी 16 में हो या 17-18 में हो, ये आपकी उम्रें हैं। बेटा एक चीज़ याद रखना, जो खुशी आपकी है, आपके वालिद को और किसी के लिए वो खुशी नहीं होगी। मतलब यही वजह है कि देखें, आपके वालिद जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ बात करके इस मसले की तरफ जाया जाए। कभी भी ये मत सोचना कि आपके वालिद किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हैं आपके ऊपर। अगर प्रायोरिटी दे रहे होते तो मेरे से बात करने की क्या ज़रूरत थी। वो घर आके आपको बताते कि भाई मैं शादी कर रहा हूँ और दैट्स इट। ना कानून उनको रोक सकता है, ना शरीयत रोक सकती है। हाँ, आप 2-4 दिन 5 दिन आंसू बहाते, दुखी होते, गमगीन होते, लेकिन बार कैफ ज़िंदगी है, चलती है, चलती रहती है। लेकिन वो आपको देखो प्रायोरिटी दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम आएंगे कि उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर बाद में आते हैं। पहली चीज़ ये है कि आपके वालिद आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं। यही वजह है कि देखें, उन्होंने खुद आपसे बात करनी चाहिए, ऑल दो कि डायरेक्ट नहीं की, इनडायरेक्ट की, लेकिन उनको एहसास हुआ कि शायद आपकी फीलिंग्स हर्ट होंगी। इनडायरेक्ट से हर्ट हो रही हैं तो डायरेक्ट से तो फिर बहुत ज़्यादा होंगी। सो उनको फिर ये चीज़ नज़र आई, उनके दिल में खुदा ने ये बात डाली। सो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये, आपके बाबा ने आपको प्रायोरिटी दी है, तो ये मोहब्बत, ये रिस्पेक्ट हमेशा याद रखना। दूसरी बात यह यार, देखो अगर आपकी वालदा हयात होती ना, तो यकीन करो अगर आपके बाबा कुछ ऐसा करते और आप मुझे बताते, तो मैं सबसे पहले दरमियान में खड़ा हो जाता। मैं सबसे पहले उनको कहता कि नहीं सर, प्लीज ना करें सर, आपको जितनी भी मोहब्बत है किसी औरत से, सर नहीं सर, सर उस टाइम हो जाती तो हो जाती सर, अब ना करें सर, प्लीज सर, नहीं सर, क्योंकि अब आपकी एक फैमिली है, अब आपकी एक वाइफ है, अब आपके बच्चे हैं। अगर आपकी वालिदा हयात होती बच्चे, इसको थोड़ा सा समझना। आई नो इट हर्ट्स, दर्द होता है, एंड यू नो व्हाई। जिंदगी में आप जितने भी टाइम से मुझे सुन रहे हो, 4 साल से 5-6 साल जब से भी सुन रहे हो सकता है आज के लिए ही सुन रहे हो, शायद मेरी बात अगर आपको समझ आती है या आपके बाबा को लगता है कि मैं बात करता हूं तो शायद आपको समझ आती है या आप सुन लेते हो, तो शायद इसी बात को आप तक पहुंचाने के लिए इतना साल जो है वो आपके साथ, यू नो, एक ताल्लुक सा रहा, एक रिश्ता सा रहा। नोबडी इज सेइंग कि अपने बाबा की शादी कल करवा दो, नोबडी इज सेइंग, बट गिव हिम अ कुशन, गिव हिम अ चांस इन द लाइफ टू स्टार्ट हिज लाइफ अगेन। अब मैं मिसाल देता हूं क्यों, ये जरूरी भी क्यों है, हम लॉजिक से बात करेंगे, ठीक है, दोनों से बात कर रहा हूं मैं, सॉरी आपका नाम लेने लगा था, लेकिन दोनों से बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपकी वालदा हयात होती तो कभी नहीं भाई, जितनी भी मोहब्बत होती कभी नहीं, लेकिन अब आपकी वालदा इस दुनिया में नहीं है। आप जिस उम्र के हिस्से में हैं, अभी आप अपने बाबा के साथ हैं, अल्लाह आपके बाबा को जिंदगी दे, कुछ अरसे बाद क्या होगा, 4 साल 5-6 साल के बाद जो बेटी हैं, बेटा आपकी शादी हो जाएगी, 23-24-25 मैक्सिमम शादी हो जाएगी, आप चले जाओगे अपने घर अपनी फैमिली में। जो बेटा है भाई, आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे, ऐसे ही है ना, मतलब 23-24-25 चलो आपकी शादी ना भी हो, लेकिन आपकी एक अपनी लाइफ ज़रूर होगी। आप पढ़ने के लिए अगर बाहर जाना चाहते हो, जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहते हो, या इवन शादी भी हो जाती है तो आपकी एक अपनी फैमिली, एक अपनी लाइफ होगी। उस टाइम पर दो चीज़ें होंगी, एक तो आपके वालिद तन्हा हो जाएंगे बिल्कुल, और दूसरा आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं फिर कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। देखो बेटा, अभी आप जिस एज में हो, शायद आपको ये बात थोड़ी सी समझ में ना आए, लेकिन इसको समझो कि जब आपकी एक अपनी फैमिली होगी, आपने उसको टाइम देना है, आपने अपने शौहर के साथ रहना है, ट्रैवल करना है, उसका घर देखना है, अपने आप को देखना है, जो भाई हैं भाई, आपने बाहर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए,
या आपकी अपनी फैमिली होती है, आपने उसको टेक केयर करना है, देखना है। तो इस पूरी सिचुएशन में अगर आपके ऊपर वालिद की भी जिम्मेदारी उसी तरह हुई जिस तरह आज वो आपकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो आपकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। क्या आप उस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए फिर तैयार हो? अगर आप अपने वालिद को इस राइट से डिप्राइव्ड रखना चाहते हो, अगर आप अपने वालिद को इस हक से, जो कि उनके पास है शरीयत के मुताबिक, कानून के मुताबिक, स्टिल ही वॉन्ट्स योर परमिशन। जरा सोचो इस चीज को, एक चीज जो कि अलाउड है उसको, खुदा की तरफ से भी, कानून की तरफ से भी। पाकिस्तान का कानून भी नहीं रोकता, खुदा का कानून भी नहीं रोकता, लेकिन स्टिल वो चाहते हैं कि आपकी खुशी परमिट करे, तो उनको आपकी खुशी कितनी अजीज होगी। देखें, ये खातून ना हो, किसी और से शादी हो जाए, किसी और से हो जाए, मसला यहां पे इन खातून के साथ शादी का नहीं है। मसला इस टाइम पर ये है बच्चे, कि आप जब अपनी लाइफ में ग्रो करके आगे बढ़ जाओगे, तो क्या आप फिर इस कॉम्प्रोमाइज लाइफ के साथ जिंदगी गुजारने के लिए रेडी हो कि फिर आप अपने बाप को तनहा नहीं छोड़ोगे, जैसे वो आज आपको तनहा नहीं छोड़ रहा, जैसे वो आपकी खुशी का ख्याल रख रहा है। और एक और बात बताऊं, देखो जिंदगी में कुछ चीजें कुछ लोगों के साथ ही होती हैं। जो ताल्लुक आपका अपने बाबा के साथ होगा, वो आपका अपने शोहर के साथ नहीं होगा, या जो आपका आपके बाबा के साथ होगा, वो आपका आपकी वाइफ के साथ नहीं होगा। इसी तरह आपके बाबा का जो ताल्लुक, जो गुफ्तगू, जो बात, जो अंदाज अपने बच्चों के साथ, यानी कि आपके साथ होगा, वो एक बीवी के साथ नहीं होगा, वो और लेवल पर होगा। यही वजह है कि देखें, जब आपकी मामा हयात थी, जब आपकी मामा जन्नत में नहीं गई थी, इवेंचुअली देखो हम सब ने जाना है। ये मत सोचो, अगर आप ये सोचोगे ना कि आपकी मामा की जगह कोई आ रहा है, तो आप कभी किसी को जिंदगी में जगह नहीं दे सकोगे। कभी मत सोचो, ये कभी भी मत सोचो, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपकी मामा की जगह इसलिए कोई नहीं ले सकता है कि आपकी मामा की जगह, अगर वो एक खातून है आपकी मामा, तो अब उनकी जगह पे दो आप जीते जागते उनकी निशानियां मौजूद हो, कैसे लेगा कोई आपकी जगह? अरे भाई, अगर आपकी जगह ही किसी को देनी होती, आपकी मामा की जगह ही किसी को देनी होती, तो वो झट से जगह दे देते। लेकिन आपकी मामा की मोहब्बत उनके दिल में, आपकी सूरत में अभी तक है, इसीलिए वो आपसे इजाजत ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, बता रहे हैं। मतलब वो बता भी नहीं पा रहे हैं ताकि आपकी फीलिंग हर्ट्स ना हो, तो वो कितना ज्यादा केयर करते हैं आपकी मामा की या आपकी। यही वजह है कि देखें, जब तक आपकी लाइफ में वो रही, आप लोगों की लाइफ ठीक रही ना, क्योंकि बाद में मैंने थ्रू आउट सारे मैसेज पढ़े, यहाँ पे तो मैंने एडिट करके बताया, आपकी लाइफ ठीक रही, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहा। कितना अरसा लाइफ रही? देखो बेटा, 17-18 साल के आप हो, 16 साल के आप हो, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर 17-17 साल भी शादी या 18 साल भी शादी रही है, तो अगर आपके बाबा को यही करना होता सिर्फ अपनी खुद पसंदी के लिए या सिर्फ अपने मतलब के लिए, तो आपके बाबा उन 18 सालों में कर सकते थे, 18 साल का इंतजार करने की जरूरत तो नहीं थी। लेकिन बेटा, कुछ चीजें जिंदगी में लिखी ऐसी होती है मेरा बच्चा, आप कुछ कर लें वो होनी होती है, कुछ कर लें ये जिंदगी में। और ये मैं ओवरऑल भी, जितने मुझे यंगस्टर सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, पता नहीं ये बात अब किसके दिल पर जाए, किसके दिमाग पर जाए, हमेशा याद रखना, कुछ चीजें होने के लिए होती हैं। आप रिश्तों को जितना मर्जी समेटने की कोशिश कर लें, आप अपनी जिंदगी को, अपने करियर को, अपनी तालीम को, अपने अपने से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं आपकी, जितना भी उनको समेटने की कोशिश कर लें, अगर बिखरनी है, अगर किसी जिंदगी के मोड़ पर अल्लाह ने ये बिखरना लिखा है, तो वो बिखरेंगी। लेकिन आपके केस में बिखर नहीं रहा है मेरा बच्चा कोई, ये तो मैं एक जेनेरिक ओवरऑल बात कर रहा हूं। आपके केस में आपके बाबा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, सो नोबडी इज सेइंग कि कल बस अपने बाबा को कहो कि कल उनको ले, ऐसा नहीं है। बट गिव हिम अ चांस। गिव हिम अ चांस कैसे? अपने बाबा से कहो कि चले हम उनसे मिलते हैं, तो पहले आप मिलो उन आंटी से, मिलो। बल्कि मैं तो कहूंगा, अपने बाबा का जैसे एक होता है ना कि हम रिश्ता देखने जाते हैं तो वालदैन देखते हैं कि लड़की कैसी है, आप बल्कि अपने बाबा के लिए देखो कि भाई फीमेल कैसी है, आपके बाबा तो कहीं गलत फैसला नहीं कर रहे। जैसे जब हम छोटे होते हैं या जैसे बाप हो गए, आप में से किसी को कभी मोहब्बत हो जाएगी, आप दोनों में से इंशाल्लाह फिर शादी होगी, तो आप अपने बाबा को बताओगे, आपके बाबा आपके लिए देखेंगे ना कि भाई ये लड़का ठीक है कि नहीं, या ये लड़की ठीक है कि नहीं, कहीं मेरी बेटी से या मेरे बेटे से कोई मसला तो नहीं हो गया, कहीं इससे कोई जज्बाती फैसला तो नहीं हो गया। आप ऐसा करो, आप अपने बाबा के लिए जरा उनको देखो, जरा बाबा को कहो कि बाबा ऐसा है ना कि कल आप फलां रेस्टोरेंट पे जरा उनको बुलाएं, खाने पे बुलाएं, जरा घर ना बुलाओ बेशक,
आपके बाबा हम फ्ला रेस्टोरेंट में मिलते हैं, आप उनसे मिलो, उनसे बात करो, देखो कैसे हैं। एक बार मिलो, दो बार, तीन बार, एटलीस्ट गिव हिम अ चांस कि वो एक स्पेस बना सकें उस शख्स की आप लोगों की जिंदगी में। अगर आपको लगे कि वो स्पेस ऐसी है जिसके साथ आप एग्जिस्ट कर सकते हो, कोएग्जिस्ट कर सकते हो, देन मूव फॉरवर्ड। अगर ना हो फिर इधर ही हम फिर इस पे आगे बात करेंगे। लेकिन पहला देखें, मैं अगर इस टाइम आपको कहूँ ना कि अपने पापा के पास जाएं, और भाई साहब आप अगर सुन रहे हैं, अगर इस टाइम हम बच्चों को कहें ना, या मैं इन बच्चों को कहूँ, मैं इस टाइम इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ सर, मैं इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ, बच्चे जो चाहेंगे होगा। आप भी बच्चों के साथ खड़े हैं, मैं ये भी जानता हूँ आप भी बच्चों के साथ खड़े हैं, लेकिन बच्चे जो चाहेंगे होगा। तो इसलिए पहले खातून को बच्चों से मिलाएं भाई। भाई आपको मोहब्बत है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों से मोहब्बत भी होनी चाहिए ना। सो बच्चों से मिलवाएं। सो नोबडी सेइंग, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि आप बाबा को कहो कि हाँ बाबा बस आप शादी कर लें, या अभी आप उनको कहो हाँ बाबा हमने इजाजत दी। लेकिन इतने रिजिड नहीं होना है जिंदगी में कि वो बंदा जो कहना चाह रहा है वो आपसे कह भी ना पाए। फिर क्या फायदा मोहब्बत का? अगर आपकी मामा होती, फर्ज करें अगर आपकी मामा इस वक्त होती, और इस वाक्य से हट के, ये वाक्य तो फिर बात है ही नहीं ना, एक बीवी के होते हुए जाहिर है फिर बहुत सारे लोग अभी सुन रहे होंगे जो फिर इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव की तरफ लेके जाएंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देंगे। लेकिन याद रखिएगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाइफ हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब तक हयात रही, और रवायात के मुताबिक 25 साल वो हयात रहीं, तो रसूल अल्लाह ने शादी नहीं की दूसरी। रसूल अल्लाह ने कुछ काम इसलिए जरूर किए ताकि हमारे लिए आसानी हो सके, हमें बताया जा सके कि इसकी इजाजत है, इन तक इन सम सिनेरियोस इजाजत है, और चले इन सम सिनेरियोस को हटा के भी वैसे भी इजाजत है। लेकिन इसको कुछ रसूल अल्लाह के साथ इसको इस तरह यूं मत जोड़िए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं तो हमने भी करना है, फिर उस तर्ज पे कीजिए जिस तर्ज पे उन्होंने किए हैं। क्योंकि देखें, नमाज हम उस तर्ज पे पढ़ते हैं ना जिस तर्ज पे रसूल अल्लाह पढ़ते थे। ऐसा तो नहीं कि रसूल अल्लाह से हमने तरीका ले लिया और हमने कहा कि नहीं, अगर रसूल अल्लाह फजर की दो रकातें फर्ज की पढ़ते थे तो हम 10 पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। हम वही करेंगे जो रसूल अल्लाह ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह शादियों के मामले में फिर वही मामलात देखें जो रसूल अल्लाह ने किए। रसूल अल्लाह की पहली वाइफ 25 साल कमोबेश जिंदा रहीं, जाहिरी तौर पर हयात रहीं, हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की जब तक वो हयात रहीं। सेम गोज फॉर इमाम अली अलैहि सलाम, बीबी फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा, जब तक जाहिरी तौर पर हयात रहीं इमाम अली ने दूसरी शादी नहीं की। सो सिर्फ बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, और आपने भी यही किया, 18 साल आपकी शादी रही, आपने जाहिर है कॉन्टेक्ट हुआ हो या ना हुआ हो, आपने बाहर का भी कदम नहीं उठाया। अब सिचुएशन मुख्तलिफ है, कमिंग बैक टू द किड्स, बेटा अब देखो सिचुएशन मुख्तलिफ है, वो आंटी भी सिंगल हैं, आपके बाबा भी सिंगल हैं। अगर इनको लगता है कि मिलके एक अच्छी जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी की जानेब जा सकते हैं और आप उनके साथ जा सकते हो, तो उसमें कोई बेटा बुरी बात भी नहीं है। वैसे मैं मशवरा दे रहा हूँ, लागू कोई आप पे कुछ नहीं कर रहा। सो मेरा बच्चा, दोनों को मैं ये बात कर रहा हूँ, दोनों को मैं बात कर रहा हूँ, प्रायोरिटी आपकी है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। देखें मैं फिर ये आपसे बात कर रहा हूँ कि प्रायोरिटी आपकी है, इस बात की गवाही है कि मैं पिछले 20 मिनट से आपसे बात कर रहा हूँ ना। आपके बाबा चाह रहे हैं कि मैं आपसे बात करूं, वरना ना हो तो कहें भाई नहीं तो ना सही मैं करूंगा। दूसरी चीज, एटलीस्ट गिव हर सम स्पेस ना, मिले तो सही, देखे तो सही, एंड देन टेक द डिसीजन। सर इस वक्त मैं इतना ही बात कर सकता हूं, आई होप कि इससे कोई फाका हो, फोर्स मत कीजिए, बच्चों को इसको प्रोसेस करने दीजिएगा, थोड़ी देर ये जो मैंने गुफ्तगू की है प्रोसेस करने दें बच्चों को।

इश्क आया। Oh my God. नजर उतारे। Oh my God. Oh खुदा। मुझे एक मिनट दीजिए।

आई एम स्पीचलेस. ही जस्ट मैसेज्ड मी एंड ही सेड के मेरे दोनों बच्चे मेरे पास रूम में आए हैं. दे हग्ड मी एंड दे सेड, बाबा टेल अस व्हेन वी कैन मीट हर.

रियली विश कि मैं स्क्रीनशॉट लेके लगा सकता, लेकिन जाहिर है उन्होंने बहुत सारी चीजें बीच में ऐसी रखी हैं कि बहुत पर्सनल है उनकी, एंड जाहिर है मैं नाम नहीं ले रहा तो आइडेंटिटी रिवील कैसे की जाए. द वे ही सेइंग थैंक यू एंड जजाक अल्लाह, भाई खुश रहें, लेकिन बच्चों को प्रायोरिटी रखिएगा. समझदार है भाई बच्चे आपके, एक दफा कहने पे समझ गए. या तो मैं समझाता बहुत अच्छा हूँ या फिर आपके बच्चे बड़े समझदार हैं. और इस सबसे बढ़कर सर ये वजह है जो अब मैं लगा रहा हूँ, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पे लेके जाइएगा, लेकिन याद रखिएगा जब खाना आए तो सबसे पहले प्लेट बच्चों के सामने रखिएगा. पानी की बोतल खोलें तो पहले बच्चों के ग्लास में पानी डालिएगा. जब मीठा आए तो अपने हाथ से दोनों बच्चों के मुंह में मीठा खिलाइएगा. आहिस्ता आहिस्ता बच्चे मानूस हो जाएंगे. जानते हैं क्यों, जिन्होंने आपको इतना मौका दिया है कि चले मिलते तो हैं, जिसने जिस खुदा ने उनके दिल में ये बात डाली है वो खुदा उनके दिल में मोहब्बत भी डाल देगा. हम जानते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं. हम समझते हैं कोई शख्स रेडियो पे बोल रहा है तो किसी के लिए बोल रहा होगा, हमें इससे क्या, लेकिन कभी कभार किसी के लिए नहीं सिर्फ आपके लिए बोल रहा होता. वजह पता क्या, क्योंकि वो खुद थोड़ी बोल रहा होता, उसको बुलवाया जा रहा होता. बात ये है, वजह ये है, आसपास है खुदा.

गाइस, थैंक यू सो मच. बच्चे खास तौर पर यार, थैंक यू सो मच, आपने इतनी रिस्पेक्ट मेरी रखी. प्रोग्राम ख़त्म हो जाने के बाद, वैसे भी 15-20 मिनट ख़त्म हो जाएगा, मैं थोड़ा जल्दी 10 मिनट पहले निकलूंगा, बिकॉज मुझे अपनी अम्मा को लेना है. अम्मा का व्हाट्सअप भी आ गया है कि वी आर फ्री, तो बस मैं अपनी अम्मा को लेकर अब घर जाऊँगा, तो मैं 10 मिनट पहले ही निकलूँगा. तो बेटा, प्रोग्राम अभी ख़त्म होगा, तो गो बैक टू योर फादर, हग हिम लाइक एनी थिंग. यस, हग हिम लाइक एनी थिंग, ही लव्स यू सो मच.

0: दीवाना। वाल जनाब, मेरा नाम जिशान नासिर है। यू कैन डेफिनेटली टेक्स्ट मी अप ऑन इंस्टा, वहां से आपके मैसेजेस ब्राय राज प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ, फिर उसके बाद इजाजत लेंगे आपसे। कॉलर हमारे साथ थे, ड्रॉप हो गए। Z-E-E-S-H-A-N-N-A-S-I-R-2-6 ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे आप जाइए, फॉलो कीजिए करना चाहते हैं तो, और मुझे मैसेज भेजें, मैं आपके मैसेजेस अभी ब्राय राज प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ और फिर आपसे इजाजत लेंगे। Z-E-E-S-H-A-N-N-A-S-I-R-2-6 अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है जी आप?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मोहम्मद शिदा शाहबा लाहौर से बात कर रहा हूँ।
0: जनाब क्या कहना चाहेंगे?
1: देखे जो आपकी ये बातें सुनी है बहुत अच्छी लगी, और जो बच्चों ने मान ली है ना बात, ये अच्छे समझ की बात होती है।
0: ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है सर। Z-E-E-S-H-A-N-N-A-S-I-R-2-6 इंस्टाग्राम, जिशान नासिर 26, वहां से मैसेजेस शामिल कर रहा हूँ।

शहीर सफदर सुलेरी हमारे साथ मौजूद है, कह रहे हैं जस्ट ट्यून्ड इन, एनर्जी ऑलवेज हाई मींस ईशान भाई ऑन माइक, थैंक यू सो मच बड़ी, एंड शहीर कीप द पेस अप माय बॉय, ऑलवेज ट्राई टू क्लाइंब वेयरएवर यू वांट टू बी डिस्पाइट बीइंग द मैटर ऑफ द फैक्ट, जितनी भी हर्डल्स हों, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हों, जितनी भी हैंड्रेंसेस हों, जस्ट बी देयर, जस्ट हंग अप, जस्ट बी कंसिस्टेंट. टैलेंट इतना आगे नहीं जाता जितना कंसिस्टेंट बंदा आगे जाता है, एंड यू आर वन ऑफ देम. जस्ट स्टिक अराउंड एंड इंशाल्लाह यू गोइंग टू बी द बिग थिंग, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. फातिमा हमारे साथ मौजूद है, सर कैसे हैं? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छी है तो रेडियो कर रहे हैं, तुम्हारी जैसी होती घर बैठे होते. मजाक कर रहा हूँ. अच्छा, सफर हमारे साथ हैं और बहुत बहुत शुक्रिया लिसनिंग यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मरियम हमारे साथ मौजूद है, मरियम फोटोग्राफी, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम सुनने के लिए बहुत अरसे के बाद, और बहुत बहुत शुक्रिया. खुश रहो, आबाद रहो, पिंडी रहो या इस्लामाबाद रहो. सुनाओ कैसा चल रहा है काम. शहजीना हमारे साथ मौजूद है, कह रही हैं सच अ नाइस शो, थैंक यू. तहसीन फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, मैसेज कर रही हैं. इकरा खान हमारे साथ हैं, जाहिद जाफरी हमारे साथ हैं, सुंदस हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, उसके अलावा मानी हमारे साथ हैं, सायरा जंजुआ हैं और खतीजा आरिफ हैं, कह रही हैं इमोशनल कर दिया आपने तो मैं कितना होऊंगा, ये यहाँ से अंदाज़ा लगाओ. दूबा मलिक हमारे साथ हैं, रोहान मलिक सिंह, अस्सलाम वालेकुम आरजे. वालेकुम अस्सलाम आरजे निमरा रफीक हमारे साथ हैं, हिरा हुसैन हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, रूमी हमारे साथ मौजूद हैं, लिसनिंग यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, आप खुश रहें. सहर पीरजादा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, इस्लाम भाई आई एम आलिया फ्रॉम इस्लामाबाद एंड आई एम वेरी वेरी डिप्रेस्ड, प्लीज शेयर माय प्रॉब्लम ऑन एयर. आई लव समवन फ्रॉम पास्ट 14 इयर्स बट ही डिडंट लव मी, ही इज नाउ मैरिड विद टू किड्स, ही यूज्ड टू टॉक ऑफन रूडली बट इवन देन आई टॉक टू हिम. 2 years ago he moved abroad without telling me and blocked me everywhere. Please suggest me what to do. I still miss him a lot. Please suggest me something. I'm not married and I don't even want to be. Seher, bahut simple si baat hai beta. Try to respect yourself. Uski wajah ye hai ki jo aap keh rahe ho ki wo aapse badtameezi se baat karta tha, rude baat karta tha, phir bhi aap baat karte rahe. Usne shaadi kar li, uske 2 bachche ho gaye, lekin still aap jo hai uske intezar mein. Aur no. It's not like this. अगर वो भी आपके इंतज़ार में होता तो फिर तो आपका इंतज़ार बनता था, लेकिन अगर वो भी इंतज़ार में नहीं है तो फिर आपका इंतज़ार बेकार है. सो जस्ट रिस्पेक्ट yourself. एजुकेशन हब हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं जी खुश रहें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी बहुत खुश रखे. रीमी आगा हमारे साथ मौजूद हैं, हेलो फर्स्ट टाइम मैसेज किया है, फर्स्ट टाइम सुना, मज़ा आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया रीमी आगा साहब या साहिबा. बुशरा साउद हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई एम लिसनिंग योर शो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जजाक अल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया. मारुख इकबाल हमें सुन रही हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मोहम्मद मुनीब सिंह एन एब्सोल्यूट थेरेपिस्ट मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी. वो एक मैंने कहीं पढ़ा था कि यार थेरेपी इज एक्सपेंसिव सो वी लिसन ज़ीशान नासिर. और मरियम सिंह, कैन यू प्लीज शेयर द शो टाइमिंग्स. जी आई डू शो ऑन थर्सडे, जुमेरात की रात 12 से 2 जो अभी कर रहा हूँ, और हफ्ते की रात 10 से 12 करता हूँ, अमूमी तौर पे करता हूँ. शहीर इज सेइंग थिंग्स ओनली ज़ीशान भाई कैन से वाज जस्ट लाइव विद असद भाई एंड मेंशन देयर दैट इफ ओनली वन गाय हु हैड ऑलवेज माय बैक इन दिस जर्नी इज यू वैमस ब्रूवर, डोंट हैव अ एल्डर ब्रदर बट ऑलवेज यू, इट वाज ऑनर फॉर मी टू बी ऑन सेम फ्रीक्वेंसी यू टॉक्स ऑन. अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, आपकी अपनी मेहनत है, आपकी अपनी लगन है, कंसिस्टेंसी है, हम बस यार फकीर लोग हैं, बस चल रहा है, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है. ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं मॉडेस्टी की बात नहीं कर रहा. बहुत सारे लोग शायद समझते हैं मैं जब ऐसे बात करता हूँ तो मैं मॉडेस्ट या थोड़ा आजिज़ होकर बात करता हूँ, ऐसा नहीं है. मुझे बहुत कुछ मिल गया बहुत सारी चीज़ों की वजह से, वरना मैं आपको बताऊँ कि शायद मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, कल स्टोरीज़ में भी कहा कि मेरे हद तक की बात हो ना, सिर्फ अगर मेरे हद तक की बात हो तो मैं आपको पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों, सहराओं, गलियों, कूचों, बाजारों में वाह हुसैन वाह वाह हुसैन के नारे बुलंद करता मिलूं. और डर भी यही लगता है समटाइम, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार यू नो बी विद समवन और समथिंग, बड़ा डर लगता है कि यार
ये देखें, एक चीज़ ऐसी होती है, यू कैन से भाई आपकी आवाज़ अच्छी नहीं, यू कैन से भाई आप शो अच्छा नहीं करते, यू कैन से भाई कोई टैलेंट नहीं है आपके अंदर, आप अच्छे नहीं हैं, देखने में अच्छे नहीं, बट ये एक चीज़ ऐसी है कि जिस पे कोई फॉर ग्रांटेड लेगा तो मुझे बहुत दुख होगा। तो बस वो, खैर इसीलिए बंदा कहता है कि यार इस चीज़ को समझना बड़ा अहम है। तो ये चीज़ है, बाकी और तो क्या, हमने क्या कर लेना है, क्या है, कुछ भी नहीं।

0: रिमी आगा कह रहे हैं जी, मैंने आपको फर्स्ट टाइम अयूब पार्क में देखा था, कॉन्सर्ट में आज फर्स्ट टाइम सुना है। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ा टाइम लगा दिया आपने।
1: तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत।
0: नादिया शहरियार हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हमेशा से सुनती आ रही हूँ, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। मैं आपको तजवीज़ कर सकता हूं अगर आप अमल करें। मसला ये है कि आप अगर किसी को कुछ तजवीज़ करें तो वो कहते हैं, मतलब कहते हैं, इन सेंस आप ना भी कहें, लेकिन वो एक अकायद की भी बात होती है। आप ये दिल में अहद कर लें, करना चाहें तो कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप दिल में अहद कर लें, उसके साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, आप उसको कसरत से पढ़ते रहिएगा। दिल में अहद कर लें कि अगर अल्लाह ने बेटा अता किया तो नाम अली रखूँगी, मोहम्मद अली, और अगर बेटी अता की तो फातिमा रखूँगी। दिल में यह अहद रख लें और फिर मैं आपको कुछ बता दूंगा। आप कोशिश कीजिएगा, आप खुदा का ही जिक्र है उसको जिक्र करें, अल्लाह ताला ज़रूर जो है वो करें। अरे भाई ये करके देखिए फिर, और अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपका पहला प्रोग्राम मुहर्रम से पहले सुना था, उसके बाद से सुन रही हूँ। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट नहीं है, चलें अल्लाह करे जी जल्दी आ जाए, और इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, मैच्योरली मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो, ख़ासतौर पर जो मर्द हज़रात हैं, अगर यू गॉट मैरिड एंड इफ़ समहाउ औलाद नहीं हो रही है, तो ये कोई गारंटी नहीं है, ये कहीं पर नहीं लिखा है। एक चीज़ और ये है कि रिस्क जो है वो औरत का और जो औलाद है वो मर्द की, ये ट्विस्ट किया जाता है बातों को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुफ्तगू फरमाई है कॉन्टेक्स्ट में फरमाई है, इसका कतन मतलब नहीं है कि आप अगर औलाद नहीं हो रही तो आप दूसरी शादी इसलिए कर लें कि औलाद के लिए, हो सकता है उससे भी ना हो। लेकिन बहुत सारे लोग इलाज की तरफ नहीं जाते हैं, सिर्फ वज़ाइफ पे रहते हैं, तो सिर्फ वज़ाइफ पे भी नहीं रहना है, सिर्फ इलाज पे भी नहीं रहना है। खुदा ताला फरमाते हैं कुरान में कि मैं हूँ जो माँ के शिकम में बच्चों के चेहरे बनाता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ बेटे देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटे और बेटियाँ दोनों देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बांझ कर देता हूँ। तो ये इलाज भी है और आपने खुदा ताला के साथ ताल्लुक़ भी रखना है डेफिनेटली। उसकी वजह ये है कि मैंने जो 2-4 लोगों को जब ये रिकमेंड किया, तो मैं ये बात असल में बहुत सारी ऐसी बातें मैं ऑन एयर इसलिए नहीं करता कि वो ये साउंड ना करे कि मैं कोई बहुत कामिल आदमी हूँ, लेकिन जो रिकमेंडेशन हुई तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मामलात कर दिए बहुत अच्छे, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर मामलात होंगे। बस खुश रहें और इंशाल्लाह बाकी चीज़ें चलती हैं ज़िंदगी में यार। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, जब वक्त आना हो तो कौन रोक सकता है।

यार, जो मैं गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ ये मैं आपको अपनी रियल लाइफ का एक वाकया बताता हूँ। अपनी असल ज़िंदगी में एक तो होता है ना कि आपने मतलब कहीं पढ़ा हो या टीवी वगैरह में, मैं आपको रियल लाइफ का वाकया बताता हूँ कि खातून थी, शी गॉट शी कंसीव्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और हुआ ये कि शी वेंट टू द डॉक्टर, वो जो डॉक्टर हैं वो मेरे से रابطे में रहे और लाइक दे टोल्ड मी द एग्जैक्ट थिंग। तो खैर हुआ ये कि शी वेंट टू द डॉक्टर और वो एक ख़ास टाइम के ऊपर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही थी, एंड उन्होंने मेडिकली ये डिक्लेयर किया कि बच्चा जो है वो शायद ही इज़ नॉट अलाइव या शी इज़ नॉट अलाइव। तो अब हमें मेडिकली ऑपरेट करके बच्चे को जो है वो देखना पड़ेगा, और सिंस चूंकि माँ की हेल्थ को इशू हो सकता है। सो दैट लेडी वेंट टू द जाय नमाज, शी स्टार्टेड प्रेइंग, एंड व्हाट आई वाज शेयरिंग विद यू अभी थोड़ी देर पहले, और कुछ ही देर में जिस डॉक्टर ने वो अल्ट्रासाउंड किया, ही सेज शी सेड इन फैक्ट के द मोमेंट हमने दोबारा से चेक करना शुरू किया तो हार्ट बीट रिवाइव होना शुरू हुई। सो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हूँ जो करता हूँ। सो डॉक्टर्स के साथ भी, अब कोई डॉक्टर सुन रहा हो तो माइंड ना करे, लेकिन रहें डॉक्टर के साथ, रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर क्या कहते हैं ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पर बहुत सारे अवामिल होते हैं, इसमें हम पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। और मुझे नहीं पता कि लोग क्यों इस तरह की गुफ्तगू होती है तो थोड़ा सा घबरा से जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, इसका एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, इसमें मेडिकल जो एस्पेक्ट है ही है। आप जितने भी लोग हैं, हम इन जनरल भी बात करें, अगर स्पेसिफिक अभी इस केस की ना भी, इन जनरल भी बात करें, साइकोलॉजिकल ये बहुत बड़ा इशू होता है। आप मेडिकली फिट हैं, आप सब कुछ है, लेकिन आप साइकोलॉजिकल आप फिट नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे अवामिल जो है ना मिलकर इस चीज़ को लेकर आते हैं दुनिया में।

ओके जनाब, मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अजीज आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। ये गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रोकर मांगना पड़े तो जरूर मांगिए। खुश नसीब है वो आंग जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन दुआ जहाना दाओ साडा जामन, वो दामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल्लाह अलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और जमानत उसी शख्स की दी जाती है जिससे कोई गलती होती है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है आप तो ठीक है, फिर चलने दे जैसे चल रहा है। अगर परफेक्ट नहीं है तो छोड़ फरीद ना यार दामन दूहा जहाना दाओ साडा जामन। और अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक हक मौजूद सदा सदा सदा मौजूद। और जिंदगी ने सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। और इंशाल्लाह अजीज हम जो है, अच्छा एक चीज़ मैं और शुरू कर रहा हूँ, वो ये शुरू कर रहा हूँ कि अब हम हर प्रोग्राम को एंड करेंगे नारा हक के साथ। जैसे ही मैं नारा हक बुलंद करूँगा उसके दरमियान ही मैं छोड़कर आपको चला जाऊँगा। उसकी रीज़न ये है, पता नहीं एक थॉट मेरे जहन में आई कल दोपहर में कि अगर मैं कभी अल्लाह हाफिज करके जाऊँ और मुझे ज़िंदगी दोबारा मौका ना दे इस माइक्रोफोन से आपसे मुखातिब होने का, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे आखिरी अल्फाज जो हों वो नारा हक हो जो आपने सुने हों इस माइक्रोफोन से। इसी के दौरान अभी कुछ देर बाद मैं नारा हक बुलंद करूंगा, उसके साथ ही आपसे इजाज़त लूंगा। और आप अगर फीडबैक देना चाहें ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक देने के लिए ज़िशान नासिर लिखिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूज़र आईडी है इंस्टा पे ZEESHANASIR26 ज़िशान नासिर 26 विद द काउंट ऑन ऑफ 3 2 1 आई विल बी सेइंग नारा हक। बिफोर दैट अल्लाह हाफिज़, तुम्हारा पुकी जा रहा है ज़िशान नासिर साइनिंग आउट। ज़िंदगी ने सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो। सखी लाल कलंदर मा

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया हमने।

This is FM 101.

This is FM 101.

0: फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: فَيَا